मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानि 1593 किलोहर्ट्ज के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई

0: एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंद

अपनी धरती को प्रणाम करते हुए आइए संकल्प लें कि मातृभूमि के प्रति हम अपनी निष्ठा को निभाते हुए अपने समाज की उन विकृतियों से हम लड़ेंगे जो हमारे सद्भाव के लिए, हमारी प्रगति के लिए बाधा बन जाती हैं। जन्मभूमि के ऋण को चुकाने का ये भी एक अवसर होता है।

मातृभूमि की वंदना के बाद आइए अब ध्यान लगाएं संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी जगत पिता परमेश्वर के चरणों में। हमारे पास जो भी है सब कुछ उसी ईश्वर का दिया हुआ है। श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं है जो हमारा हो, और ईश्वर केवल श्रद्धा, भाव और समर्पण को स्वीकार करता है।

अगर हम स्वयं प्रकाशित रहें तो अंधकार हमारे नजदीक नहीं आ सकता। और अपने मन को आलोकित रखने का एक ही तरीका है कि हम प्रभु प्रेम का दीपक अपने हृदय में सदैव प्रज्वलित रखें, ताकि सांसारिकता के बीच भी हम सात्विक रह सकें, संयमित रह सकें।

निराशा में भी यदि हमें आशा नजर आती है, अपने क्रोध को अगर हम क्षमा रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, या जब हमारा लोभ संतोष में बदलने लगता है, तब हम ये कह सकते हैं कि हमारी भक्ति सार्थक हो रही है। क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा इष्ट, हमारा आराध्य सदैव हमारे साथ हो।

जिस प्रकार उपवास के दौरान सहन की गई भूख शरीर की बीमारियों को दूर करने में सहायक होती है, उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने की भूख हमारे मन और बुद्धि के विकारों को हर लेती है, प्रभु के प्रति उत्पन्न प्रेम रस या आनंद की अनुभूति कराता है, तो उसका विरह ईश्वर से हमारी निकटता की प्यास बढ़ाता है।

0: आज की वंदना में आपने समूह स्वर में देशभक्ति रचना के बाद हरिओम शरण, अशोक खोसला, पंडित भीमसेन जोशी और सीमा शर्मा की गाई भक्ति रचनाएं सुनी। इसके साथ ही आज की वंदना अब संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान, स्वर अनुराधा पौडवाल का है, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी ज्ञान और भक्ति की मीमांसा कर रहे हैं। प्रश्न है, ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है? काकभुशुंडी कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में माया द्वारा प्रेरित रिद्धि सिद्धियां विघ्न उपस्थित करती हैं। माया के अतिरिक्त देवगण भी बाधाएं उत्पन्न करने में पीछे नहीं रहते। इंद्रियां झरोखों के समान होती हैं, जिनसे आती विषय वासना रूपी हवा के प्रवाह को रोकना बड़ा कठिन होता है। इन झोंकों से ज्ञान रूपी दीपक का बुझ जाना भी बड़ा सरल और स्वाभाविक है। इस दीपक के बुझते ही जीव आवागमन के क्लेश भोगने लगता है। संतों और ज्ञानियों का मत है कि ज्ञान मार्ग से मोक्ष रूपी परम पद पाना अत्यंत कठिन है, किंतु ये पद भक्ति मार्ग से बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। अब समय है आज के चिंतन का। आलेख डॉक्टर उमाशंकर नागाइच का है।
1: मनुष्य व्यक्तिगत रूप से एक स्वतंत्र और एकाकी प्राणी है। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां और उसकी आवश्यकताएं उसे सामाजिक प्राणी और समाज का अंग बनाती हैं। अपने जन्म, पालन पोषण, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह आदि के लिए व्यक्ति को समाज की आवश्यकता होती है। समाज के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अपनी सुरक्षा के लिए भी व्यक्ति समाज पर निर्भर है। समाज में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर उसकी पूर्णता प्राप्त करता है। व्यक्ति की आवश्यकताओं, इच्छाओं और आशाओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयत्नों का परिणाम ही समाज है। सामाजिकता व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। डॉक्टर रामजी सिंह के अनुसार अरस्तु भी अफलातून के विचार से सहमत है कि समाज का आधार मानव प्रकृति है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिकता मानव की जन्मजात और प्राकृतिक प्रवृत्ति है। मनुष्य की प्रकृति है कि वह समाज बनाएगा। इस प्रकार मनुष्य के स्वभाव के आधार पर एक प्राकृतिक संस्था के रूप में समाज संस्था का उद्भव हुआ है। समाज के अनेक अर्थ और परिभाषाएं प्रचलित हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तियों के सामूहिक रूप को समाज माना है, यथा समाज मनुष्यों का समष्टिकृत या सामूहिक रूप है और उस रूप में ही मनुष्य प्रकृति के साथ संघर्ष कर सकता है और जीवित रह सकता है। जबकि राइट के अनुसार समाज का अर्थ सिर्फ व्यक्तियों का समूह ही नहीं है, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में जो संबंध हैं, उन संबंधों का संगठित रूप ही समाज है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिन्सबर्ग ने व्यक्तियों के उस समूह को समाज माना है जो किन्हीं खास संबंधों या खास व्यवहारों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। वहीं टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार समाज तो केवल सामाजिक संबंधों का संकुल है तथा सामाजिक व्यवस्था का निर्माण परस्पर अंतःक्रिया करते हुए अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है, और ये कि सामाजिक व्यवस्था आवश्यक रूप से अंतःक्रियात्मक संबंधों का जाल है। समाज की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि समाज व्यक्तियों की एक सामूहिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति की सुरक्षा, शिक्षा और विकास संबंधी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उसके जीवन को सुखी, सुरुचिपूर्ण, समृद्ध एवं सफल बनाने का समुचित प्रबंध किया जाता है। समाज निर्माण के मूल में अंतर्निहित उद्देश्य को समझने के लिए पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत ये विचार अत्यंत उपयोगी है कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं

0: भावनाएं तथा आशाएं उसके व्यक्तित्व की संरचना के अनुसार होती हैं। व्यक्तित्व इच्छाओं आदि को जन्म देता है और उसकी पूर्ति या तृप्ति चाहता है, और सामाजिक क्रिया इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से किए गए प्रयत्नों का ही फल होती है। अपने उद्भव के मूल में विद्यमान कारणों एवं उद्देश्यों के अनुसार समाज के लिए ये आवश्यक है कि वो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक सभी साधन, सुविधाएं और अच्छा वातावरण उपलब्ध कराए। महात्मा गांधी के अनुसार समाज को व्यक्ति के लिए इस प्रकार की परिस्थितियों तथा सुविधाओं को उपलब्ध करवाना चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपने सामाजिक व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। समाज निर्माण का उद्देश्य सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, सर्वसामान्य मूल्यों एवं आदर्शों की सिद्धि तथा व्यक्तियों के बीच आपसी संबंधों एवं व्यवहारों का सम्यक्तया निर्धारण करना है। डॉक्टर सत्यपाल गौतम के अनुसार समाज का अभिप्राय किसी भी ऐसे मानवीय समुदाय से है जिसमें व्यक्तियों के आपसी संबंधों, अपेक्षाओं तथा व्यवहार का निर्धारण तथा मूल आवश्यकताओं की पूर्ति साझे आदर्शों तथा मूल्यों द्वारा निर्देशित तथा संचालित होती है। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि समाज नामक संगठन का निर्माण सुव्यवस्था के लिए किया गया है, जिससे आवश्यक साधन सुविधाओं और अच्छे वातावरण में रहते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सके और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का सम्यक्तया निर्वाह कर सके।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। वार्ता का विषय है नर्सरी प्रबंधन कैसे करें। वार्ताकार हैं राजपाल परमार।
2: नमस्कार, मैं राजपाल परमार। आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे नर्सरी प्रबंधन पर। नर्सरी प्रबंधन किस तरह से किया जाए, किस तरह से हम किसान अपने आंगन में, अपने खेतों पर, अपने छोटी सी जगह पर एक नर्सरी की स्थापना करें और अपने गांव में, अपने क्षेत्र में पौधे तैयार करके उनको हम बेच सकें, उनकी मार्केटिंग कर सकें, उनसे एक अच्छा व्यवसाय पैदा कर सकें। नर्सरी की तैयारियाँ प्रारंभिक तौर से ही नर्सरी की तैयार करने के बाद हमें क्या क्या उसमें सावधानी रखना चाहिए और कैसे हमें नर्सरी तैयार करना चाहिए, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें बीजों को इकट्ठे करने के लिए, जो अभी का मौसम है, जब बीज हम पौधों से बीज प्राप्त होते हैं, जैसे जामुन से, नीम से, आम से, तो जब भी बीज तैयार हो जाते हैं, पौधों में फल पक जाते हैं, उस समय हमें बीज एकत्रित करना चाहिए। एकत्रित करने के बाद हमें बीज की उपलब्धता अच्छी कर लेना चाहिए। ये हमें एक या दो महीने लगातार गर्मी के मौसम में हमें इसको तैयार करते हैं। इसके बाद सही समय हमारी नर्सरी स्थापित करने का होता है, वो है प्रारंभिक बारिश के समय, अगस्त में। तो अगस्त में हमें पॉलीथीन बैग मार्केट से हम ले सकते हैं, कुछ हम घर पर तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे यदि पौधे तैयार करने हैं तो पानी के डिस्पोजल आते हैं, बहुत वेस्टेज निकलते हैं, तो इन चीज़ों का भी हम उपयोग करके उनमें मिट्टी को हमें भरते हैं। मिट्टी भरने के बाद हम उसमें बीज का रोपण कर सकते हैं अगस्त में। अगस्त में इसलिए क्योंकि उस समय जो अंकुरण की क्षमता रहती है बहुत अधिक होती है और कोई भी बीज वो अच्छे से पैदावारी लेता है, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है और गर्मी के तुरंत बाद यदि वो बारिश के समय हम लगाते हैं तो पौधा की पैदावारी बहुत अच्छे से होती है। तो नर्सरी हम प्रारंभ में जब बीज लगाते हैं तो उसमें मिट्टी और कुछ रेत का उपयोग करना चाहिए। तो मिट्टी का जो हम चयन करें वो तालाब की मिट्टी हो और काली और कुछ लाल मिट्टी हो, और मिट्टी के साथ हमें 60 और 40 का रेशो रखना चाहिए। यदि 40% हम मिट्टी ले रहे हैं तो 60% हमें उसमें गोबर की खाद, जो हम किसी भी प्रकार से बनाते हैं, घूड़े के माध्यम से, डिकम्पोजर या फिर जो हमारी वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद हम कहते हैं, उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। साथ में उसको अच्छे से मिलाना चाहिए, अलग ढेर लगाकर मिला सकते हैं। इसके बाद में पॉलीथीन में हम उसको भर लें, पॉलीथीन तैयार कर लें। हमें 1500 जितने पौधे लगाने हैं उतने पॉलीथीन बैग हमें तैयार करने होंगे। इसके बाद में सभी में बीज रोपित कर देंगे। 1 से 1.5 माह में वो बीज पूर्णतः अंकुरित हो जाते हैं, बीज बन जाते हैं, और 1 साल

0: में हम उसको पौधा का रूप दे सकते हैं। अब व्यावसायिक रूप से यदि बड़ी नर्सरी हमें स्थापित करनी है तो हमें स्थान थोड़ा बड़ा चयन करना है और ग्रीन सेट जो हम कहते हैं पॉलीथीन वाला वो हमें बनाना चाहिए ताकि वातावरण अनुकूल रहे। उस ग्रीन सेट में हमारे पौधे तैयार हो और 1,000, 1,500, 2,000 से हमें प्रारंभिक में ज़्यादा पौधे तैयार नहीं करने हैं। 1,000 या 1,500 पौधे हमें तैयार करना चाहिए ताकि उससे हमारे संसाधन पानी की उपलब्धता हमारे पास उपलब्ध हो और धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। अब हम यदि पौधे तैयार जो कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीज हमें निःशुल्क एकत्रित करना है, कोई उसका शुल्क खरीद के नहीं लाना है, तो वो बीज हमें फ्री में मिलेंगे। पॉलीथीन हमें बाज़ार से हम यदि खरीदने जाएंगे, काली वाली जो पॉलीथीन आती है पौधों में, वो 1 रुपये में एक पॉलीथीन हमें मिल जाती है, लगभग 120 रुपये किलो में आती है, जो कि 120 पन्नी उसमें 1 किलो में निकलती है। अब 1 रुपया वो निःशुल्क बीज, और किसान भाइयों के पास सभी के पास मिट्टी उपलब्ध होती है, वही मिट्टी और गोबर का खाद। अब वो पौधा 2 रुपये में हमारा तैयार होता है और हम उसका कॉस्ट जो है 35 रुपये 40 रुपये रख सकते हैं, क्योंकि कोई सी भी नर्सरी में अनुभव है कि जहाँ भी हम जाते हैं 35-40 से कम में हमें 1 साल का पौधा नहीं मिलता है। तो 1 साल बाद वही पौधा आपको केवल अपनी मेहनत से, आपके कर्म से और पानी से लगातार समय देता है और वो 1 साल बाद आपको 45 रुपये लगभग 95% का मुनाफा देकर जाता है। तो ये बहुत अच्छे नर्सरी का काम है, इसको हम स्थापित कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद होगा।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
6: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल,
7: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज़ है, भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
8: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए। देश के लिए जिए देश पर मिटे, समर्पण का प्रति मानिए।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: प्रदेश राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख झारखंड उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेही देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्यां आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे स्वास्थ्य संवर्धन संबद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने

घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भोपाल के मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी की गतिविधियों की जानकारी क्षेत्रीय ग्रंथपाल श्रीमती रत्ना वाधवानी से। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदी पत्रकारिता और युवा पत्रकारों के समक्ष चुनौतियां, इस विषय पर पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी भाषा के प्रख्याता संपादक और लेखक श्री एस जयशंकर बाबू से चर्चा होगी। साथ ही आप सुनेंगे विख्यात बुंदेली लोक गायिका श्रीमती पुष्पलता शर्मा से एक मुलाकात। सुबह 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा सुरमई सवेरा। पर सुगम संगीत कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राधिका चोपड़ा की गायी चंद गजलें। 9:30 का समय है शब्द सागर कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वरिष्ठ कवि श्री प्रयाग शुक्ल से शुभम तिवारी की बातचीत। रोजाना की तरह जिले की चिट्ठी का प्रसारण सुबह 10 होगा। 10:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रागमाला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित उमाकांत और पंडित रमाकांत गुंदेचा का युगल ध्रुपद गायन। राग होगा भैरव। दिन में 11 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। श्रोताओं आपको याद दिला दें कि फोन इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग हम रोजाना 10:30 से 11 के मध्य करते हैं। दिन में 12 और 2:30 पर आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दिन में 12:30 पर संग्रहालय से कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक पंचतंत्र की 13वीं कड़ी आज आप सुन सकेंगे। दिन में 1 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की होगी। दिन में 2 शाम 5:33 पर, शाम 6:30 पर, रात्रि 8:15 पर और रात्रि 10 फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकेंगे। शाम 5:02 पर युवा साथियों का कार्यक्रम

0: शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। शाम 7:21 पर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्राम सभा। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे किसानों के लिए लाभकारी कस्टम हायरिंग विषय पर डॉक्टर अनुराग पटेल से ली गई भेंट वार्ता। रात्रि 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम कहकशां का प्रसारण होगा। आज आप सुनेंगे कव्वालियों पर केंद्रित प्रोग्राम महफिले समा। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी। आज सुनिएगा पंडित रमाकांत और पंडित उमाकांत गुंदेचा का युगल ध्रुपद गायन, राग होगा यमन। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रादेशिक समाचार बस कुछ ही पलों में होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों तक सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर, आज बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों को 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के सुचारू संचालन के दिए निर्देश। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी और राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी। नौतपा के दूसरे दिन आज कई जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आज वे राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे आज बीएसएफ की साचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। इसके बाद इस महीने की 29 तारीख को श्री शाह गुजरात के भुज का दौरा करेंगे, जहां वो बीएसएफ की एक सीमा चौकी का मुआयना करेंगे। अगले महीने की 5 तारीख को श्री शाह त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। भीषण लू के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ने उनसे परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।

0: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान श्री चौहान के अनुभव को साझा किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की दो विभूतियों श्री कैलाश चंद्र पंत और डॉ. नारायण व्यास को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश की महान विभूतियों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों, रचनात्मक लेखन और शोध कार्य के लिए दी गई दीर्घकालीन सेवाओं से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,27,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में नंबर वन स्थान पर है। अब तक लगभग 102 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन लक्ष्य को केंद्र सरकार द्वारा 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने किसानों के हित में जिन किसानों ने स्लॉट बुक करा लिए हैं उनके गेहूं उपार्जन की अवधि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक कर दी है। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेज गति से अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ हुआ ये फील्ड कार्य 30 मई तक संचालित किया जा रहा है। राज्य के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक मकान, परिवार और अन्य संरचनाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से संकलित की जा रही है। राज्य में 1,37,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। दिनांक 25 मई तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 1,34,309 मकान सूचीकरण ब्लॉक में कार्य पूरा किया जा चुका है। 2,39,09,808 मकानों की गणना की जा चुकी है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने नौतपा के दूसरे दिन आज भोपाल, ग्वालियर सहित 45 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, नर्मदापुरम में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। इससे पहले नौतपा के पहले दिन कल प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते खजुराहो में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। बुधवार को न्यू चंडीगढ़ मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि विजेता टीम क्वालिफायर 2 में पहुंचेगी। रांची में 22 से 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी देव मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया, जबकि कुलदीप कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने 5.45 मीटर का शानदार प्रदर्शन करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। इसके साथ ही अकादमी के खिलाड़ी विनोद सिंह ने पुरुष 5

हजार मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की वायरल घटना के बाद मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पुनासा एसडीएम ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के सुपरवाइजर दीपक मालाकार सहित पांच अन्य कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खनिज अधिकारी ने बताया कि खदानों के नियम अनुसार संचालित न होने पर खदान का पट्टा निरस्त किया गया है। झाबुआ में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम श्रद्धा उत्साह और जनभागीदारी के साथ संपन्न हुआ। पंचज अभियान के अंतर्गत आगरमालवा जिला न्यायालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश देते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए सकोरे लगाए गए। भोपाल कलेक्ट्रेट में टीएल की बैठक आयोजित की गई। इसमें कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पीएम जनमन अभियान, धरती आभा अभियान और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। पेश है दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में। आज आपके साथ मैं हूं जूही राव। श्रोताओं, इन दिनों सूरज के तीखे तेवर से बचना बहुत कठिन हो रहा है। विशेषज्ञों द्वारा सलाहें दी जाती हैं कि दिन में 12 से 4 बजे तक बाहर ना निकलें। यदि जाना पड़े तो कैप, छाता, धूप का चश्मा यानी गॉगल लगाएं, पूरी बांह के कॉटन के कपड़े पहनें और पानी लेकर ज़रूर चलें। श्रोताओं, जब हम इतनी सारी सावधानियां खुद के लिए बरत रहे हैं तो इस मौसम में हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन हमारे आसपास विचरण करने वाले जो पंछी हैं, जो चौपाए हैं, बड़े और छोटे पशु हैं, वे भी इस चिलचिलाती धूप का सामना करते हैं। उन्हें हमारी देखभाल की और थोड़े से सहयोग की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे से प्रयासों से उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे आपके आसपास पेड़ और झाड़ियों को ना काटें, ये उनके लिए छाया का काम करेंगे। पंछियों के लिए पानी के सकोरे रखें। अगर आपके घरों में गमले हैं या पेड़ वगैरह हैं तो उनकी छाया में रखें। समय समय पर इनका पानी भी बदलते रहें। उनके लिए दाने की, कुछ छोटे छोटे भोजन की व्यवस्था करें। हरियाली कम ना होने दें, इससे चौपायों को गर्मी से राहत मिलेगी। उनके लिए अगर सब्जी भाजी बची हुई है तो वो सामग्री भी एक निश्चित स्थान पर और निश्चित समय पर रखें, वे आकर उसे खा लेंगे। साथ ही श्रोताओं, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप इनके लिए भोजन और पानी

करते हैं तो उनकी सेहत अच्छी रहती है। और यदि आप अपने कॉलोनी में या मोहल्ले में जगह जगह पर पानी के बड़े बर्तनों को रखें तो इन सभी को बहुत राहत मिलेगी। जिस तरह से हम अपने घर में पेट्स की यानी पालतू पशु पक्षियों की देखभाल करते हैं, तो उसी तरह से हम अगर थोड़ा सा प्रयास करें बाहर रहने वाले मूक प्राणियों के लिए, तो उनके लिए बहुत राहत की बात होगी वो श्रोताओं। और साथ ही अगर हम उनकी देखभाल करेंगे तो हमें पंछियों का मधुर कलरव हमारे जीवन में ताजगी लाएगा और हमें उनकी मधुर वाणी सुबह सुबह रोज़ सुनने को मिलेगी।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। अब आपको बताने जा रहे हैं आज के समाचार पत्रों से कुछ मुख्य समाचार और उपयोगी जानकारियां।

0: भोजशाला में बनेगा सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान। आस्था का अध्याय। मुख्यमंत्री ने मां वाग देवी की पूजा अर्चना कर ये घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के कारण लगातार महंगे हो रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थ, चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 3F पर रखनी होगी सतर्क नजर, ये कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 3F यानी फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कालापानी में बनेगा प्रदेश का पहला 2000 क्षमता का श्वान शेल्टर होम। 1 एकड़ में बनने वाला शेल्टर होम में होंगी आधुनिक सुविधाएं। उभरते युवा वायलिन वादक ऋषभ मलिक को नेशनल स्कॉलरशिप। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के प्रतिष्ठित यंग आर्टिस्ट CCRT नेशनल स्कॉलरशिप अवार्ड के लिए उन्हें चुना गया है। आपदा प्रबंधन व आपातकालीन तैयारियों की मॉक ड्रिल आज आयोजित की जाएगी। अभ्यास के दौरान सायरन बजना, आपातकालीन वाहनों की आवाजाही, खोज एवं बचाव की गतिविधियां दिखाई देंगी। नाटक किस्सा मछली का, मछली मछुआरे का मंचन आज होने जा रहा है अर्ध प्रेक्षागृह गांधी भवन में। श्रोताओं, ये थी कुछ जानकारियां आज के समाचार पत्रों से, और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।
1: मैं हूँ साधना श्रीवास्तव, उद्घोषिका, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर।
2: मैं मकरंद देशपांडे बोल रहा हूँ।
3: नमस्कार, मैं गोविंद नामदेव।
4: सभी श्रोताओं को आदाब, मैं हूँ इरशाद कामिल और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार भोपाल।
3: नमस्कार भोपाल।
1: नमस्कार भोपाल।
2: नमस्कार भोपाल। आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं।

0: मीडियम वेव डीटीएच प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप इसे सुन रहे हैं। श्रोताओं, राजधानी भोपाल स्थित तो मौलाना आज़ाद सेंट्रल लाइब्रेरी में क्या विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं छात्रों को और अन्य वर्गों को, आइए जानते हैं। हमारे साथ में है क्षेत्रीय ग्रंथपाल, बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में।
1: नमस्कार सभी को, मैं क्षेत्रीय ग्रंथपाल श्रीमती रत्ना वाधवानी सेंट्रल लाइब्रेरी से। यहाँ पर अभी हमने 190 के करीब पुस्तकें लॉन्च करी हैं। हमारे यहाँ जो छात्र हैं लगभग 500 छात्र रोज़ बैठकर यहाँ अपनी तैयारी करते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, पीएससी, यूपीपीएससी, रेलवे, पुलिस और नीट और आईआईटी सभी की तैयारी होती है। हर तरह के हर वर्ग के बच्चे हैं, तो बच्चों की डिमांड पर अभी हमने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए जनरल नॉलेज की, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान की किताबें, रेलवे की किताबें जो अभी रिसेंट बच्चों को चाहिए थे, क्योंकि अगले महीने कई प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उनको हमने लॉन्च किया था। और यहाँ पर जो है हर तरह की आपको किताबें मिल जाएंगी, 1 लाख से अधिक किताबें हैं हमारे पास, पुरानी भी बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास, सभी सब्जेक्ट में है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक, फारसी, मराठी, पंजाबी, सभी तरह की किताबें हैं हमारे पास, सभी का संग्रह है। और ये 117 साल पुरानी लाइब्रेरी है। और अभी यहाँ पर जो है कलेक्टर साहब आए थे अभी विश्व पुस्तकालय दिवस पर 23 अप्रैल को, और उस दिन उन्होंने औचक निरीक्षण किया था, और जैसे ही उन्होंने लाइब्रेरी देखी उसी दिन उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने कहा कि ये तो गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, इतनी बड़ी है। और सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने 2 बुक्स इशू भी कराई, उन्होंने 2 गजेटियर इशू कराए, उसमें से 1 गजेटियर का उन्होंने पूरा अध्ययन भी कर लिया है। वो कह रहे हैं मैं फिर से और किताबें भी इशू कराऊंगा, मैं नियमित रूप से पढ़ूंगा। जब हमारे कलेक्टर साहब बच्चों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि पढ़ो, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और बच्चों को यहाँ सकारात्मक माहौल मिलता है, पूरी तरह से सेंट्रल कूलिंग सिस्टम है यहाँ, ठंडे पानी की व्यवस्था है, वाईफाई की सुविधा है, और यहाँ की सदस्य

0: सदस्यता शुल्क है 600 रुपये वार्षिक है और 1000 डिपॉजिट है। जिस दिन आप लाइब्रेरी की सदस्यता छोड़ते हैं आपको 1000 मिल जाती है। हमारे पास सीनियर सिटीजन्स भी हैं। पिछली बार के बजट में हमने सीनियर सिटीजन्स की मांग का भी ध्यान रखा था और उनकी जो धार्मिक किताबें थी भगवत गीता रामायण वो सब हमने बुलवाई थी, उनका भी पूरा कलेक्शन है हमारे पास। और यहाँ पर जो है सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है तो उनको तैयारियाँ भी कराई जाती है, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है 1-to-1 उनको बुलाकर, यहाँ पर उनको विशेषज्ञों के सामने बिठाकर उनकी समस्याओं को समाधान किया जाता है। हम स्कूली बच्चे जो हैं 12th के बाद क्या करें उनके लिए भी हम कैरियर की संभावनाओं के लिए आसपास के स्कूली बच्चों को बुलाकर और हम एक्सपर्ट्स को बुलाकर और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं।
1: मैम, लाइब्रेरी से कई गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं, अदर देन मतलब पढ़ाई के
0: हाँ,
1: अलावा भी आप लोग आयोजित करते हैं।
0: हम जो है इपको के साथ जुड़े हुए हैं, जो पर्यावरण नियोजन संस्था है, जो हमारा अभी लाइफ पोर्टल मोदी जी ने लॉन्च किया है उसके साथ भी हमारे प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं। हम इपको के सारे प्रोजेक्ट्स में हमारा चयन हो चुका है और सारे प्रोजेक्ट्स में जो है हम भाग लेते हैं। उसके तहत अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं, जैसे हम जो है रैली निकाल कर रास्ते में सभी को पौधे बांटते हुए गए थे यहाँ काली मंदिर तक और सभी से हमने गुजारिश की थी, चाहे वो ऑटो वाला हो बस वाला हो, सबको रोक रोक के हमने पौधे दिए, राहगीरों को, चाय की गुमटी वालों को कि पौधे लगाइए क्योंकि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। हम सरकारी स्कूलों में जाते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को पौधे देते हैं और इस साल हमने जो है मुहिम चलाई थी कि दाना पानी रखेंगे, हमने यहाँ चिड़ियाओं के लिए गर्मी में दाना पानी रखा है और छोटे छोटे गमले तैयार किए हैं तो वो भी हमने बांटे हैं, जिनको भी चाहिए हम निःशुल्क देते हैं कि ले जाइए पर इसको बड़ा करिए। उसके साथ साथ हम विज्ञान प्रौद्योगिकी मैपकॉस से भी जुड़े हैं जो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, उसके तहत हमने गणित दिवस मनाया, हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं, वो सरल तरीक़ों से गणित के मॉडल जो हैं वो यहाँ पर अपने बनाए हुए लाते हैं, रॉकेट बनाकर लाते हैं और यहाँ बच्चों को गणित की सरल तरीके से बताते हैं बेसिक चीज़ें। तो हमारे जो UPSC के बच्चे हैं उनको जो 10 नंबर का गणित का पोर्शन आता है वो उनका इस बार बहुत अच्छे से निकला और 2 बच्चों ने अभी क्लियर किया है और हमारे बहुत सारे बच्चे अभी पटवारी में सिलेक्ट हो गए, पुलिस में सिलेक्ट हो गए, रेलवे में सिलेक्ट हो गए, UPSC में भी सिलेक्ट होते हैं, यहाँ से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। शांत वातावरण है यहाँ का, सकारात्मक है, बच्चों को कंपनी मिलती है कि बैठ के पढ़ें, अध्ययन की सुविधा तो है ही, साथ में उनको ये वातावरण मिलता है कि बैठ के हम पढ़ें, ना कहीं ये बच्चे कोचिंग जाते हैं ना कुछ, अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं और यहाँ से जो किताबों की आवश्यकता होती है वो लेते हैं, जो मार्गदर्शन हमसे चाहिए रहता है वो हम देते हैं। बीच में इनको कभी कोई परेशानी आती है, डीमोटिवेट हो जाते हैं तो हम इनको मोटिवेट करते हैं। कई लड़कियों को बीच में कहीं कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं अपने कक्ष में बुलाकर उनको उस तरह से भी समस्या का समाधान करवाती हूँ। इस तरह से जो है आप सभी यहाँ पर जब भी आएँ तो यहाँ भोपाल की जो शान है सेंट्रल लाइब्रेरी आइए, 117 साल पुरानी है। पहले ये अजायब घर के नाम से थी। सन 1955 में जब यहाँ के आसपास के लोगों ने कहा कि यहाँ एक लाइब्रेरी होनी चाहिए तो यहाँ की बेगम सुल्तान जहाँ ने अजायब घर का सामान जो है राज्य संग्रहालय में भेजकर इसको लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया।
1: यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें?
0: यहाँ आसपास के जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे यहाँ पर 15-20 तरह के पेपर आते हैं, मैगजीन्स आती हैं तो सुबह 8 से 9 बजे तक हमने निःशुल्क रखा है, तो आसपास के सीनियर सिटीजन्स 8 से 9 बजे तक आकर और यहाँ पर पेपर पढ़ते हैं। कैंटीन की भी सुविधा है स्व सहायता समूह से जो मुख्यमंत्री जी की योजना है, तो कम रेट में खाना भी मिल जाता है। कई बच्चे यहाँ गाँव के आसपास के यहाँ रहते हैं रूम लेकर, सब तरह की सुविधा है। आप सभी से गुजारिश है कि आइए और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है ये सेंट्रल लाइब्रेरी, जो पुस्तकालय पुरानी जो हमारी धरोहर है इसको देखिए और पढ़ने की जो है अपनी इच्छा जागृत करिए और सभी को इससे जोड़िए। मेरा सभी से गुजारिश है कि सभी जो हैं पढ़ने से जुड़िए और बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए जो है प्रेरित करिए। लाइब्रेरी का जो है नंबर है 07552741317। हमारा ईमेल है MACLbhopal@gmail.com। आप सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे आपको सब उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुनी जानकारी मौलाना आज़ाद सेंट्रल लाइब्रेरी में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में। हमारे साथ में थी क्षेत्रीय ग्रंथपाल श्रीमती रत्ना वाधवानी।

0: मीडियम वेव डीटीएच प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन और वेव ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस वर्ष। आइए जानते हैं क्या है चुनौतियां आज के समय में हिंदी पत्रकारिता के समक्ष। हमारे साथ में है,
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर सी जयशंकर बाबू पांडिचेरी से आया हूँ। मैं तेलुगु भाषी हूँ और सारे दक्षिण की भाषाएं जानता हूं। मैं 1990 के दशक में हिंदी का पत्रकार रहा, खुद मेरी भी पत्रिका रही, हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में लिखता रहा। तब मेरे पास एक स्नातक की उपाधि भी नहीं रही। हिंदी भारत की सबसे बड़ी भाषा है, सबसे बड़ा संपर्क भाषा है और हम लोग दक्षिण वाले, जो कि भारतीय संविधान में जहाँ ना भी लिखा गया हो, हम कहते हैं उसको भारत की राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा हर राष्ट्र के नागरिक की अपनी भाषा होनी चाहिए, अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी भी जाने, वो जो चेतना हम में थी, क्योंकि गांधी जी ने उस दौर में आज़ादी आंदोलन के दौर में जो चेतना भरी थी हिंदी तर भाषियों में, चेतना का फ़ायदा उठाते हुए हमने कार्य किया। जब रुचि थी तो मेरी मैं कार्य कर पाया और एक पत्रिका चलाई युगमानस के नाम से, और मैं बहुत आदर के साथ कह सकता हूँ कि उसी दौर में मेरे देश भर के हर राज्य के हिंदी के लेखक मेरे मित्र थे, कारण इसमें मेरी पत्रिका में लिखते थे।
0: जानना चाहेंगे कि क्या हिंदी पत्रकारिता के सामने कुछ चुनौतियां हैं?
1: सच्चाई ये है कि आज विश्वविद्यालय में मैं हूँ, तो एमए की बात छोड़ दीजिए, पीएचडी पाने के लिए जो विद्यार्थी आते हैं, हिंदी भाषी विद्यार्थी, उनको हिंदी नहीं आती, जो कि एमए बीए सारी उपाधियां होती है, पीएचडी की उपाधि हासिल करने जाते हैं। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आज डीप फेक की जो बात हो रही है, तो पत्रकार यदि अपना जो कार्य है, अपना जो धर्म है, मतलब भाषा में पकड़ बनाकर भाषा के माध्यम से संप्रेषण करते हुए जन जन तक अपनी बात पहुंचाकर जन चेतना को फैलाने की जो दृष्टि चेतना उसकी होनी चाहिए, उसमें वो असमर्थ है और निर्भर कर रहा है मशीन पे, और मशीन की गति प्रगति कैसी होगी और

0: यदि विशेषकर हम जिस जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं, भाषा उत्पादक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भाषा उत्पादक का मतलब वो भाषा सीखकर, मानव की भाषा सीखकर, फिर मानव की भाषा में वो अभिव्यक्ति करने की जो क्षमता है उसके पास, तो मैंने जैसे कहा कई सारी भाषाओं का डाटा एआई तक नहीं पहुंची है, इसलिए उसमें उतना सक्षम नहीं बन पाने की वजह से, तो जो भी आशा करेंगे भारतीय भाषा पत्रकार कि हम एआई के भरोसे पत्रकार बन के रहेंगे, तो वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। तो वही संदेश लेना चाहिए, और जिस भाषा में भी पत्रकार बनना चाहते हैं, संप्रेषण की क्षमता के साथ ही वो पत्रकार बन सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे, जो कार्य होता है कार्य को आसान बनाने के लिए हम मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमने जो भाषा लिखी है उस भाषा में वर्तनी का सुधार वगैरह वगैरह करने के लिए तो मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, और कहीं कहीं कुछ कार्य आसान बनाने के लिए, जैसे आपके पास प्रेस नोट अंग्रेजी में आया तो उसको हिंदी में आपको तब्दील करने के लिए मशीनी अनुवाद किया जा सकता है, मगर अंतिम रूप जो है प्रज्ञावान मनुष्य, मनुष्य की भाषा मशीन को सिखाकर मशीन से अपना काम जो ले रहा है, तो उसको अपनी क्षमता उतनी रखनी चाहिए जिससे कि मशीन उसका शासन ना करें।
1: आज के युवा पत्रकार हैं, उनको किन बातों की आप जरूरत बताना चाहेंगे?
0: बहुत बड़ी परंपरा रही है भारतीय भाषाओं की और भारतीय सभ्यता की, और हम लोग विश्व गुरु कहलाते थे, पूरी दुनिया के लिए ज्ञान देने वाले हम थे, पूरी दुनिया के विद्यार्थी आकर भारत में पढ़ते थे, तो फिर आज हम विदेशी विश्वविद्यालय की ओर क्यों ताक रहे हैं? तो हमारे पास यदि गुणवत्ता की कमी हुई है तो वो यदि समस्या है तो उसके आप और हम सब बागी हैं। तो इस गुणवत्ता को बढ़ाने में पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो वास्तव में हम लोग जो भी भाषा बोल रहे हैं, जो भी भाषा सीख चुके हैं, उस भाषा में पत्र पत्रिकाओं की और मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बड़ा पर्दा जो भी है, फिल्मों के माध्यम से भी आपकी भाषा की क्षमता बढ़ती रही, तो मतलब मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है पूरी दुनिया की भाषिक क्षमता बढ़ाने में। जो भी आधुनिक स्थितियों के अनुसार हमारे पास शब्दावली की कमी है, तो वो भी गढ़ने का हमारा काम है, प्रयास आज कई सारे किए जाने की ज़रूरत है, तब जाकर जो भी जिस क्षेत्र की जो समस्या है उनको निपटाने की दिशा में असंभव कार्य हम कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आपने जाना कि हिंदी पत्रकारिता और युवाओं जो कि हिंदी पत्रकारिता में आ रहे हैं उनके समक्ष क्या चुनौतियां हैं। हमारे साथ में थे डॉक्टर सी जयशंकर बाबू।

0: कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं ख्यात बुंदेली लोकगीत गायिका श्रीमती पुष्पलता शर्मा से।
1: नमस्कार, मैं पुष्पलता शर्मा ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। विदिशा जिले में गांव पवारिया में मेरा जन्म हुआ और मेरे माता पिता भी बहुत समाजसेवी थे और मेरे पिताजी रेस बुधा में काम करते थे, तो उनसे मैंने गायन सीखना शुरू किया। और जब गांव में हमारे यहाँ रेडियो बजता था सुबह, मेरे चाचा जी रेडियो लगाते थे आंगन में, तो मैं गाने सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि रेडियो में कहाँ से ये आवाज़ आ रही है, मुझे भी रेडियो में गाने को भगवान मिले तो अच्छा है। बचपन से ही मेरा बहुत लगाव था कि ये रेडियो में आवाज़ आखिर आती तो कैसे आती है, क्या होता रेडियो, ये मेरे मन में बचपन से बहुत उत्सुकता थी। और फिर इसके बाद मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई। शादी के बाद फिर ससुराल में भी गाने का माहौल नहीं मिला, मुझे ऐसा लगता था कुछ हटके करो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हम बहुत बड़े घर से थे और उस टाइम लड़कियों को बिल्कुल गाने का था ही नहीं। लेकिन मैं घर में गाना गाती रहती थी, भजन गाती थी, तो मेरा शौक था गाने का। और फिर बासुदा में मेरी शादी हुई। गाँव से निकलने में जब मैं मिडिल क्लास में थी, फिर मैंने पढ़ाई भी की, विदिशा ट्रांसफर हुआ तो वहाँ पे एक संगीतकार दोस्त थे, पिताजी आए थे और हम लोग गाना गा रहे थे दोनों बाप बेटी मिलके, तो जीना चढ़ के आए तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो कहले भाभी आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, आप रेडियो में ऑडिशन दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, रेडियो पर कैसे सिलेक्शन होता, मुझे नहीं आइडिया था। तो उन्होंने रतोनिया जी से मिलवाया उस टाइम पे भोपाल में, तो उन्होंने मेरे को खूब सारी विधाएं बता दी, तुमको ये आना चाहिए, तुमको वो आने चाहिए। अब मैंने सारी विधाओं के गाने कलेक्शन करना शुरू किया और 6 महीने के अंदर मैंने ऑडिशन दिया और मैं रेडियो से बी ग्रेड में 98 में पास हो गई। उसमें जन्म संस्कार, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की नारा छिनाई का गाना, फिर बच्चा को झूला झूला रहे हैं, फिर बच्चे का नाम संस्कार हो रहा है, सारे संस्कार जितने भी होते हैं 16 संस्कारों के पूरे गाने तैयार किए। और इसके अलावा फेस्टिवल जो त्योहारों पे गाने गाए जाते हैं वो सारे गाने भी मैंने सीखे। राई वगैरह तो हमारे गांव में बहुत होती थी, तो हम लोगों को सुवांग, राई, ये सब पिताजी से मैंने पूछा कैसे कैसे होते हैं। फिर उन्होंने कहा उलट बांसिया भी गाते हैं कबीरदास जी की, तो वो भी मैंने तैयार किए गाने। तो मुझे अपने पिताजी से ही सपोर्ट मिला। फिर 98 में मैंने एक संस्था बनाई, एक डायरेक्टर थे सॉन्ग ड्रामा डिविजन में विजय कुमार गबई, उनके साथ जुड़ी। तो मीना गर्ल्स साइड में यूनिसेफ से प्रोजेक्ट एक चल रहा था, उसमें हमने बच्चों से और मैंने खुद ने बहुत सारे गाने गाए, मीना अभियान में, शिक्षा अभियान में,

फिर एक और चला एजुकेशन का, उसमें भी हम लोगों ने बहुत जा जाकर गाने बनाए, कहीं पर्यावरण पे, कहीं शिक्षा पे, स्वच्छता पे, मलेरिया उन्मूलन पे, इनमें सब में मैंने काम किया। और बहुत सी जगह जहाँ जहाँ सॉन्ग ड्रामा डिवीजन के वो होते थे, जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का एक डिविजनल ऑफिस रहता था, तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। मेरी दो बेटियां हैं, एक बेटा है, और सब लोग हम मिलकर सोशल वर्क करते हैं। पेड़ लगाने का मेन उद्देश्य है हम लोगों का कि पेड़ लगाने चाहिए, और शिक्षा के ऊपर तो लोग हमें हेल्प भी करते हैं, पेड़ वगैरह डोनेट कर देते हैं। जमीन से लगाव है और मुझे कहीं भी ऐसे पेड़ नहीं दिखते तो मुझे बड़ा दुख लगता है। तो अब मेरा अगला टारगेट है कुशलपुरा में पेड़ लगाने का। हरे हरे।

0: ने जनजातियों के लिए भी काफी काम किया है, तो उसके बारे में बताएं हमारे सुनने वालों को।
1: दस्तावेजीकरण का काम मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला था, तो मैंने एक प्रोजेक्ट लगाया था भारिया जाति का, वहां से मेरे का अप्रूव हो गया प्रोजेक्ट। अब मैं कैसे करूं, क्योंकि वहां पतालकोट में 1000 फीट नीचे भारिया लोग रहते हैं। तो एक हमारे परिचित थे, वो पुलिस में थे, मैंने उनसे बात की तो वो कहले अरे हमारे भैया रहते हैं वहां पर, चलो हम आपको करवाते हैं। जब हम वहां पहुंचे तो वहीं से हमने एक कैमरामैन किया। हम नीचे उतरते उतरते इतने थक चुके थे, ये आ गया ये आ गया ये आ गया, जड़ी बूटियां पकड़ पकड़ के नीचे 1000 फीट उतरे। उस टाइम हम कुछ जीने का काम भी चल रहा था बनने के, तो हम लोग ऐसे ही, एक डॉग था हमारे साथ में और एक टीचर थे वहीं के और एक कैमरा मैन।

0: जब आदिवासियों से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा कि बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे, मतलब उनका काम है ताड़ी बनाना पीना, और महुआ आते थे तब उनकी शादी होती थी। तो फिर मैंने उनके साथ डांस किया और उनने अपना ढोल बजाया और मैंने कि सब लोगों को इकट्ठा कर लो, तो उन्हें आवाज़ करके सारे लोग आ गए इकट्ठे होकर। और उनका एक मुखिया रहता है मतलब गाँव का, तो मैंने पूछा कोई यहाँ आते हैं राजनीति वाले लोग, तो कहला हाँ आते हैं। तो वो लोग कुछ छोटे छोटे जैसे बीज रहते हैं ना सेम जैसे, उसकी वो लोग वहाँ पे ऐसी खेती सी टाइप के बेल वेल लगा के करते थे। तो मैंने मन में सोचा ये लोग कितने भोले भाले हैं, वाकई में इनका लोग शोषण कर रहा है, इनको नहीं पता है कि पैसा क्या चीज है। वो टीचर ही हमारे जो साथ गए थे वो पढ़ाने आते थे, छोटा सा स्कूल था और लोग ज्यादा नहीं थे वहाँ, 100-200 लोग होंगे मुश्किल से, ज्यादा बस्ती नहीं थी। और इतना ऐसा मतलब पूरा कुआ टाइप का तामिया में था। ऐसे मेरा भारिया जाति का बहुत अच्छा गहरा अनुभव रहा नीचे उतर कर, और सब महिला और पुरुष सब ने साथ साथ डांस किया। 99 की बात है, भगोरिया का किया काम, भगोरिया का हम उधर गए थे झाबुआ, झाबुआ में भगोरिया पे काम किया। उन लोगों के थे हाट मेला टाइप, अब तो बहुत अच्छे स्तर पर लगने लगा, जब तो ऐसे ही छोटा मोटा ही लगता था मतलब। और उसी में वो लोग लड़कियों को पसंद करते थे, वहीं से उनकी शादी हो जाती, तय हो जाती, मेले में सब अच्छे सज धज के आती हैं लड़कियां भी लड़का भी। तो उनका वो एक अपने जैसे सम्मेलन टाइप का होता है ना, वो भगोरिया जाति का एक सम्मेलन टाइप का होता है, हाट बाजार लगता है बढ़िया, और लड़का लड़कियों को पसंद कर लेते हैं और कुछ कुछ लोग लेके भी भग लेते हैं, उनका वो सिस्टम है वहाँ पे। तो उसमें भी बहुत अच्छा लगा, उन लोगों की वहाँ भी डॉक्यूमेंट्री बनाई, डांस वगैरह उनके होते हैं वहाँ भी मतलब।
1: आपने परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ पर दी है आप बुंदेली लोकगीत गायन की?
0: पहली बात तो आकाशवाणी का ही ज़्यादा शौक था, और दूसरी बात बुंदेली में मैंने फिर विदिशा में, बासुदा में, जहाँ जहाँ प्रोग्राम मिलते थे, लेकिन धार्मिक स्टेज पे ही मैंने गाया है। पुणे फेस्टिवल में, दुबई में दुबई फेस्टिवल होता है ना, उसमें एक बार दी है।
1: आपने बुंदेली लोकगीत गायन किन किन गुरुओं से सीखा है?
0: एक तो मेरे पिताजी से ही सीखा, फिर 6 महीना मैंने सुंदरलाल करेले जी से सीखा, और फिर इसके बाद मैंने सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट जी जो कि नूतन कॉलेज में प्रोफेसर रहे, उनके अंडर में मैं लगातार सीख रही। उनके सीखने से मुझे नॉलेज हुआ कि और विधाओं का, और कैसे अपने आप को अपन बढ़ा सकते हैं, कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं।
1: लोक संगीत को लोग तक पहुंचाने में जो आप इस समय कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो आप अगर बच्चों को सिखा रहे हैं या और भी जो कोई लोक संगीत में रुचि रखते हैं, किस तरह से शिक्षा देते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं?
0: वैसे तो शुरुआत तो सारेगामा क्लासिकल से ही होती है संगीत की, मैं आपको बता दूं, लेकिन किसी किसी की आवाज़ बहुत अच्छी रहती है, गॉड गिफ्ट है वो तो आवाज़ भी। तो जैसे बच्चे होते हैं उन हिसाब से उनको सिखाते भी हैं, और बहुत सी महिलाएं भी सीखना चाह रही हैं, जब सुनती हैं कह रही दीदी आप तो अच्छा गाती। जैसे कि बच्चा पेट में आता है तो अपन सोहर गीत गाते हैं, तो महिला अपनी सास को बताती है कि मतलब पेट में बच्चा है तो पता नहीं क्या होगा, तो उसके संदर्भ में एक बहुत अच्छा गीत है अंग।

0: राजा, इसका
1: हाँ
0: मतलब ये होगा वो कल्पना कर रहे कि शायद मेरे को लड़का होगा, चंदा सूरज मेरे आंगन में उग रहे हैं, तो उसके मन में कल्पना आ रही कि शायद मेरे को साजू लड़का हो सकता है। इसका पूरा गाने हैं और पूरे चार पांच अंतरा उनमें अलग है। गंगा जमन दो बहने आंगन बीच बह रही महाराज, मतलब लड़की के लिए गंगा जमन बहने आंगन में बह रही हैं, तो इस तरह से इसमें वर्णन है। लोक संगीत की जो धुन है मैं उनकी सब भट्ट साहब के साथ मिलकर नोटेशन तैयार कर रही हूँ, है ना।
1: मैम, आपने इतने लंबे समय से लोकगीत गायन और समाज सेवा के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, तो आपको पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं।
0: जब अपन को पुरस्कार मिलता है तो खुशी तो मिलती है, तो मेरे को पुरस्कार एक तो महिला आर्थिक विकास से, फिर गीत नाटक प्रभाग से 99 में पुणे फेस्टिवल में वहाँ प्रोग्राम हुआ और वहाँ मिला, फिर ग्रामीण विकास प्रशिक्षण मैंने करवाया तो उससे मुझे उनने सम्मान किया, फिर राष्ट्रीय रावण मेला में मैं

0: 28 साल से लगातार गा रही हूँ उसी मंच पे हनुमान जी के नाम पे, तो उनने भी मेरा सम्मान किया।
1: श्रोताओं, ये थी बातचीत ख्यात बुंदेली लोकगीत गायिका श्रीमती पुष्पलता शर्मा जी से। और इसी के साथ में आज का कार्यक्रम नमस्कार भोपाल होता है समाप्त। आज्ञा दीजिए जूही राव को, नमस्कार।
2: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
4: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री

0: माह कानी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब

0: सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो, ध्रुव कपिला और रोहन कपूर, रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड

बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरमई सवेरा कार्यक्रम में। गर्मी की अलसाई सी सुबह, सूरज अभी से अपने तीखे तेवर दिखा रहा है, ऐसे में आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे गाने जो सुनकर आपका मन ताजगी से भर जाएगा, आपको शीतलता का एहसास होगा।

आई है, और ऐसे में अगर आपको दफ्तर के लिए निकलना है या आपको किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलना है तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जब भी आप घर से निकलें पूरी सावधानी से निकलें। इस बीच एक बहुत सुंदर सा एक कोट मेरे सामने आया है जिसमें कहा गया है कि समस्या कैसी भी हो, चिंता से नहीं प्रयास से खत्म होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सामने कोई परेशानी है तो आप उसके बारे में अगर सोचेंगे तो आप परेशान ही होंगे, बल्कि आपको सोचना ये चाहिए कि कैसे इस परेशानी का हम हल निकाल लें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हल निकले तो आप इसके बारे में अपने बड़ों से, अपने दोस्तों से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं दोस्तों तो बातों ही बातों में बहुत सारी समस्याओं का हल चुटकियों में निकल आता है।

श्रोताओं, सुरमई सवेरा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कहा गया है कि चिंता करने से चतुराई घटती है, तो भाई ऐसा काम ही हम क्यों करें कि हमारी चतुराई पर कोई सवाल उठाए, हमारी चतुराई कम क्यों हो। भाई आप जो भी काम करें पूरी ईमानदारी और लगन से करें, काम का रिजल्ट क्या निकलेगा उसकी चिंता हरगिज ना करें। कहा गया है ना कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम करते जाएं, फल की चिंता ना करें, बस कोशिश ये हो कि आप जो भी काम कर रहे हैं दोस्तों उस काम में अपना 100% लगा ही दें।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से।

श्रोताओं, आजकल का जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है। हर कोई खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने की होड़ में लगा हुआ है। लोग खुद की खुशी से उतना खुश नहीं होते जितनी परेशानी उन्हें दूसरों का सुख देखकर होती है। तो हमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि भाई अपनी खुशी में खुश रहें, दूसरों की खुशी देखकर और ज़्यादा खुश हो। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरे की खुशी देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है कि आप भी उनसे प्रेरित होकर कुछ अच्छा काम अपने जीवन में कर सकते हैं। तो भाई दूसरे की खुशी में खुश हों, अपने काबिलियत को बढ़ाएं, फिर देखें कैसे आप सातवें आसमान पर होते हैं, कैसे सफलता आपके कदम चूमती है।

0: आकाशवाणी भोपाल पर सुरमई सवेरा का सफर जारी रहेगा इस घंटे की खास खबरों के बाद भी।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे आज राजस्थान के बीकानेर में बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा बलों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के सुचारू संचालन का आह्वान किया है। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की दो विभूतियों कैलाश चंद्र पंत और डॉ. नारायण व्यास को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश की इन महान विभूतियों ने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,27,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में नंबर एक स्थान पर है। कल तक लगभग 102 लाख मीट्रिक टन

0: गेहूं का उपार्जन हो चुका है और मौसम विभाग ने नौतपा के दूसरे दिन आज भोपाल, ग्वालियर सहित 45 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, नर्मदापुरम में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। कल प्रदेश में सबसे अधिक तापमान खजुराहो में 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड हुआ। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। एक बार फिर लौटते हैं सुरमई सवेरा की सफर की ओर।

सुरभि सवेरा सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। दोस्तों, आप खुशियां ढूंढते हैं ना? जी हाँ, हर इंसान जीवन में खुशियां चाहता है और इसके लिए कोशिश भी करता है। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि भाई, खुशी जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पलों में हम कई बार खुशी के बहुत सुंदर लम्हे पा जाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें ध्यान नहीं दें उन पर, तो वो आकर चले जाते हैं और हम एहसास भी नहीं कर पाते कि ये प्यारा सा लम्हा हमारे जीवन में आया था। खुशी पाने के लिए तो एक प्यारा सा गाना हो, या फिर शांत बैठकर मनपसंद मित्रों के साथ चाय पीना हो, या अपने पसंद की कोई फिल्म देखना हो, या किसी फेवरेट राइटर की किताब पढ़ना हो, ये भी तो आपको खुशी दे सकता है। इस समय गर्मी का मौसम है, आप सुबह सुबह उठें और पौधों को पानी दें, फिर देखें आसपास कैसे छोटी छोटी चिड़िया आती हैं उस पानी के साथ खेलने के लिए। पौधे कैसे हिलते हैं डुलते हैं हवा में, ऐसे लगता है जैसे आपका शुक्रिया कर रहे हों कि आपने उनकी थोड़ी सी ही सही सेवा की। जी हाँ दोस्तों, ये भी खुशी पाने का एक प्यारा सा कारण हो सकता है, तरीका हो सकता है।

दोस्तों, ज़िंदगी झरनों सी तब हंसेगी जब आप खुद पर भरोसा रखेंगे, अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं देंगे, अपनी खुशियों की वजह खुद ढूंढेंगे आप, तभी आप प्रसन्न रहेंगे, अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे।

इसी गीत के साथ सुरमई सवेरा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है सुगम संगीत कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राधिका चोपड़ा की गाई चंद गजलें।

सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं राधिका चोपड़ा के गाए गजलें।

सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं राधिका चोपड़ा की गाई चंद गजलें।

राधिका चोपड़ा की गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी

0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं वरिष्ठ कवि श्री प्रयाग शुक्ल से शुभम तिवारी की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम शब्द सागर में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज एक जगह है जहां पर हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का एक अद्भुत समागम देखने को मिलता है। एक ऐसे ही व्यक्तित्व को आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है और संयोग से आपका नाम भी प्रयाग ही है। प्रयाग शुक्ल जी आज अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ हमारे साथ मौजूद हैं और उनके व्यक्तित्व में भी कला का, आलोचना का, अनुवाद का और भी विधाओं का अद्भुत संगम हमें देखने को मिलता है। तो आज हम इन विधाओं के अंतर्गत जो उनका लेखन कार्य है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, इनके अंतर संबंधों को जानने का प्रयास करेंगे। शुक्ल जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियोज में आपका।
2: धन्यवाद आपका बहुत।
1: सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि भोपाल से आपका एक लंबा नाता रहा है, तो आकाशवाणी भोपाल में आप मौजूद हैं और आकाशवाणी का भी ये 90वां प्रसारण वर्ष चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
2: सबसे पहले तो आकाशवाणी को बधाई देना चाहूँगा। देश की एक ऐसी संस्था है जिसके पास इतना बहुमूल्य भंडार है आर्काइवल, और अब से 90 वर्ष पूरे किए हैं, इसकी खुशी तो हम सबको बहुत अधिक है।
1: शुक्ल जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि हम कई रचनाकारों को देखते हैं कि वो एक ही विधा में अपने जीवन काल में लगे रहते हैं, चुक जाते हैं या उसमें कार्य करते करते थक जाते हैं। आपने कई विधाओं की सम्यक साधना की है, तो ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि ये संभव कैसे हो पाता है?
2: देखिए, ये संभव तो कुछ इच्छा से होता है मेरे ख्याल में, और कुछ परिस्थितियों से भी होता है, कुछ प्रसंगों से भी होता है, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के कारण भी होता है
1: जी,
2: कि कोई आपका साथी है उन दिनों का, या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इसके लिए प्रेरित करता है कि आप सभी विधाओं में दिलचस्पी लो। तो मेरे साथ तो एक घटना ये घटी थी कि मैं 23 बरस का था जब कल्पना जैसी पत्रिका में पहुंचा था, और कल्पना आप जानते हो हिंदी की ऐसी पत्रिका मानी जाती है कि सरस्वती, कल्पना, ये दो पत्रिकाएं हैं जिनका स्थान हिंदी के साहित्य में, पत्रकारिता में, साहित्यिक पत्रकारिता में बराबर याद किया जाएगा। तो संयोगवश मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ 18 बरस का था, तो मेरी 2 चीज़ें छप चुकी थी, एक कहानी और एक कविता। तो पहले तो जब मैं पहुंचा कलकत्ता से, कलकत्ता में ही बड़ा हुआ आप जानते हो,
1: जन्म भी आपका वहीं,
2: हाँ जन्म भी वहीं का है, तो वहाँ से पहली बार मैं बाहर निकला था। कुछ परिस्थितियाँ भी ऐसी थी पारिवारिक कि लगा कि नहीं, मुझे कुछ कहीं कुछ करना चाहिए, और लिखना पढ़ना तो शुरू हो गया था। तो बद्री विशाल जी, उनको कभी भूलता नहीं, बद्री विशाल पित्ती, मतलब एक धनाढ्य परिवार का एक युवा
1: जी
2: जिसने कल्पना शुरू की थी, और जो बहुत सारे लोगों को संगीत की दुनिया में, पंडित जसराज, नृत्य की दुनिया में कई लोगों को, और साहित्य की दुनिया में, तो सबके साथ उनका एक संबंध बन गया था युवा दिनों से ही, कल्पना के कारण भी, उनकी अपनी रुचियों के कारण भी। तो कल्पना में पहुंचा तो मैंने पाया कि वहाँ हर अंक में हम देखा भी करते थे कल्पना के अंक
1: जी,
2: बल्कि हम लोग उन दिनों, तो याद है मैं और मेरे मित्र अशोक सिकसरिया, हम लोग कई 1-2 किलोमीटर चल करके नेशनल लाइब्रेरी जाते थे कि शायद कल्पना का अंक आ गया होगा, उसका आकर्षण ऐसा था उन दिनों। तो उसमें प्रतिष्ठित चित्रकारों की पेंटिंग्स छपती थी, रेखांकन आते थे विनोद बिहारी मुखर्जी से लेकर के राम कुमार और भी कई लोग। तो देखा उसको निकट से, कोई फिर उसमें काम करने लगा तो कई चीज़ों से गुजरना ही पड़ता था कि आप सेलेक्ट कर रहे हो कि क्या जाएगा, और या बद्री विशाल जी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ सलाह कर रहे हैं, या आपके सामने वो खोल कर बैठे हैं, तो एक गहरा आकर्षण पैदा हुआ था
1: जी।
2: और फिर ये था कि कल्पना में, चूँकि उस ज़माने में आप सोचिए फिल्म पर भी सामग्री जाती थी, अच्छी सामग्री, और उसके पहले प्रतीक जो हम लोग देख चुके थे अज्ञे का
1: जी,
2: उसमें भी ये था कि नृत्य पर, कला पर, इन सब चीज़ों में पर सामग्री रहती थी। तो ये संयोग बड़े सुंदर मेरे जीवन में बनते चले गए कि हम लोगों ने बिल्कुल युवा दिनों में प्रतीक देखा, कल्पना देखी, दो पत्रिकाएँ खास तौर पर, और उनमें चीज़ें पढ़ते थे, संगीत

0: पर भी कुछ आ रहा है। तो बहुत मन में ये धारणा बहुत गहरे बैठ गई थी कि सभी कलाओं में दिलचस्पी होनी चाहिए, और सच पूछिए तो उस दिलचस्पी के कारण ही ये हुआ कि फिर कल्पना जैसी पत्रिका में रहते हुए भी मैंने हैदराबाद छोड़ दिया
1: जी,
0: इसलिए कि मेरे एक मित्र महेंद्र भल्ला, आप जानते हो, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, कवि भी, वो चिट्ठियाँ लिखते थे, हमारी काफ़ी मैत्री थी, कि हमने आज इब्राहिम अलकाज़ी का नाटक देखा, हम राम कुमार जी को मिले, हमने यामिनी कृष्णमूर्ति का नृत्य देखा, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ। तो सचमुच बिना कुछ सोचे समझे
1: जी
0: मैं दिल्ली पर चला गया, तो कहानी फिर यहाँ से दूसरी से और शुरू हो जाती। अब सबसे परिचय था वहाँ, तो श्रीकांत वर्मा, राम कुमार जी, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती जी विशेष रूप से, इन लोगों को के साथ पहुँचते एक संबंध बना, और मालूम हुआ कि दिन मान निकलने वाला है। तो मैं सोच कर ये आया था कि फ्रीलांसिंग करूँगा और लिखूँगा पढ़ूँगा इन्हीं सब चीज़ों पर, बस शुरुआत हो गई ये कहानी है।
1: तो क्या ये कुछ इस तरीके से हुआ कि पहले एक विधा में आपने दखल दिया और उसके बाद आपको दूसरी विधा ने आकर्षित किया, तो दूसरी विधा में भी आपने दखल देना शुरू किया और दोनों में काम साथ साथ चलता रहा और इसी तरह आगे बढ़ता गया?
0: नहीं, फिर ये हुआ जब मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली, उस समय की दिल्ली
1: जी जी,
0: कि वो फिर खाली लिखने तक सीमित नहीं थी चीज़ें, वैसे से फिल्म पर लिखना तो बाद में शुरू किया, किताब भी एक जीवन को गढ़ती फिल्में, और बहुत गहरा आकर्षण है फिल्मों के लिए, अच्छी फिल्मों के लिए, विश्व सिनेमा की। तो ये हुआ था कि लिखूँ चाहे ना लिखूँ, पर देखते ही हम सब थे, जैसे मैंने यामिनी जी के उस समय की कोई उनका कोई ऐसा डांस रिसाइटल नहीं होगा शायद जो मैंने ना देखा हो। फिर बाद में एक आध बार कभी लिखने का मौका आया तो वो भी किया। अच्छा हाँ, इसे ये चीज़ भी याद आई, देखिए कि खाली देखना या लिखना या दिलचस्पी लेना भी आपके कितने काम आता है। जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ा 99 के लगभग, तो NSD में पहुंचा, नेशनल का ड्रामा में, राम गोपाल बजाज में ले गए वहाँ। अब ये मैं कैसे कर पाया, क्योंकि रंगमंच पर इतना तो नहीं लिखा था, दो चार चीज़ें ही लिखी थी, पर उनको ही पता था कि इनकी दिलचस्पी कितनी गहरी है, ये इस काम को कर सकेंगे। तो मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका रंग प्रसंग निकाली, 12 साल रहा उनके साथ, पूरा देश देखा, उनकी दुनिया से संबंध बना, कला की दुनिया से मेरा संबंध शुरू से था, क्योंकि कला पर सबसे पहले लिखना शुरू किया था। जब मैं फ्रीलांसर था तब भी सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अग्गे के सब संपादक थे, तो उन्होंने ही मुझे कला का कॉलम सौंपा था, दो ही चीज़ें मेरी उन्होंने लिखवाई थी, फिर उनके आधार पर कि शायद ये काम कर सकेंगे, उसने मेरा जीवन ही बदल दिया। 10 साल मैं निर्माण में रहा, कला का कॉलम लिखा, 2-3 साल फ्रीलांसर के तौर पर, फिर अग्गे जी मुझे ले आए थे निर्माण में, उन्हीं दिनों 1967-66 में फ्रीलांसिंग करता था, 69 में बाकायदे उन्होंने ज्वाइन कराया, फिर वहाँ मैं 10 साल कला कॉलम लिखता रहा। इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं, अनंत यादें हैं
1: जी। जैसा आपने अभी कहा कि मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, लेकिन पढ़ता सब कुछ था, देखता सब कुछ था, क्या जो आज के साहित्यकार हैं, नवोदित और युवा साहित्यकार हैं, क्या उनको भी आप ये शिक्षा स्वरूप कहना चाहेंगे कि आप हर विधा पढ़िए, भले ही आपका लिखने का जो मन है वो एक विधा में?
0: ये तो मैं सबसे मिलते ही कहता हूँ, कभी कभी लिखता भी हूँ एक प्रस्ताव की तरह कि करना कितनी सुंदर बात है। अभी तो हाल की घटना देखिए भोपाल की आपको बताऊं, सुदीप सोनी हमारे युवा मित्र, इन्होंने अभी एक सिनेकारी करके ये एक कार्यक्रम करते हैं हर साल, तो उसमें मैं भी था इस बरस, तो वो दृश्य देखकर ही मैं इतना प्रसन्न हो गया। उस दिन बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ा कि उसमें संगीतकार हैं और थिएटर के लोग हैं, फिल्मकार तो थे ही, युवा फिल्मकार भी कई थे, तो काफ़ी प्रसन्न हुआ मैं, क्योंकि वो दृश्य ही प्रसन्न करने वाला था, क्योंकि कलाओं की एक आपसदारी, उनका एक दूसरे से उनका साझा तो बहुत गहरा है, और वहीं से सच पूछिए तो आपको चीज़ें मिलती हैं जो सोचने की, कुछ चीज़ों को नई तरह से देखने की, और

0: वो जीवन के अनुभव को भी बहुत गहरा, तभी वही करती हैं
1: जी।
0: उसके बिना मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ कर सकती है। क्योंकि देखिए ये बात तो, ये आकर्षण क्यों हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक तरह की सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा हुई, तुम इसी दुनिया में रहो,
1: बिल्कुल
0: ये बहुत कुछ तुमको देगी, उसे दिया है मुझे। मैं तो अपने को ये भी यही मानता हूँ कि मेरा जीवन जैसा बना वो बिना कलाओं के नहीं हो सकता था, मतलब वो आनंद उठा ही नहीं सकता था मैं किसी और तरह से। ये तो अपने अनुभव से जानता हूँ
1: जी,
0: कि उस प्रसंग से फिर ये धीरे धीरे अपने आप ही शायद होता है कि आप उन बड़े रचनाकारों से मिलते हो, या उनके बारे में पढ़ते हो, या उनको निकट से देखते हो, तो ये चीज़ें समृद्ध करती हैं।
1: बिल्कुल। आगे जानना चाहेंगे शुक्ल जी आपसे कि आप एक कवि भी हैं, आलोचक भी हैं, और ज़रूरी नहीं कि जो एक कवि होता है वो एक अच्छा आलोचक भी हो, या इसका उल्टा कि एक आलोचक हो वो अच्छा कवि भी हो, लेकिन जहाँ इन दोनों का या दो विधाओं का समन्वय होता है वहाँ फिर किस प्रकार के तत्व काम करते हैं?
0: वहाँ एक मेरे ख्याल में सहज एक उत्सुकता भी काम करती है कि आप चीज़ों को एक नई उत्सुक निगाह से देखते हो। जैसे मेरी किताब है कविता की भाषा और भाषा का समाज
1: जी,
0: तो उसमें हमारे कई हमसे अग्रज कवियों के, हमसे पहले के संस्मरण भी हैं, लेख भी हैं, तो उसको आलोचना कहिए आप, उसको एक चाहिए कहिए कि एक जानने की इच्छा थी, परखने की, लिख करके
1: जी
0: को होती है आपकी इच्छा। जैसे केदारनाथ अग्रवाल जी, अब हम लोग बचपन में, बचपन तो नहीं, किशोरावस्था में, युवावस्था में उनकी एक रचना पर हमको याद भी हो गई थी काफ़ी हद तक, अब कुछ पंक्तियाँ याद हैं। माँ जी ने बजाओ बंसी, मेरा मन डोलता कि मेरा तन डोलता, ऐसे ही है, जल का जहाज जैसे पल पल डोलता, तो उन पर लिखा एक लेख
1: जी,
0: अब उसमें एक आनंद आने लगता है। जैसे फिर उस किताब में या उस किताब के लेखों में मैंने ये क्यों जांचना चाहा कि ये किस तरह का संबंध कविता का अपने समाज से होता है।
1: आपके अनुवादक पक्ष से अगर हम कुछ सवाल करना चाहें आपसे, क्या अनुवादक होने के लिए पहली शर्त ये होती है कि कई भाषाओं की जानकारी आपको हो?
0: कई भाषाओं की चाहे न भी हो, एक ही भाषा की हो तो भी काफ़ी है
1: जी।
0: अब मुझे तो जिन दो दो भाषाओं से अनुवाद किए हैं, बांग्ला से और अंग्रेजी से
1: जी,
0: तो बांग्ला का प्रसंग तो ये है कि कलकत्ता में बड़ा हुआ, जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ बांग्ला भाषी छात्र ही अधिक थे, तो एक सहज ही उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा था मुझे
1: जी।
0: पढ़ने के लिए तो करना पड़ा थोड़ा बहुत, उसमें प्रयत्न भी किया कि मैं ठीक से पढ़ सकूँ, संभव हो तो लिख भी सकूँ, बांग्ला लिपि में कुछ लिख सकूँ, लेकिन फिर किताबें पढ़ना, उस भाषा में उतरता चला गया, तो जिसका एक बहुत बड़ा लाभ मुझे हुआ, और बंकिम बाबू के निबंधों का अनुवाद किया, गीतांजलि का अनुवाद किया
1: जी, वो तो बहुत बड़ा काम आपका हुआ,
0: जीवनानंदास की कविताओं का अनुवाद किया, शंकु घोष की कविताओं का अनुवाद किया, और चूँकि भोपाल में बैठा हूँ इसलिए सहज ही देखिए ये बात याद आ रही है कि वो भारत भवन आए थे शंकु घोष जी भारत भवन के निमंत्रण पर, और 15 कविताओं का अनुवाद तो यहीं बैठ कर किया था उनके साथ, और उनके उनसे मिलना है, यहाँ प्रसंग आ गया है उनका, तो कहना चाहता हूँ कि उनसे मिलना मेरे जीवन का एक बहुत बड़ी प्राप्ति थी, क्योंकि वो कभी भी ऐसे थे, व्यक्ति भी ऐसे थे, उनका अध्ययन भी ऐसा था, जिसमें होता है ना कि किसी की प्रेजेंस ही आपको बताती है, कभी कभी किसी की उपस्थिति ही इतना कुछ आपको देती है, उसका सोचने का ढंग, बोलने का ढंग, जीवन जीने का ढंग, कि आप उसी से समृद्ध होते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये बात समझ में आई मेरे कि अगर अनुवाद बहुत किए हैं मैंने, करने में बहुत आनंद भी आया, उसका एक बड़ा कारण समझ में आया कि अनुवाद करके ही आप अपनी भाषा को जान सकते हो
1: जी,
0: क्योंकि जब आप लिखते हो, कोई भी लेखक तुम्हारे लिए एक ड्राफ्ट बनाएगा, दो ड्राफ्ट बनाएगा, तो ये होता है कि पहले ड्राफ्ट में वो ज़्यादा सोचता नहीं, जो शब्द उसके पास सहज ही होते हैं वो उसी के प्रवाह में वो लिखता है, पर अनुवाद में तो फिर आप ये सोचते हो कि इसमें हम क्या करें, कि राम कमरे में आया, कि राम ने कमरे में प्रवेश किया, संदर्भ क्या है
1: जी,
0: और व्यक्ति वो कौन है, ये तो एक ही उदाहरण हुआ, फिर बड़े ऐसे बीसियों उदाहरण।

0: जहाँ आप डिक्शनरी भी देखते हो, उस संदर्भ पर कई बार सोचते हो, उस संदर्भ के हिसाब से अपनी भाषा के शब्द पर्यायवाची शब्द भी आप ढूंढते हो
1: जी,
0: कि मैं इस समय क्या करूँ, लिखूँ तो क्या अच्छा रहेगा,
1: और आप समृद्ध होते जाते हो
0: उसी से, होते हैं और उसी से बहुत आनंद भी आता है, क्योंकि अपनी भाषा को जानने का आनंद भी एक बड़ा आनंद है ना।
1: आपकी कविता भी है ना नए शब्द कि जैसे जैसे हम शब्द जानने का प्रयास करते हैं
0: जी।
1: प्रयाग जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि अनुवाद को भाषाओं का ही नहीं संस्कृतियों का भी सेतु कहा जाता है, थोड़ा सा इसे हमारे श्रोताओं के लिए व्याख्यायित करें।
0: नहीं, वो तो निश्चय ही है। देखिए, हम लोगों ने भी जो जाना अपने जीवन में भारतीय साहित्य के बारे में, विश्व साहित्य के बारे में, वो कैसे जाना? अगर अनुवाद न होते तो हम विभिन्न देशों की संस्कृतियों के बारे में, उनके खान पान के बारे में सहज ही जो हम जान लेते हैं किताब पढ़कर या कोई फिल्म देखकर, उसमें का अनुवाद तो है ही। और अनुवाद में देखिए, अनुवाद के साथ ये बात भी याद आई कि खाली किताबों का अनुवाद ही नहीं, मैं कोई फिल्म देखता हूँ तो उसमें सबटाइटल्स रहते हैं
1: जी,
0: तो आप कई तरह से भाषाओं के साथ आपका एक रिश्ता बनता है, है ना?
1: बिल्कुल।
0: और अनुवाद में तो बहुत ज़्यादा बनता है।
1: बिल्कुल,
0: ये तो होता ही है।
1: आगे आपसे जानने का प्रयास करेंगे, थोड़े से सवाल करना चाहेंगे नई पीढ़ी को लेकर। कई बार हमें ये देखने को आ रहा है कि नई पीढ़ी थोड़ा है, उसका एक वर्ग है जो वो पठनीयता से दूर हो रहा है, या जो थोड़ा बहुत वो लिख भी रहे हैं वो उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का होना चाहिए। इस संकट को आप कैसे
0: देखिए? मैं इस पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम लोग अक्सर एक एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं
1: जी,
0: कि अरे नई पीढ़ी इतना पढ़ नहीं रही, नई पीढ़ी इतनी अवेयर नहीं है। ये नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मैं इसके सचमुच ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि फिर आपको ऐसे व्यक्तियों से भेंट होती
1: जी।
0: इसमें मेरा मानना है, अब तो
1: जेन जी
0: ऐसे हम संबोधित करते हैं, एक से एक लड़के लड़कियाँ मिलते हैं जो पहले इस तरह के नहीं थे, खूब पढ़ने वाले, अच्छा सोचने वाले, अच्छी बातें करने वाले, कलाओं से गहरा संबंध रखने वाले। अब वो भी आपके रुचियों के कारण होता है कि आप उनसे कैसा संबंध बनाते हो। मैं तो इस समय खाली युवा लोगों से ही अधिक मिलता हूँ
1: जी, बिल्कुल।
0: अब उसको ढूंढ कर मिलता हूँ, खोज कर मिलता हूँ, और पता चलते ही उनका काम देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है, और मैं समझता हूँ ये मानना बहुत सुंदर बात है, कि मेरा ज़माना था वो तो था, कल्पना का ज़माना था, दिनमान का ज़माना था, 60s का ज़माना था, 70s का, जब पूरे देश में बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन ये भी तो मेरा ज़माना है।
1: बिल्कुल,
0: कि मैं युवा लोगों से मिल रहा हूँ और उन्हीं से आजकल अधिक मिल रहा हूँ, तो मेरा ज़माना तो है। अभी मैंने सुदीप सोनी और उस दिन मिले बहुत सारे युवा लोगों का जिक्र किया, अपने निजी अनुभव से जानता हूँ, इस समय एक से एक ब्राइट लड़के लड़कियाँ हैं
1: जी,
0: और मुझे बड़ी खुशी होती है उस बात की, और उनको जानता हूँ, पर संबंध है मेरे लगभग हर विधा के लोगों से, युवा पीढ़ी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। और अब वो खाली एक शहर में नहीं है कि भोपाल है, दिल्ली,
1: हर एक शहर में जी,
0: हर शहर में है। और मैंने अभी तो ऐसा मौका नहीं है, मैं नाम गिनाता भी हूँ, ताकि जो लोग नहीं मन के बारे में जानते अगर तो जाने, अपनी बातचीत उनको लाता हूँ।
1: एक समस्या लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलती है कि जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वाद का शिकार हो जाती है, तो इसकी चिंता को आप कैसे देखते हैं और उसका समाधान आप क्या सुझाना चाहेंगे?
0: देखिए, समाधान तो व्यक्ति खुद उसका करता है
1: जी,
0: आपके कहने से नहीं होता। ऐसे मेरा मानना है कि उसमें कोई बुराई नहीं है। अब बहुत लोगों को आप पाओगे कि वो इस गहराई से जुड़ते हैं किसी कला माध्यम से कि पूरे आजीवन नहीं छूटती उनसे। बहुत लोगों का संबंध टूट जाता है, थोड़ा हो जाता है, फिर लोग याद भी करते हैं, अरे हम अपने ज़माने में कॉलेज स्कूल में नाटक खेला करते थे, अब वो दिन नहीं रहे, ये भी होता है। और कुछ लोग हैं सब लंबा उनके साथ का संबंध रहता है। इन चीज़ों को लेकर सच पूछे तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि समाज में ऐसे लोग मौजूद रहें वही काफ़ी होता है, संख्या से भी नहीं होता। मान लीजिए बहुत सारे लोग, जो लोग गहराई से जुड़ते हैं वो निश्चय ही अपने साथ 10 लोगों को प्रभावित करते हैं
1: जी,
0: संभव ही नहीं कि ना करें।
1: बिल्कुल।
0: अब हम ही लोग जो मिला था अपनी पीढ़ी से, किन लोगों से मिला था, जो भाषा का मान लीजिए कोई अलग व्यवहार जो करते थे, जिनके नाटकों में हमने कुछ नया होते देखा,
1: हुँ, हुँ।
0: अब हमारे बाबा कारण जी थे।

0: हमारी पीढ़ी के जो लोग उनकी याद करता हूँ, तो ऐसे कई नाम मैं ले सकता हूँ हर साहित्य की दुनिया के भी, अपनी से पहले की पीढ़ी की, और उन्हीं से मिला और उसकी बात आज भी करता हूँ। असल में उन चीज़ों में जाते ही मुलत से जाते हैं एवरेज निकालने में, और मैं मानने लगा वो नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार इससे घटना याद आ गई, सुना देता हूँ, बड़ी सुंदर है वो। तो हमारे मित्र देवेंद्र राज अंकुर, जो आप जानते हो कि कहानी का रंगमंच वाले और एक बड़े रंगकर्मी, तो एक दिन किसी पत्रकार ने उनसे कहीं पर पूछा कि आपको नहीं लगता कि नाटक के दर्शक कम हो रहे हैं? तो उन्होंने छूटते ही कहा कि ये सवाल आप कहाँ के लिए कर रहे हो, मतलब मराठी के लिए कर रहे हो, बम्बई के लिए कर रहे हो, कि कलकत्ता के लिए कर रहे हो? तो कितनी सुंदर बात है उन्होंने कही कि आप एवरेज निकाल कर फिर आप फंस जाते हो, आपके मुझसे अरे आप कहाँ देखने वाले हैं, आपके क्षेत्र में नहीं, इसका मतलब तो नहीं कि नहीं है। तो दुनिया हम लोगों की सचमुच इस कारण ही बड़ी हुई कि हमने उसको माना ही नहीं, चारों तरफ निगाहें रहीं, और फिर मौके भी ऐसे मिले। अब रंग प्रसंग निकाला तो मैंने देश भर की यात्रा की थी, और बजाज भाई से कहा था कि मुझे भेजिए अलग अलग शहरों में, तभी तो मैं जानूंगा वहाँ के कौन लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं। अभी तो उनको मैं नाम से जानता हूँ, तभी तो मेरी भेंट हुई, तभी तो मैं गया इम्फाल, गया रतन थियाम जी से, जो अंत में फिर दोस्ती में बदल गई, और हमारे वामन केंद्रे जी महाराष्ट्र के, कावलम लाल पड़कर केरल के, ये कैसे हुआ? ये इसलिए होता है कि आप ये नहीं सब मानते कि अरे लोग कम है, नई पीढ़ी ऐसी है, पुरानी पीढ़ी ऐसी है, आप देखो
1: कुल मिलाकर इसमें ना उलझे।
0: हाँ, मैं इस पर बिल्कुल मत उलझिए, आप देखिए, आप खुद पूछिए। पत्रकार तो आजकल पत्रकारों से खास तौर पर कहता हूँ कि भाई ऐसा क्यों करते रहते हो, और हम लोगों ने हमारे ज़माने में चूंकि हमने ऐसा नहीं किया तो हमको बहुत लाभ मिला। हम सोचते थे, हम जोड़ते थे इससे उससे, अपने आप ही जुड़ते थे लोग। अच्छा अच्छा असम के कवि कौन है? मैं मलिक गुवाहाटी जाता था, 7 बार गया हूँ, तो मैं क्या करता था? अच्छा वहाँ नीलिम कुमार है, वहाँ तुलसी है, वहाँ ये है, फिर उनसे मिलता भी था। दुनिया मेरी बड़ी हुई ना, काफ़ी बड़ी हुई। मैं पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों के लेखकों के नाम गिना सकता हूँ, विभिन्न पीढ़ियों के। वो कैसे हुआ? वो फिर आपकी इच्छा से होता है। अब इच्छा ही ना हो, आप मानकर बैठ जाओ कि कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा।
1: प्रयाग जी, जानना चाहेंगे आपसे, हमने देखा कि आपको जो सानिध्य मिला है बड़े बड़े शिखर पुरुषों का मिला है, चाहे अज्ञेय जी हों, नागर जी हों, और निराला जी जैसे लोग हों, तो इनके
0: निराला से भी एक बार तो भेंट है।
1: जी जी जी, जी आपने जिक्र किया था एक बार, तो इनके सानिध्य से कोई एक ऐसी अनूठी बात जो आपको जानने को मिली हो और आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें।
0: नहीं देखिए, बहुत सारी बातें जानने को मिली हैं, और आप जानते हो स्वामीनाथन जी के साथ तो मेरा संबंध कितना गहरा था।
1: बिल्कुल,
0: उनकी जीवनी लिखी है स्वामीनाथन, एक जीवनी, और अभी एक बड़ी किताब बनाई है धूमिल गैलरी के सहयोग से, द एरा ऑफ जगदीश स्वामीनाथन
1: जी,
0: वो अंग्रेजी में है और बड़ी किताब है, मतलब वो तो सचमुच वजन के हिसाब से भी बड़ी है। उस किताब का वजन ही है 3 किलो 900 ग्राम।
1: स्वामी बहुत सामग्री है उसमें,
0: सामग्री तो है ही उसमें। स्वामी के साथ जो मेरा समय बीता, क्या क्या नहीं मिला, अभी एक का साझा कर लेता हूँ।
1: जी बिल्कुल,
0: तो स्वामी से मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया था, हम उनको स्वामी कहते थे, तो मैंने उनसे एक सवाल ये किया था कि कला और प्रकृति का संबंध आप क्या मानते हो, बहुत गहरा सवाल है। उसका जो उन्होंने उत्तर दिया, उसने मुझे कला को परखने और उसके महत्व को समझने में बहुत मदद पहुँचाई।
1: अच्छा,
0: उन्होंने कहा कि एक रूपक गढ़ा उन्होंने, कि प्रकृति कला के आईने के सामने वाली ये खड़ी है, मतलब वो स्त्री है और उसमें उसके सामने कौन है, उसके सामने कलाकृतियां हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो उसको अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा। कितनी गहरी बात उन्होंने कही, कितनी सरल तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बन रहा है चित्र में, मूर्ति शिल्प में, वो प्रकृति से प्रेरित होते हुए भी ठीक वैसा नहीं है।
1: वैसा नहीं है, बिल्कुल।
0: तो उसकी मौलिकता, उसका महत्व, कि अगर ये सृष्टि किसी की रचना है तो फिर जो कलाकार की रचना है उससे भिन्न है।
1: बिल्कुल।
0: और दूसरा सवाल उनसे किया था इतना ही गहरा कि मनुष्य और कला का संबंध आप क्या मानते हो, उसका भी इतना सुंदर जवाब उन्होंने दिया था। संबोधन शब्द पर जवाब टिका, उन्होंने कहा मैं पेड़ पहाड़ चिड़िया बनाता हूँ,

0: पर पेड़ पहाड़ चिड़िया मेरा काम देखने नहीं आएंगे, आएगा मनुष्य ही।
1: क्या बात।
0: अब मनुष्य, अब देखिए फिर उन्होंने ये उसने जोड़ा कि मैं मनुष्य को संबोधित हूँ, वही देखने, ना केवल देखने नहीं आएगा, मैं संबोधित भी उसी को हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि और कौन देखेगा। तो मनुष्य और एक जानी हुई बात को की जो गहराई हो सकती है, उससे उन्होंने मेरा परिचय करा दिया।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जानना है आपसे कि हमारे युवाओं के लिए, अभी हमने बहुत बातें की अपने युवाओं पे, और कई युवा जो हैं ये जानना चाहते हैं, बहुत बड़ा आपका अनुभव रहा है जीवन का, कला का, संस्कृति का, तो जैसे युवा अपनी भाषा में पूछते हैं कि व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट।

0: विथ ऑल दिस विथ हार्ट्स, क्योंकि देखिए ये तो जिया भी है, जाना भी है और समझा भी है कि दुनिया कितनी, दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा, मतलब मनुष्य उसमें रहने वाले, वो क्या करते हैं, जागते हैं सुबह, नाश्ता करते हैं और अपने काम पर जाते हैं, फिर खाते पीते हैं
1: जी,
0: कुछ पहनते हैं अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, इसके आगे क्या है? अगर इस दुराव से बचना है, और दुराव का तो कोई आनंद होता नहीं है
1: बिल्कुल,
0: तो वो सीधी सरल बात है कि फिर वो कहाँ से मिलेगा आपको? वो मिलेगा केवल कलाओं से
1: जी,
0: और इसकी बड़ी अच्छी समझ तो लोक में भी रही है, नहीं तो लोक कलाएं कैसे बनी? एक फिल्म को छोड़कर हर विधा की एक परंपरा है लोक में, आधुनिक काल में जो बनी वो तो बनी ही, वो तो मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है
1: जी,
0: वो तो भीम बैठका के गुफा चित्रों से शुरू हो जाती है
1: जी,
0: तो ये बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है, वो बात समझ में आ गई, गहराई से मन में बैठ गई, वैसा जीवन जिया, वैसा जी रहा हूँ, इससे बड़ा आनंद मेरे लिए क्या हो सकता है?
1: कार्यक्रम के अंत में कोई एक रचना जो आपकी प्रतिनिधि रचना हो, जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें।
0: प्रतिनिधि तो नहीं, पर जो छोटी सी है क्योंकि, और जो याद भी रहती है वो आपको सुना देता हूँ
1: जी।
0: तुम घटाना मत अपना प्रेम, तब भी नहीं जब लोग करने लगे उसका हिसाब, ठगे हुए पाओ अपने को अकेला एक दिन, तब भी नहीं मत घटाना अपना प्रेम, नहीं तो बंद कर देगी बोलना तुमसे चिड़िया, या मुंह फेर लेगा आसमान, नहीं तुम घटाना मत अपना प्रेम।
1: क्या बात,
0: धन्यवाद,
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता से आपने इस बातचीत का समापन किया, और आज के परिदृश्य में ये कविता बहुत ज़्यादा प्रासंगिक मालूम होती है। प्रयाग शुक्ल जी, आप आकाशवाणी स्टूडियोज आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी और इतनी अच्छी बातचीत हमारे श्रोताओं के साथ की, एक तरीके से मार्गदर्शन हमारे युवाओं को, हमारे श्रोताओं को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद, क्योंकि ये इस पर भी निर्भर करता है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है, कौन कर रहा है और किस तरह कर रहा है, तो आपका बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्द सागर। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना वरिष्ठ कवि श्री प्रयाग शुक्ल से शुभम तिवारी की बातचीत। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
6: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
6: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
6: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
6: आपके साथ
4: आकाशवाणी।

लगान है। भीषण गर्मी के चलते जिले में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। वहीं किसान आगामी खरीफ फसल के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। जिले में इस साल 5,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 3,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 1,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास, 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का और शेष रकबे में मूंग, उड़द, मूंगफली आदि फसलें शामिल हैं। धार जिले में भी वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन पूर्व जिले में 10 दिवसीय कृषि रथ का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत तैयार किए गए विशेष कृषि रथ को केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर तथा कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले के सभी 13 विकास खंडों के लिए तैयार किए गए 13 कृषि रथ प्रतिदिन 4 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धार जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य प्रगति पर है। 9 अप्रैल से प्रारंभ हुई खरीदी 28 मई तक चलेगी। जिले में इस साल 250 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से अब तक 229 मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी 25,435 किसानों से की जा चुकी है। जिले में इस साल 44,913 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया था, जिसमें से 30,510 किसानों को स्लॉट बुक हुए हैं। धार जिले में जनगणना 2027 का पहले चरण का कार्य चल रहा है। 31 मई तक चलने वाले पहले चरण में प्रगणकों ने समय से पहले ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। जिले में 7,17,530 मकान होने के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। काम पूरा होने के बाद क्रॉस चेकिंग का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। धार जिले में आमजनों की सुविधा और आधार सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से धार के प्रधान डाकघर सहित विभिन्न डाकघरों में विशेष आधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नागरिकों को नवीन आधार पंजीयन, बायोमेट्रिक अपडेट और मोबाइल लिंकिंग जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा दिए गए फैसले के बाद से सभी ओर उत्साह का माहौल है। भोजशाला के पट खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धार के ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचे। उन्होंने माँ वाग्देवी की पूजा अर्चना और आरती की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि धार में माता सरस्वती लोक विकसित किया जाएगा। राजा भोज शोध संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, धार विधायक नीना वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। धार जिले में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जिले भर में जन सहभागिता से व्यापक स्तर पर जल स्रोतों के पूजन और गंगा कलश यात्रा का आयोजन किया गया। धार जिला इस अभियान में प्रदेश में 6वें स्थान पर रहते हुए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण केवल अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित विषय का संकल्प है। धार जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सामूहिक रूप से शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर स्वच्छता बनाए रखने का भी संकल्प दिलाया गया। धार के प्रसिद्ध शिल्पकार और संगीतज्ञ रघुनाथ राव कृष्णराव फड़के कला अवदान को समर्पित 3 दिवसीय 11वां पद्मश्री फड़के संगीत समारोह गतिनो जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। गायन, वादन और नृत्य की संगीत त्रिवेणी का संगम माने जाने वाले फड़के संगीत समारोह में शास्त्रीय नृत्य, गायन और वादन की नई विधाओं से संगीत प्रेमी परिचित हुए। श्रीलंका नृत्य दल की प्रमुख डॉक्टर अंजलि मिश्रा को इस साल पद्मश्री फड़के कला सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं अंतिम दिन कोलकाता की ख्याल गायिका श्रीमती पियाली चटर्जी ने गीत और भजन प्रस्तुत किए। धार जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।
1: भोपाल से प्रस्तुत है धार से लेके चिट्ठी, आलेख सुनील सजान, वाचन स्वर दीपा सिंह। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में नौतपे की तपिश होने से आमजन

आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे धार जिले की चिट्ठी। आलेख था सुनील सचान का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।

गीत सागर कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को रानू शर्मा का स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और इस गर्मी के मौसम में अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रख रहे होंगे। कोई दफ्तर जाने की तैयारी में होगा तो कोई घर के काम निपटाते हुए सुन रहा होगा अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीत सागर। तो आइए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो हमें मालूम तो है लेकिन हम कई बार उनकी अनदेखी कर जाते हैं, हम उन्हें ना चाहते हुए भी भूल जाते हैं। जी हाँ, आज बात होगी प्रकृति और पर्यावरण की। जी हाँ, इन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए हमें किस तरह से अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव करना चाहिए कि हमारे आसपास जो जल है, जो जीवन है, पानी है, पौधे हैं, पर्यावरण है, वो सुरक्षित रहे और हम उनका आनंद लेते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गीत सागर।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: गीत सागर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, कई बार हम सोचते हैं कि पर्यावरण बचाने के लिए हमें बहुत से बड़े बड़े प्रयास करने हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम अपनी छोटी छोटी आदतों में अगर बदलाव कर लें तो काफ़ी हद तक हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी तरह अगर आप अपनी छोटी छोटी आदतें बदल दें, जैसे घर से अगर आप निकलते हैं तो पॉलिथिन बाजार में लेकर सामान खरीदने से अच्छा है कि घर से आप कपड़े का बैग लेकर जाएं। अगर जिस कमरे में कोई नहीं है वहां पर बिजली की ज़रूरत नहीं है तो स्विच ऑफ करके निकलें। मोबाइल के चार्जर को यूं ही प्लग में ऑन लगा हुआ ना छोड़ें। अगर आप बहता हुआ पानी कहीं देख रहे हैं, नल से टपक रहा है, तो उसे रुककर सबसे पहले बंद करें। कहने में तो ये बातें छोटी सी लग रही हैं, सुनने में भी आपको लग रही होंगी कि हमें तो ये मालूम है, लेकिन श्रोताओं, अगर हम सब लोग मिलकर इन आदतों को अपनी इस तरह से बना लें कि ये इतनी अच्छी आदत हो जाए कि हम किसी भी चीज़ की अनदेखी ना करें, फिर देखिए कैसे ये छोटे छोटे कदम बड़ा परिवर्तन बन जाते हैं। प्रकृति दोस्तों हमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ी सी समझदारी और संवेदनशीलता चाहती है।

श्रोताओं, इन दिनों भीषण गर्मी चल रही है और आप देख रहे हैं कि नौतपा है, सुबह हो या शाम हर समय तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पानी की बर्बादी भी खूब हो रही है। एक तो प्राकृतिक रूप से पानी उड़ रहा है, दूसरा हम अपने घरों में बचत नहीं कर पा रहे हैं पानी की, कूलर चल रहे हैं और भी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पानी बर्बाद हो रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि पानी की बर्बादी रोकी जाए? शुरुआत जैसे कि हमने गाने से पहले बात की थी कि अगर नल बह रहा है तो उसे बंद कर दें, टपकते हुए नल को सुधरवा दें। अगर आपके घर में टंकी ओवरफ्लो हो रही है और उसको अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो ना जाने कितने हज़ारों लीटर पानी आप हफ्ते भर में बर्बाद कर देते हैं। तो करना ये चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम लगाया जाए ताकि पानी बहने ना पाए, उसके पहले ही अलार्म बज जाए कि आपकी टंकी भर चुकी है और आप उस पानी की सप्लाई को बंद कर देंगे, पानी बर्बाद नहीं होगा। जितना पानी आपको पीना है उतना ही ग्लास में लीजिए या फिर आप अपने लिए बॉटल रख लीजिए ताकि उसका इस्तेमाल आप करें, पानी की बर्बादी भी ना हो। कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता है उससे आप आंगन की सफाई कर सकते हैं। जो पानी सब्जियां और खाना बनाने से पहले की तैयारी में लगता है, दाल चावल वगैरह धोने में, उस पानी को आप पौधों में डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आप पानी बचा सकते हैं और पर्यावरण को बचा सकते हैं, सजा सकते हैं।

श्रोताओं, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। मौसमों का मिजाज बदल रहा है और प्राकृतिक आपदाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन अगर हम जागरूक हों तो इन सब चीज़ों पर हम काफ़ी हद तक लगाम लगा सकते हैं। कैसे भाई? ऐसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे रोपें ताकि वो हमें बड़ा होकर ऑक्सीजन दें, और जो तापमान है प्रकृति का, जो धरती का तापमान बढ़ रहा है, वो संतुलित हो सके। बारिश आने वाली है, उसके पहले भी हम तैयारी कर सकते हैं। हमारे आसपास जितने भी नदी, तालाब, पोखर, बावड़ियाँ हैं, उनकी सफाई अभी से कर ली जाए ताकि उसमें जो गाद है, उसमें जो जलकुंभी है, उसमें जो ऐसी चीज़ें हैं जो पानी को रुकने नहीं देती हैं या कम पानी भरने देती हैं, उनको अगर साफ़ कर लिया जाए, तालाबों की गहराई को बढ़ा दिया जाए, तो जब बारिश होगी तो उसमें ज़्यादा जल संचय हो सकेगा। और अगर ऐसा होता है तो समझिए कि हमारे अगले कुछ महीने बहुत आराम से बीतेंगे दोस्तों।

हम बड़े लक्ष्य पा सकते हैं। तो आप भी प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए छोटे छोटे उपाय कीजिए, कोशिश कीजिए। और इसी गीत के साथ आज का गीत सागर कार्यक्रम समेटने की अनुमति दीजिए, स्वीकार कीजिए हमारा स्नेह भरा नमस्कार। आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग माला। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित उमाकांत और पंडित रमाकांत गुंदेचा का युगल ध्रुपद गायन। राग है भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे पंडित रमाकांत और पंडित उमाकांत गुंदेचा का ध्रुपद गायन, राग था भैरव। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाले नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के सुचारू संचालन का आह्वान किया है। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गंगा दशहरा के अवसर पर उज्जैन में आयोजित क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। राज्य महिला आयोग ने लगभग 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर सुनवाई का दौर शुरू हो गया है। पहले दिन कल भोपाल जिले के लगभग 40 प्रकरण बेंच के समक्ष प्रस्तुत किए गए। आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने धार स्थित भोजशाला में भव्य माता सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चौमुखी विकास के साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री प्रताप राव जाधव कल विश्व प्रसिद्ध खजुराहो में आयोजित होने वाले 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रदेश इन दिनों भीषण लू और गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, ग्वालियर सहित 45 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है और आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।

0: कभी बिना किसी वजह के मन का खाली खाली सा हो जाना। आज लगभग हर इंसान किसी न किसी अनकही थकान को अपने भीतर लिए चल रहा है। ऐसे में हर कोई अपने अपने तरीके से सुकून की तलाश करता है। किसी को पूजा और प्रार्थना में शांति मिलती है, कोई संगीत से अपने मन को हल्का कर लेता है, कोई प्रकृति के बीच पहुंचकर शांति महसूस करता है, कभी किसी का साथ सुकून लेकर आता है, तो कभी कभी कुछ देर मौन रहकर भी हम अपने मन को शांत करते हैं। तो आज बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब कभी आप अशांत होते हैं, बेचैन होते हैं, तब आप खुद को कैसे संभालते हैं, आपके मन का सुकून कहाँ बसता है, कौन सी जगह, कौन सा साथ, कौन सी आदत या कौन सी बात आपके भीतर को शांत करती है। तो आज यही बात साझा कीजिए हमसे। हो सकता है कि आपकी बात किसी को मुस्कुराने और संभलने की वजह दे जाए। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए
1: जी। दीदी, मैं ग्राम बिड़ोरा, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: लोकेंद्र जी, क्या हालचाल हैं, क्या चल रहा है इन दिनों?
1: इन दिनों तो दीदी बहुत भीषण गर्मी एमपी में चल रही है, बिल्कुल सभी जगह गर्मी बहुत तेज है। और इसके अलावा जो कि लू चल रही है, उससे बचने के लिए भी सभी श्रोताओं से निवेदन है कि क्योंकि ज्यादा जरूरी काम हो तो ही घर से निकले, और घर से निकले वो भी पानी की बोतल साथ में लेकर, और अपने जो कि तौलिया से अपना माने मुंह बांध कर और सर पे कोई माने कंचा फंचा डाल के बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि सर ढक के और मुंह ढक के जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इस पे जो शरीर पे धूप तेज पड़ रही है तो उसके लिए अपने ही नुकसान के लिए अपने नुकसान हो सकता है। इसके अलावा और हो सके तो अपने जेब में एक प्याज की गठिया भी डाल के जाएं, तो उससे लू लगने की बहुत कम चांस रहते हैं।
0: तो चलिए, लू से बचाव के उपाय तो आपने बताए, अब हम चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि जब कभी जिंदगी में आप बेचैन होते हैं, आपको एक उद्वेलन होता है, तो सुकून की तलाश में आप किस दिशा में जाते हैं?
1: जी दीदी, उसे तो देखो एक बात है कि हर इंसान हर प्रकार का होता है और हर जगह अपना अपना माने जो सुकून मिलता है वहां जाता है, लेकिन सबसे अच्छा सुकून तो मैं एक ही बात कहूंगा जो कि मंदिर में सुकून मिलता है, अपने भगवान के दरबार में बहुत सुकून कहीं नहीं मिलता है। अपने अपने माता पिता नो जो सुकून मिलता है और जो मंदिर में मिलता है, वो इसके सिवा और सुकून कहीं नहीं मिल सकता है।
0: क्या बात है। तो आप जब बहुत परेशान होते हैं तो आप मंदिर चले जाते हैं, ये आप कह रहे हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर जाते हैं जो कि बजरंग बली का मंदिर में, तो वहाँ जो कि भगवान के दरबार पे हमको ही नहीं मैम सभी लोगों को सुकून मिलता है और वहाँ पर इतनी शांति मिलती है।
0: जी, ये हमारी आस्था विश्वास का विषय होता है। दरअसल बात ये होती है कि कोई भी धर्म स्थल जो होता है, वहाँ जब समूह में लोग जाते हैं, इतने सारे लोग जो एकत्रित होते हैं, उनकी सामूहिक जो ऊर्जा है समर्पण की, आस्था की, भक्ति की, प्रेम की, वो काम करती है वहाँ पर, है ना?
1: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल
0: जी। तो हमें बहुत अच्छा लगा लोकेंद्र जी कि जब आप बेचैन होते हैं तो आप ईश्वर की शरण लेते हैं, और आपने कहा कि माता पिता के पास बैठते हैं। बिल्कुल सच है कि जब आप बहुत परेशान होते हैं तो माँ बाप के साये में एक अजीब सा सुकून होता है, वो दो शब्द कह देते हैं, आपके सिर पर हाथ फेर देते हैं, कह देते हैं कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, इतने से ही बात बन जाती है।
1: उनके आशीर्वाद से मैम, बिल्कुल पहला आशीर्वाद तो अपने माता ही पिता है जो भी कुछ है।
0: बिल्कुल,
1: उनके माता पिता के सिवा और कोई नहीं है। उसके अलावा जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ शांति मिलती है, और सभी लोगों से निवेदन भी मेरा यही है, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है और आजकल इतने बच्चे लोगों को जो मोबाइल से इतना नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो कोई बच्चे को इतनी लत पड़ जाती है, कोई गेम खेलता है, कुछ करता है, तो हर वक्त अपने माता पिता को टाइम नहीं देते हैं। जितना होता है कहीं भी जाए, चाहे रिश्तेदारी में चाहे कहीं भी, तो मोबाइल में ज्यादा लगे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं,
0: और बच्चों को इसका असर ये होता है,
1: नुकसान, अपनी आंखें भी कमजोर होती हैं, और अपने माता पिता जो बैठे उनको भी टाइम नहीं दे पाते, उनसे भी कुछ बातें करो, उनके पास बैठो, उनसे हालचाल पूछो, उनकी सेवा करो, तो भी अपन को आशीर्वाद देते हैं। और अपने माता पिता है, अपने को ही करना है तो इसलिए कहता हूँ कि मोबाइल में कम से कम टाइम दें और अपने अपने बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उनके पास बैठें, उनकी बातें सुनें।
0: तो लोकेंद्र जी, आपने एक अच्छी बात कही कि स्क्रीन टाइम चूंकि बच्चों का बढ़ रहा है तो इससे भी एक एंजाइटी होती है बच्चों में, एक बेचैनी रहती है, उन्हें लगता है कि एक घबराहट है ना?
1: बिल्कुल,
0: इससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। तो आज आपने इस विषय पर एक अच्छी बात रखी, हमें बहुत अच्छा लगा आपने विचार रखे। आपका

नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, आज का समय एक तेज रफ्तार समय है, दौड़ती भागती हुई जिंदगी है। ये अनगिनत उलझनों का समय है। चेहरों पर मुस्काने हैं, लेकिन मन के भीतर कहीं एक बेचैनी भी है। हर कोई कुछ न कुछ पाने की दौड़ में है, और इसी दौड़ में शायद मन का सुकून कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है। कभी काम की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य की चिंता, तो

0: हेलो,
1: हेलो जी।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: हाँ, मैं गांव रणथंभौर जिला शाजापुर से हसन खां मंसूरी बोल रहा हूँ।
0: हसन खां मंसूरी जी, कितने दिनों के बाद फोन किया है?
1: पहली बार फोन किया मैम हमने। और
0: अरे
1: मैं
0: वाह।
1: रेडियो लेकर बहुत साथ में घूमता रहता हूँ और मेरे को रेडियो से मेरा बहुत प्रेम है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आज की जो जिंदगी है मैम, माल के हवस में, वो हवस में जो आदमी जो इधर उधर भटक रहा है, जो भटकने के बजाय वो उसकी सांसारिक जीवन का जो अंत है वो छोटा सी चीज लेके जाएगा। वो इतनी बड़ी दुनिया को, जिंदगी को जीकर आया है इंसान जिंदगी में जीने के लिए, तो उसका मकसद ये है कि हम अपने मालिक की बंदगी के साथ उस पे जो मिला है उस पे हमें भरोसा करके उस पे ही हमें जीना है।
0: तो ये तो हमें क्या करना चाहिए, ये बात हुई। तमाम बातें जानने के बाद भी मन कभी कभी बेचैन होता है हसन जी, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: हाँ।
0: जब ये बेचैनी होती है तो आप कौन सा उपाय करते हैं कि आप शांत हों?
1: अब ये देखो मैडम, ये तो है कि जो सरलता का जो मन है, जो भाव है, जो हमारे जो इसके अंदर है, जो है उसी पर संतोष करना पड़ेगा। बस मेरी तो एक ये राय है मैम।
0: तो आप संतोष तो करते हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि आप बहुत बेचैन हैं, आपको दुख हो
1: जी
0: रहा है,
1: जी जी
0: डिप्रेशन हो
1: जी
0: रहा है। ऐसी स्थिति में भौतिक रूप से आप क्या करते हैं? कुछ लोग किताबें पढ़ने लगते हैं, कुछ लोग बच्चों के बीच चले जाते हैं, कुछ लोग
1: हाँ,
0: प्रकृति
1: तो
0: के
1: हम
0: बीच
1: तो
0: चले
1: देखो
0: जाते
1: किसान,
0: हैं।
1: खेती किसानी वाले हैं
0: जी
1: और मैं आप रेडियो सुनता हूँ। जो मानसिक तनाव का जो भाव प्रभावित होता है, तो मैं एक विविध भारती, चाहे वो भोपाल का हो या इंदौर का हो या कोई बम्बई का हो, उसको सुनकर हम संतुष्टता पाते हैं।
0: वाह, क्या बात है। तो आपका कहना है कि जब कभी आप जिंदगी में बेचैन होते हैं
1: जी
0: तो
1: जी
0: विविध भारती सुनते हैं जिससे आपका तनाव कम होता है। तो हमें बहुत अच्छा
1: बिल्कुल
0: लगा हसन खां मंसूरी जी कि आकाशवाणी यानी रेडियो आपके लिए एक समाधान प्रस्तुत करता है, इलाज की तरह आपके जीवन में प्रवेश करता है। इसी तरह
1: बिल्कुल
0: से
1: मैडम,
0: रेडियो से प्रेम बना कर रखिए। बहुत शुक्रिया आपने हमें फ़ोन किया।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद महोदया। मैं ग्राम तरसवा जिला मुरैना से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: हरविलास सिंह तोमर जी कैसे हैं?
1: आपकी दुआ ईश्वर कृपा से बहुत अच्छी तरह से हैं।
0: आज हम बात कर रहे हैं कि जब कभी आप जिंदगी में बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, तो सुकून की तलाश में किस ओर चलते हैं आप?
1: जी, जब जब जीवन के क्षण विघटित हो जाते हैं तब तब मैं रेडियो को ओर चलता हूँ। चेतना की किरण तब रेडियो बनता है मेरा।
0: तो आकाशवाणी समाधान प्रस्तुत करता है।
1: बिल्कुल, मनोरंजन भी और सटीक सूचनाएं भी देता है और शिक्षाप्रद बातें भी देता है आकाशवाणी
0: जी। लेकिन इसके अलावा रेडियो तो आपको सहारा देता ही है, संबल है आपका।
1: इसके अलावा मैं सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहता हूँ।
0: किस तरह के
1: सामाजिक कार्य? कोई है जैसे मैं सुबह उठ के 2 घंटे झाड़ू लगाता हूँ, गांव गली की सफाई, मंदिरों की सफाई। 14 वर्ष का नियम हो गया मेरा, ये प्रतिदिन 2 घंटे करता हूँ।
0: क्या बात है। तो मुझे लगता है कि जब हम बहुत व्यस्त रहते हैं तो बहुत बेचैन होने का वक्त भी नहीं होता।
1: नहीं
0: जी जी। तो हरविलास सिंह तोमर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फोन किया। बहुत आभार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, अपना परिचय दें।
1: भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासोदा जिला विदिशा।
0: भागचंद साहू जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आज के
1: बिल्कुल
0: विषय
1: जी,
0: पर?
1: आज के विषय पे कहेंगे दीदी, जैसे आप बेचैनी होती है, कोई टेंशन में होते हैं, तो हम तो धार्मिक स्थल पे भी जाते हैं, वहाँ पे अपना मन बहला लेते हैं, और संतुष्टि रखना सहनशीलता जरूरी है।
0: तो आप किसी धार्मिक स्थल का रुख करते हैं जब बेचैन होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी।
0: जी, इसके अलावा और कोई उपाय?
1: नहीं दीदी, और हम तो ऐसे ही हैं कि देखो, सहनशीलता जरूरी है। अगर कोई टेंशन में दिमाग है तो उसके इलाज सहनशीलता रखें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
0: बहुत से लोग होते हैं जो बच्चों के साथ बातचीत करने लगते हैं, इससे भी कुछ मन हल्का होता है ना? कई बार
1: हाँ,
0: बुजुर्गों के
1: बिल्कुल
0: पास
1: दीदी,
0: मन
1: बिल्कुल
0: हल्का होता है।
1: बिल्कुल
0: जी, तो चलिए भागचंद साहू जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने आज के विषय पर अपना विचार
1: बिल्कुल
0: रखा।
1: दीदी, कैसी हैं आप?
0: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: आप तो, हम तो दीदी बहुत बढ़िया है। और दीदी, हम पानी पूरी सेंटर का ठेला लगाते हैं
0: तो भागचंद
1: हम
0: साहू जी, ऐसे ही स्वाद बिखेरते रहिए। चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज के विषय पर आपने विचार रखा। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बिल्कुल
0: आपने
1: ठीक
0: फोन किया। सुनिए ये
1: है
0: प्यारा सा
1: दीदी,
0: गीत।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताएं।
1: जी, हम जिला मिर्जापुर गांव नदौली से शुभाकांत बोल रहे हैं।
0: शुभाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी जी, आप कैसे हैं?
0: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: जी जी, हम भी बहुत अच्छे हैं। अभी धूप का आनंद ले रहे हैं, रेडियो भी सुन रहे हैं हम
0: धूप का आनंद ले रहे हैं, बहुत तेज गर्मी है ना। अच्छा शुभाकांत जी, हम जानना चाहते हैं कि आज का जो हमारा विषय है उस पर आप क्या कहेंगे?
1: हमारा यही कहना है कि हम रेडियो बहुत, मतलब जब हमारा जिंदगी जब हो जाता है तो हम यही रेडियो सुनते हैं, संगी साथी साथ खेलते हैं, बातचीत करते हैं, घूमते टहलते हैं, मन हमारा लगता है बहुत ज्यादा।
0: अच्छा, तो जब कभी जिंदगी में आप बेचैन होते हैं तो सबसे पहले आप रेडियो के पास जाते हैं, ये आपका कहना है, और खेलते हैं।
1: म्यूजिक सुन लेते हैं तो दिमाग हमारा फ्रेश हो जाता है।
0: अच्छा, तो संगीत एक जादू सा असर करता है। बात सही है कि संगीत को तो थेरेपी की तरह भी आजकल हम प्रयोग में लाते हैं ना।
1: जी, हमारा जिंदगी यही मिलाते, अगर सुकून नहीं उसे होता है तो हम लोग रेडियो, उसके बाद हम लोग संगी साथी जाते हैं, बहुत खेलते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं, हम लोग घूमते
0: खेलते हैं। कैसे खेल खेलते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं?
1: हम लोग चूहा छुपाई खेलते हैं और चोर सिपाही खेलते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। खेल तो एक स्वस्थ मनोरंजन का माध्यम है ही, तो आप खेल पाते हैं और घर से बाहर निकलकर खेलते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है।
1: खेलने से हमारे शरीर को तो क्षमता बढ़ती है ना।
0: खेलों से आप मानसिक रूप से भी सशक्त होते हैं और शारीरिक रूप से भी सशक्त होते हैं।
1: जी जी, हमारा भी श्रोताओं से यही अनुरोध है कि आप घूमे तो खेले, अपने जिंदगी भर से बहुत अच्छे आनंद ले।
0: जी, और आपने कहा कि हम बातचीत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप परेशान हो, आपका मन बेचैन हो, तो अपनी बात किसी से जब हम कह देते हैं तो मन हल्का हो जाता है ना, और उसका समाधान।

0: भी मिलता है।
1: इतनी बात कर दिया जाए तो बहुत हल्का हो जाता है कि चलो इससे भी कह दिया भाई, मन कुछ सहारा होगा हमारा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: विचार समाचार बैठ के दिखाएगा तो भला है वो बैठ
0: जी। तो परेशानी के बीच संवाद की स्थिति बनी रहे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, तभी हम सुकून की तरफ चलते हैं। तो शुभाकांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो उपाय बताए हैं मुझे लगता है कि बाकी के जो हमारे श्रोता हैं उन्हें भी इस पर अमल करना चाहिए, है ना। खेल की आपने जो बात की है, खेलों से बहुत दूर होते जा रहे हैं हम आजकल, तो खेलों की तरफ जब हम लौटते हैं तो यूं ही परेशानी कम होने लगती है। तो शुभाकांत जी, आज आपने हमसे बातचीत की, अपने विचार रखे, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक

0: हेलो
1: जी नमस्ते दीदी, मैं जगत सिंह चड़ार ग्राम पिपलिया वराई तहसील बेगमगंज जिला रायसेन से बोल रहा है। दीदी
0: नमस्कार। जगत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं
1: जी बढ़िया है दीदी जी।
0: आज की जो
1: पहले तो हमें आपसे बात करके बहुत खुशी होती है।
0: हाँ, हमें भी अपने श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लगता है। आज के विषय पर क्या कहेंगे?
1: जी मैडम जी, आज क्या है कि जो कोई सी चीज के टेंशन हो जाए तो अपन मनोरंजन में काट देते हैं समय।
0: अच्छा, जब आप बेचैन होते हैं तो मनोरंजन में समय काटते हैं।
1: जी अपना
0: और
1: रेडियो चालू करा तो उसमें अपन ने जो अपना दिमाग खराब कछु में भी हो गया तो
0: जी,
1: अपन रेडियो से लगान है अपनी ज्यादा, तो
0: हाँ जी
1: उससे अपन मनोरंजन से अपन सही हो जाते अपना दिमाग।
0: जी तो गीत संगीत सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है और धीरे धीरे मन शांत होता है।
1: शांत हो जाता है क्योंकि मनोरंजन से भी एक रेडियो भी बहुत बड़ी चीज है। अपना दोस्त बना के चलो तो बहुत बड़ी चीज है रेडियो भी,
0: बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो एक अच्छा दोस्त है, सच्चा दोस्त है।
1: क्योंकि रेडियो से बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है, अच्छी बात मिलती है और देश विदेश की खबर मिलती है और आप सब जगह की ऐसी बातें मिलती हैं कि उससे अपन को दिमाग में समझ में जज्जी कर। जैसे कोई दुर्घटना होती है गाड़ी वाहन से तो वो भी अपन को समझ के चलना चाहिए कि बहुत सी चीजें हैं।
0: बहुत सी बातें आपको रेडियो के माध्यम से मालूम होती हैं।
1: जी
0: तो हालांकि हमारे बहुत से श्रोताओं ने कहा कि हम रेडियो सुनते हैं जब मन का सुकून तलाशते हैं, तो

0: के अलावा और क्या उपाय करते हैं आप?
1: जी अब उपाय तो यही है अपनों, तो क्योंकि अपन तो अब जैन दुकान है तो इसमें समय पास होता है
0: तो दुकान
1: किराने
0: में
1: के
0: बैठ
1: बाद।
0: जाते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं और रेडियो साथ में जब आपसे बातें करने लगता है तो आपका मन शांत होता है। तो जगत सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रेडियो से जो आपकी ये मित्रता है ये बनी रहे, ये हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फ़ोन किया।
1: जी नमस्ते दीदी साहब।
0: नमस्ते।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताएं।
1: नमस्कार मैम, मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ मैम, बेमेतरा जिला वार्ड क्रमांक 20 छत्तीसगढ़।
0: सुरेश कुमार सारथी जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैम, अभी तो भीषण गर्मी है, नौतपा भी लग चुका है।
0: जी जी जी जी, तो भीषण गर्मी के बीच हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जब कभी ज़िंदगी में आप बहुत बेचैन होते हैं, उद्वेलित होते हैं, तो अपने सुकून की तलाश कहाँ करते हैं, क्या उपाय करते हैं?
1: सुकून के उपाय तो दो तीन उपाय करते हैं मैम, जैसे कि गीत संगीत सुनना है, रेडियो सुनना है, अच्छे अच्छे भजन सुनना है, पुस्तक पढ़ना है, पेपर पढ़ना है मैम।
0: वाह, किताबें पढ़ते हैं आप, किस तरह की?
1: सब संग्रहालय में जाके अनेक प्रकार के किताब पढ़ते हैं मैम।
0: अच्छा,
1: कहानी वगैरह है,
0: हाँ, बहुत अच्छी बात
1: है, या मौखिक सामान्य ज्ञान है।
0: बहुत अच्छी बात है सुरेश जी, आज के समय में आप जाते हैं किसी लाइब्रेरी में और पुस्तकालय में जाते हैं और पढ़ते हैं, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा है।
1: हाँ। हमारे घर के पास ही लाइब्रेरी है मैम।
0: जी जी जी जी, बहुत अच्छी बात
1: और
0: है।
1: साथ में पेड़ पौधा लगाते हैं मैम, अभी तो बरसात आने वाली है तो बिल्कुल हम दो चार पेड़ उगाएंगे, उसका देखभाल करेंगे मैम। भागदौड़ की जिंदगी में सुकून तो कहीं ना कहीं हमको प्राप्त करना होता है।
0: बिल्कुल, तो सुरेश जी बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि जब आप परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, तो आप जो उपाय करते हैं वो ये है कि पहले तो गीत संगीत सुनते हैं, है ना?
1: बिल्कुल, रेडियो तो हमारा एक

0: संगीत के बहुत बड़ा मायने रखता है मैम। रेडियो हम डेली सुनते हैं मैम,
1: हाँ बहुत अच्छी
0: हम
1: बात है।
0: दुखी रहे चाहे सुखी रहे, रेडियो सुनना तो हमारा
1: हाँ
0: एक हिस्सा है हमारे जीवन का।
1: जी
0: हम 40 साल से रेडियो सुन रहे हैं मैम।
1: जी जी तो रेडियो आपके दुख सुख का साथी है
0: दुख सुख का
1: ना।
0: साथी है मैम,
1: जी
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम। और सब बात एक बात मैम, हमारे जीवन में चिट्ठी पत्र लिखना बहुत एक अहम भूमिका है मैम।
1: अच्छा
0: जितने भी आकाशवाणी केंद्र में है, आपके भोपाल में भी हमारे पत्र जाते रहते हैं। हम अनेकों जगह के आकाशवाणी में फरमाइशी पत्र भेजते हैं मैम।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी आदत
0: जबलपुर
1: है
0: है,
1: ये।
0: भोपाल है,
1: जी
0: अपना श्रीनगर है, छिंदवाड़ा है, रोहतक हरियाणा है, दिल्ली है, और हमारे छत्तीसगढ़ के आसपास के जितने भी आकाशवाणी केंद्र है, रायपुर, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर।
1: जी, तो सभी जगह आप चिट्ठियाँ लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए चिट्ठियों का जो संसार है वो अब लगभग समाप्त सा है। हमारे जो आकाशवाणी के श्रोता हैं वही इस तरह की चिट्ठियाँ लिख रहे हैं और इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। तो आप चिट्ठियाँ लिखते हैं, रेडियो सुनते हैं, और बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आप पुस्तकालय जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं। किताबें हमारी सच्ची मित्र होती हैं, है ना? तो आप किताबों का साथ
0: पुस्तक
1: करते हैं,
0: बुक
1: ये
0: का
1: भी बहुत
0: साथी
1: अच्छी
0: होता है
1: बात है।
0: मैम।
1: जी तो सुरेश कुमार जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया। आप तक भेजते
0: बहुत
1: हैं एक
0: बहुत
1: प्यारा सा
0: धन्यवाद
1: गीत।
0: मैम, हमारे सारथी परिवार की ओर से आपके केंद्र के पूरा यूनिट को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: रमेश साहब बोल रहा हूँ जी।
0: रमेश शाह जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार जिले से का रहने वाला हूँ
0: बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा,
1: जी।
0: तो हम जानना चाहते हैं रमेश जी कि जब कभी ज़िंदगी में आप परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, तो ख़ुद को कैसे संभालते हैं? सुकून की तलाश में क्या करते हैं आप?
1: जी तो अपने तो घर में मिल माल के रहना चाहिए जी,
0: मिलके तो
1: ऐसे ही है
0: रहना
1: ना।
0: चाहिए, लेकिन होता यह है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं या ज़िंदगी में ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मन बहुत बेचैन होता है, दुखी हो जाता है। तो हम जानना चाहते हैं कि जब कभी आपके मन की शांति छिन जाती है, तो मन की शांति के लिए, मन के सुकून के लिए आप क्या उपाय अपनाते हैं?
1: बस जी अपना प्रेम से ही रहना चाहिए अच्छा से जी।
0: बच्चों के साथ खेलने से भी कई बार अच्छा लगता है,
1: हाँ जी, तो ये तो बात सही है।
0: तो आप बच्चों का साथ करते हैं?
1: हाँ जी, बच्चे के साथ भी बैठे हुए हैं जी।
0: तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बीतता है। जब कभी आप बहुत तनाव में हो, तो उनकी जो निश्चलता है, उनकी जो मुस्कान है, सारा तनाव दूर कर देती है ना?
1: जी।
0: तो चलिए रमेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से बने रहिए आकाशवाणी के साथ। बहुत शुक्रिया।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: कौन बोल रही हैं?
1: जी मैं सरिता शर्मा गुना से बात कर रही हूँ, मैं शिक्षक हूँ।
0: अच्छा आप पढ़ाती हैं? किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं?
1: मैं 9th से 12th तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ।
0: क्या बात है, तो बच्चों में संस्कार डालने का आप काम करती हैं, बहुत अच्छी बात है।
1: जी जी
0: तो हम ये जानना चाहते हैं सरिता जी कि आज की जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, भागती दौड़ती ज़िंदगी है, इसमें बहुत सी चिंताओं में हम उलझ जाते हैं और बहुत बार मन बहुत बेचैन हो जाता है ना। सुकून की तलाश हर इंसान को है, तो मन की शांति के लिए, सुकून के लिए आप कौन से उपाय अपनाती हैं जब आप बेचैन होती हैं?
1: मन की शांति के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के भजन सुनती हूँ, कथा सुनती हूँ, जिससे कि मन की शांति मिले। और भगवान की भक्ति में संगीत सुनते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है, या कोई भगवान का जाप मन में करते रहते हैं तो उससे भी शांति मिलती है।
0: क्या बात है, बिल्कुल। नाम जप जब हम करते हैं तो भीतर हमारा जो है वो ठहराव एक पैदा होता है ना, स्थिरता आने लगती है। इसके अलावा और क्या क्या उपाय करती हैं?
1: अधिकतर तो मैं यही उपाय करती हूँ, भगवान के मंदिर में बैठ जाती हूँ, थोड़ा ध्यान लगाना और ये संगीत सुनना। कभी कभी फिल्मी संगीत में भी कुछ ऐसे गीत होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनको भी सुनते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है।
0: बिल्कुल, फिल्मी गीतों में कई बार
1: सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, मैं रेडियो अधिकतर सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: अब कार्यक्रम का तो ऐसा नहीं है, मेरा फिक्स नहीं है। मैं जब भी ऑन करती हूँ तो कोई ना कोई, जैसे आकाशवाणी भोपाल है और अपना FM है, गुना का है, तो ये मैं कुछ कार्यक्रम इसमें सुनती रहती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है सरिता जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे कि जब कभी आप बेचैन होती हैं तो भक्ति संगीत सुनती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप नाम जप करती हैं। सच है कि जब हम बेचैन होते हैं और मौन हो जाते हैं, मौन होकर भीतर ही भीतर जब नाम स्मरण करते हैं तो मन बहुत स्थिर होता है और हमें बहुत सुकून मिलता है। और इसके अलावा गीत संगीत की आपने बात की, सच है कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समाधान की तरह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, है ना। ऐसे बोल होते हैं कि आपकी बहुत सी परेशानी कई बार दूर हो जाती है उन बोलों को सुनकर। तो सरिता जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इसी तरह जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।

तो श्रोताओं, आज अपने मन के सुकून के जो रास्ते आपने हमारे साथ बांटे, वो सिर्फ बातें नहीं थीं, बल्कि जिंदगी को थोड़ा सहज, थोड़ा और सुंदर बनाने वाले एहसास थे। इसी तरह कोशिश करके अपनी जिंदगी में सुकून के रास्ते तलाशते रहिए, क्योंकि जिंदगी है तो संघर्ष भी है, थकान भी है, चिंता

लेकिन इन सब के बीच अपने लिए कुछ पल सुकून की तलाशना बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है कि भागती हुई इस जिंदगी के बीच आप अपने लिए कुछ पल सुकून के जरूर बचाकर रखेंगे। इसी संदेश के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है इस घंटे की खास खबरों का।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार दोनों सरकार और पार्टी गठबंधन से संबंधित मुद्दों के अलावा राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने धार जिला स्थित भोजशाला में भव्य माता सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम उज्जैन में आयोजित शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। राज्य महिला आयोग में लगभग 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर जन सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दिन तक 40 प्रकरण बेंच के समक्ष प्रस्तुत किए गए। आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव कल विश्व प्रसिद्ध खजुराहो में आयोजित होने वाले 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप फुटबॉल के ग्रुप बी मुकाबले में भारत ने कल मालदीव को 11-0 से हराया। 5 बार की चैंपियन भारत का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने चुना है लता मंगेशकर की आवाज़, इंदिवर का गीत, संगीत है कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है सुहागरात। पसंद आप सब श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, विश्वनाथ साहू, गुलाब दास मानिकपुरी और भागवत वर्मा, इन्होंने दतरेंगी से ये पत्र लिखा है हमें।

पतंगा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़। राजेंद्र किशन ने गीत लिखा है, संगीत है सी रामचंद का। पसंद आप सब श्रोताओं की। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, एलपी, रोहित, लल्लू राम, पूरन, रोहित और छोटू के साथ डुंडुन और समस्त परिवार इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया है किशोरी बोस, प्रियंका, बसंत, सरोज, अजीत, मोनिका, हिमांशी और नितिन ने। इनका साथ दिया है आशीष और ममता ने भोपाल से। तो आइए सुनते हैं पतंगा फिल्म का ये नगमा।

और अब आपको सुनवा रहे हैं प्रेम पर्वत फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, जानिसार अख्तर के बोल हैं, संगीत जयदेव का है। पसंद आप सब श्रोताओं की, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्य इस गीत को सुनना चाहते हैं।

ये हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, किरण, गीतू, निहारिका, वंश और हार्दिक ये इस गीत को पसंद कर रहे हैं। इस गीत को पसंद किया है राजेश नेमा, संगीता, भावना, प्राची और इनके समस्त परिवार ने। ये पत्र हमें मिला है सिंहपुर बड़ा से। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब आपको सुनवा रहे हैं बेमिसाल फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर, किशोर कुमार, सुरेश वाडकर और साथियों ने। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं। रूपाली मालवी, अर्चित मालवी, सुमन मालवी का पत्र हमें मिला है होशंगाबाद रोड भोपाल से। तो आइए सुनते हैं बेमिसाल फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं जंगली फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत शंकर जयकिशन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय इस गीत को सुनना चाहते हैं। कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित के साथ हैप्पी राय ने ये गीत सुनने की ख्वाहिश जताई है।

0: इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों बाद होगा।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
4: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज़ है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद, सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला पंचतंत्र, आज सुनिए इसकी 13वीं कड़ी।

0: श्रोतागण को मेरा प्रणाम। पिछली कड़ी में आपने पंचतंत्र का पांचवां प्रकरण अपरीक्षित कारक सुनना प्रारंभ किया, जिसमें चार युवक धन की लालसा में हिमालय की ओर गए। एक को तांबे की खान मिली, दूसरे को चांदी और तीसरे को सोने की खान। चौथे ने सोचा आगे अवश्य ही रत्नों की खान मिलेगी। उस लालच में वो आगे बढ़ गया और तीक्ष्ण धार वाले चक्र को सिर पर धारण कर रक्त रंजित हो गया। स्वर्ण प्राप्त करने वाला मित्र उसे खोजता हुआ वहां पहुंचा और उसकी ये दशा देखकर उसको मूर्खता के लिए कोसा। उसने चक्रधर को मूर्ख युवकों की कथा सुनाई।
1: मित्र चक्रधर सुनो।
2: कहो मित्र।
1: किसी नगर में चार युवक रहते थे। उनकी आपस में बड़ी मित्रता थी।
2: अच्छा।
1: बाल्यकाल में वे विद्या अध्ययन के लिए कान्य कुब्ज देश चले गए। एकाग्र चित्त होकर 12 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद चारों मित्र उद्भट विद्वान हो गए। एक दिन चारों ने परामर्श किया।
2: क्या?
3: मित्रों, आज हमें गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते हुए 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं।
4: हाँ, हम सभी विद्याओं में निपुण हो चुके हैं। गुरु की आज्ञा लेकर अब हमें चलना चाहिए।
5: आप सच ही कह रहे हैं, परंतु हमें अभी घर नहीं जाना चाहिए। अभी तो हम अन्य देशों में पर्यटन करके सभी प्रकार का आनंद लें। इन 12 वर्षों में हमने विद्या ग्रहण के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं किया।
6: ठीक है, यदि ऐसा ही आप सबका विचार है तो मैं भी सहमत हूँ, परंतु चलने से पहले हमें गुरुदेव की आज्ञा लेनी चाहिए।
7: अवश्य अवश्य अवश्य।

0: गुरुदेव से आज्ञा लेकर चारों पूर्व दिशा की ओर चल पड़े।
1: अच्छा,
0: कुछ दूर जाने के पश्चात मार्ग को दो तरफ जाते हुए देखा। अब किस मार्ग पर चलना चाहिए ये निर्णय करने के लिए वे एक स्थान पर बैठ गए। अब एक युवक ने ग्रंथ निकाला और देखना आरंभ किया।
1: अच्छा,
2: किस मार्ग पर चला जाए? यहां तो दो रास्ते हैं।
3: वो देखो मित्र, किसी वणिक की शव यात्रा जा रही है।
4: ये देखो,
3: क्या
4: ग्रंथ में लिखा है, महाजन जिस मार्ग से जाए अन्य व्यक्तियों को भी उसी मार्ग से चलना चाहिए।
3: अच्छा,
0: चारों मित्र शव यात्रा में शामिल होकर उसी मार्ग से चल दिए। अब देखो चक्रधर, महाजन का अर्थ महान लोगों से था, न कि महाजन यानी वणिक। पर उन युवकों को समझ आए तब ना। उधर श्मशान पहुंचकर उन लोगों ने एक गधे को देखा। तुरंत ग्रंथ निकाला गया।
1: अच्छा,
5: मित्रों तनिक ध्यान दें। इसमें लिखा है, उत्सव के समय दुख में दुर्भिक्ष पड़ने पर, शत्रुओं से घिर जाने पर, राजसभा तथा शमशान में जो मिले वह स्वजन है।
3: मित्रों, अर्थात ये गर्दभ हमारा स्वजन है, तो इसे तो हमें गले लगाना चाहिए।

0: आओ मित्रों गले लगाओ इसे। बड़ा अच्छा लग रहा है।
1: भद्रगण, हम अपने स्वजन को लेकर यहाँ व्यस्त हैं, परंतु दक्षिण दिशा से तीव्र गति से आने वाला वह कौन है जरा देखो तो।
2: मित्र, ये तो ऊंट है। ये तो अत्यंत तेज गति से चलता है।
0: मित्रों चिंता ना करो, चिंता ना करो। हमने ग्रंथ खोल लिया है।
2: अच्छा,
0: अब देखो इसमें लिखा है धर्म की गति तीव्र होती है। हो ना हो ये अवश्य ही धर्म है।
2: धर्म है।
3: क्या ये धर्म है?
0: हाँ।
3: तब तो हमें अपने स्वजनों को धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए।
1: बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है। आइए मित्रों इस गर्दभ को ऊंट के गले में बांध देते हैं।
0: चलो मित्रों,
1: चलो चलो चलो।

0: ये सूचना तब तक किसी ने गधे के मालिक को दे दी थी। लाठी लेकर उसको आता देख चारों युवक भाग खड़े हुए।
1: अरे भागो, देखो वो लाठी लेकर आ
2: गया, मालिक आ गया,
1: मालिक भागो,
2: भागो,
1: भागो,
2: भागो, जान बचा ली, भागो,
1: बाप रे।
0: भागते भागते वे एक नदी के तट पर पहुंचे।
3: अच्छा, फिर क्या हुआ?
4: थोड़ा यहाँ नदी के तट पे विश्राम कर लेते हैं।
5: विश्राम करते हैं।
6: अरे वाह, कितनी स्वच्छ नदी है। चलो इसमें हम स्नान कर ले।
5: चलो।
4: परंतु मित्र ठहरो, इस नदी की गहराई का तो हमें अनुमान ही नहीं है। कहीं कुछ हो गया तो
5: भी ठीक है,
7: बिना जाने स्नान करना ठीक नहीं है।
6: परंतु मित्र, आपने कदाचित देखा ही नहीं, वो देखिए एक पलाश का पत्र बह रहा है, डूबने पर पत्ता हमें पार उतार देगा, ऐसा ग्रंथ में लिखा है।
5: अच्छा?
6: हाँ, अब मैं तो चला स्नान करने।

0: बचाओ।
1: अरे अरे मित्र, ये तो डूब रहा है।
2: अरे
1: अरे, अरे पलाश का पत्र तो पता नहीं कहाँ डूब गया।
2: अरे
1: ये तो डूब रहा है, बचाओ भाई, मित्र से बचाओ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता।
2: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी आया।
1: कोई तो बचाओ उसे।
2: अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ। अरे कुछ तो प्रयत्न करो भाई। अरे अरे, ये तो तुम्हारी चोटी हाथ में आ गई, अब क्या करूं? अब
3: चिंता ना करो, चिंता ना करो, मैंने ग्रंथ खोल लिया है।
1: पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो।
3: इसमें लिखा है, सर्वनाश होने की स्थिति में चतुर जन विनष्ट होने वाली वस्तु का आधा भाग छोड़ देते हैं।
1: अच्छा।
3: और आधे से ही संतुष्टि कर लेते हैं, क्योंकि सर्वनाश दुसह होता है।
2: ऐसा लिखा है?
3: हाँ हाँ, यही लिखा है।
2: तो मैं इसका मस्तक काट लेता हूँ, आधे शरीर का मुंह छोड़ देता हूँ।
0: नहीं, नहीं, नहीं।

कुछ दूर जाकर शेष तीनों मित्र एक गांव में पहुंचे। ग्रामवासियों ने उन्हें अलग अलग घरों में निमंत्रित किया। पहले ने भोजन में घी चीनी से बनी सेवई को दीर्घ सूत्र विनाशकारी कहकर छोड़ दिया। दूसरे ने रोटी को अधिक विस्तृत वस्तु चिरस्थाई नहीं होती ये कहकर, और तीसरे ने वृत्ताकार बड़े को सदोष और आपत्ति कारक कहकर छोड़ दिया। तीनों ही भूखे रह गए। लोगों के उपहास के पात्र भी बने।

0: हे चक्रधर, तुम लालच में आकर मूर्खता कर बैठे, इस कारण तुम्हारी ऐसी दशा हो गई।
1: नहीं भाई स्वर्ण सिद्ध, तुम्हारा कहना निरर्थक है, क्योंकि भाग्य की प्रतिकूलता से बुद्धिमान व्यक्ति भी कष्ट उठाते हैं, और भाग्य के साथ देने से एक मूर्ख व्यक्ति भी आनंद उठाता है। भाग्य द्वारा सुरक्षित वस्तु बिना किसी सुरक्षा के भी बची रहती है। हिंसक पशुओं के मध्य वन में अनाथ छोड़ा हुआ व्यक्ति भी जीवित रह जाता है, और प्रयत्न पूर्वक घर में सुरक्षित व्यक्ति भी जीवित नहीं रह पाता। स्वर्ण सिद्ध,
0: सुनो चक्रधर, सच्चे मित्रों की बात को अनसुनी करने वाला पछताता है। अर्थात अगर व्यक्ति स्वयं बुद्धिहीन है और मित्र का कहना भी नहीं मानता, तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करता है। अतएव मैं कहता हूं, जिसकी स्वयं बुद्धि नहीं होती, उसे मित्रों की सलाह पर विचार अवश्य करना चाहिए। वैसे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सभी लोग लोभ के वशीभूत होकर ऐसा करते हैं। मित्र, अब मुझे जाने की अनुमति दे दो, जिससे मैं घर जा सकूं।
1: भद्र, विपत्ति काल में सहयोग करने के लिए ही धन एवं मित्र का संचय किया जाता है, और तुम मुझे इस परिस्थिति में छोड़कर चले जाओगे। मित्र मित्र को छोड़कर निष्ठुरता पूर्वक जाने वाला नरक का भागी होता है, नरक का भागी।
0: हाँ चक्रधर, तुम ठीक कहते हो। यदि इस स्थान पर रहना संभव होता तो मैं अवश्य रह जाता, परंतु ये स्थान दूसरे के रहने योग्य नहीं है, और इस चक्र से छुड़ाने का सामर्थ्य भी किसी में नहीं है, और तुम्हारी अवस्था भी नहीं देखी जाती। कहीं मैं ही विपत्ति में न पड़ जाऊं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं बाबा, मैं तो चलता हूं।
1: नहीं, स्वर्ण सिद्ध, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। स्वर्ण सिद्ध, मैं इस विपत्ति में अकेला नहीं रह सकता, मुझे छोड़कर मत जाओ। स्वर्ण सिद्ध, मुझे

और फिर ये कहकर स्वर्ण सिद्ध चला गया। चक्रधर किसी दूसरे लोभी की प्रतीक्षा में बैठा रह गया। सुधी श्रोताओं, यहीं पर पंचतंत्र का प्रकरण अपरीक्षित कारक समाप्त होता है। साथ साथ विष्णु शर्मा की प्रतिज्ञा रूपी पंचतंत्र भी पूर्ण हुआ। राजा अमरशक्ति के तीनों पुत्र अब मूर्ख नहीं थे, तीनों ही राजनीति के प्रकांड विद्वान बन चुके थे। आज 6 मास पूरे हुए। महाराज अमरशक्ति के लिए तो ये 6 मास 6 युगों की तरह बीते थे। सारी रात्रि आंखों में ही काटी थी उन्होंने। सूर्योदय होते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। मन में कई प्रश्न आ जा रहे थे।

एक कुल देवता। मैंने पंडित विष्णु शर्मा की बातों का विश्वास किया था। मेरे विश्वास की लाज रखना प्रभु, मेरे इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कौन होगा? हे ईश्वर, आज समय कटता क्या?

0: महाराज, धैर्य का फल मीठा होता है, आप तनिक भी संदेह ना करें। पंडित विष्णु शर्मा आते ही होंगे, वो वचन के बहुत पक्के हैं।
1: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पंडित विष्णु शर्मा तीनों युवराज के साथ आए हैं और दर्शन की आज्ञा चाहते हैं।
2: अरे वाह, उन्हें अविलंब दरबार में ससम्मान लाए।
3: महाराज की जय हो। सुप्रभात महाराज।
4: प्रणाम पिताश्री।
2: आयुष्मान भवा। स्वागत है आचार्य वर, आपके लिए ही हम चिंतित हो रहे थे।
3: नहीं महाराज, चिंता चिता समान होती है। ये एक ऐसा दीमक है जो अंदर ही अंदर खाया जाता है, और अब आपके ये तीनों पुत्र आपकी सारी चिंताएं ले लेंगे।
2: महामंत्री सुमति, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं।
4: नहीं पिता महाराज, कानों सुनी बातों पर विश्वास करना उचित नहीं। राजा को कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उसके पूरे तथ्यों पर विचार कर लेना आवश्यक है। चाहे तो आप हम तीनों की परीक्षा ले लें।
2: पुत्र, हम आपकी क्या परीक्षा लेंगे? ये आपके खाने खेलने के दिन है और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
5: खाने खेलने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है महाराज। हम तीनों भाई चाहते हैं आप किसी भी प्रकार से अपने को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं देंगे।
0: पुत्र बहुशक्ति, आप सब में बड़े हैं, आप हमें बताएं एक सच्चे मित्र के क्या लक्षण होते हैं।
5: सर्वप्रथम महामंत्री सुमति को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, एक सच्चा मित्र कभी भी झूठी प्रशंसा नहीं करता, हर सुख दुख में आपके साथ होता है, आपको सही राह दिखाता है।
2: अद्भुत, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
6: महाराज, अधिक प्रसन्नता दर्शाना भी राजा के लिए उचित नहीं है। ये वो पल होते हैं जिनकी प्रतीक्षा शत्रुगण करते हैं। राजा को सर्वदा अपने क्रोध और प्रसन्नता के साथ दुख को भी सीमित रूप से ही दर्शाना चाहिए। मेरे अधिक बोलने के अपराध को क्षमा करें पिता महाराज।
2: नहीं नहीं पुत्र, आप सबकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कानों में अमृत घोल दिया हो।
4: पिताश्री, गुरुदेव बहुत दूर से पैदल आए हैं, वह थक गए होंगे, उनके विश्राम का प्रबंध करना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं यह कार्य करूं, क्योंकि कहा जाता है कि अतिथि देवता का रूप होते हैं। अपने भोजन से आधा भाग अतिथि को देना पुण्य होता है। उनके पैर धोने से कन्या के लिए योग्य वर मिलता है। अतिथि नारायण का रूप है।
2: आपका कथन सर्वथा उचित है वत्स। हे आचार्य वर, मैं किस प्रकार आपका सम्मान करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। परंतु मैं भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूला हूं कि आपको 100 गांवों का आधिपत्य दूंगा। इसके अतिरिक्त मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं गुरुदेव?
3: नहीं महाराज, नहीं। मैं आपसे पूर्व में ही कह चुका हूं कि मुझे धन भूमि इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन के इस संध्या काल में अब मेरी कोई कामना शेष नहीं है। महाराज, आपके पुत्रों का जो दायित्व मैंने लिया था मैंने पूर्ण किया। अब अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप मुझे देने वाले धन से अपने राज्य में एक शिक्षा संस्थान बनवाएं, जिसमें ऐसी शिक्षा दी जाए जो छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान से अधिक व्यावहारिक ज्ञान दे सके। आप चाहें तो मैं इस कार्य में आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं।
2: आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। महामंत्री सुमति, आज से ही आप इसकी तैयारी शुरू करवा दें और पूरे राज्य में घोषणा करवा दें कि आज मेरे पुत्रों के

हमारी ये पंचतंत्र की यात्रा भी यहीं समाप्त होती है। आप सबका साथ बड़ा आनंददायी रहा, आशा है आप सबने भी आनंद लिया होगा। हमारी ओर से आप सबको सादर नमस्कार।

संग्रहालय से इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र का भाग 13। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नहीं

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिनी और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है।

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड नहीं पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एवं पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन किया। श्री चौहान ने इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार उन्होंने सरकार और पार्टी संगठन से संबंधित मुद्दों के अलावा राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने धार स्थित भोजशाला में भव्य माता सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज शाम उज्जैन में आयोजित शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव कल खजुराहो में आयोजित होने वाले 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्य महिला आयोग में लगभग 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर जन सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दिन कल 40 प्रकरण बेंच के समक्ष प्रस्तुत किए गए। आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और IPL क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 1 बजे हैं, लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

नमस्कार सखियों, महिला सभा लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी सखी नीलम चौरे। और ये सब संभव हो पाया है सखियों रेडियो के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुँचाने का। रेडियो एक ऐसा सफर जिसने समय के साथ कदम मिलाते हुए हर दिल तक अपनी आवाज पहुंचाई। आकाशवाणी 90 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा को जारी रखते हुए शुरू करते हैं आपसे बातों का सिलसिला। सखियों कहते हैं हर वक्त कामयाबी साथ नहीं होती, कोई भी हार आपके हौसले से बड़ी नहीं होती। वाकई सखियों, अक्सर जब हम असफल होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मन निराश हो जाता है, आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। लेकिन क्या सच में सखियों असफलता अंत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा भी गया है असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। सखियों, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने कभी असफलता का सामना ना किया हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग टूट जाते हैं हताश निराश, तो कुछ लोग उसी से सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। सखियों, माना कि हम महिलाओं के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की अपेक्षाएं। लेकिन इन सब के बीच जो सखियां हार नहीं मानती वही आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाती हैं। सखियों, हमें यह समझना होगा कि असफलता हमें रोकने के लिए नहीं, सही दिशा दिखाने के लिए आती है। कभी कभी अगर किसी काम में सफल

सफलता नहीं मिलती इसका मतलब यह नहीं कि हम उस काम के योग्य नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों को और बेहतर बनाना है पूरी बौद्धिक क्षमता और मेहनत के साथ। सखियों, जब भी असफल हों तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। यही सोच हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है।

ऐसा ही साथ है सखियों हमारा और आपका सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का, जो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ी है। और वो योजना है सखियों, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अभियान योजना, जिसकी शुरुआत की गई। यह योजना पहले मिड डे मील योजना के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब बेहतर रूप से आगे बढ़ाया गया, जिसका उद्देश्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, ताकि वे स्वस्थ रहें और पढ़ाई में भी रुचि बढ़े। इस योजना से बदलाव आया सखियों। अब सरकारी सहायता स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन तो दिया जाता है, जिससे बच्चों की सेहत में सुधार हुआ और स्कूलों में उपस्थिति भी बढ़ी, साथ ही कुपोषण की समस्या भी कम हुई। इसके साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी, जिसमें महिलाओं को भोजन बनाने का काम मिल रहा है, रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। सखियों, यह योजना केवल भोजन देने तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों को उनके स्वास्थ्य उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत करने का सफल प्रयास है। सखियों, हमारे आसपास कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, संतुलित पोषण आहार देना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार तो काम कर रही है बखूबी, हम भी उनके इस काम को सफल करें। और अब बारी है सखियों गीत सुनवाने की, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो क्यों अब समय हो रहा है आपको किसी ऐसी सखी से मिलवाने का जो आत्मनिर्भर है। तो आइए सुनते हैं क्रम मेरी उड़ान। सखियों, आज की महिला केवल सपने नहीं देखती बल्कि उन्हें साकार करने का साहस भी रखती है। खाना बनाना, मेहमान नवाजी और स्वाद जो कभी केवल घर तक सीमित माने जाते थे, आज वही हुनर महिलाओं को स्वरोजगार और पहचान दिला रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम ऐसी ही एक प्रेरणादायक महिला से बातचीत करने वाले हैं सखियों, जो एक कैफे की सफल संचालिका है। तो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है श्रीमती अमृता मनदीप सहजल, जो कैफे की ओनर हैं और अपने कैफे के माध्यम से न केवल स्वरोजगार कर रही हैं बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमृता जी आपका हमारे कार्यक्रम में मेरी उड़ान में।
1: नमस्कार नीलम जी।
0: सबसे पहले आप हमारे श्रोता सखियों को यह बताइए कि कैफे खोलने का विचार आपके मन में कैसे आया?
1: हाँ जी नीलम जी, ये जैसे आपने अभी कुछ देर पहले ही बोला कि खाना बनाने का शौक और खाना खिलाने का शौक, ये दोनों शौक मुझे बचपन से ही हैं। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं पंजाबी हूँ, तो खाना, ये दोनों शौक मेरे खून में ही हैं। मैंने बचपन से देखा है, मेरे मम्मी होम साइंस के स्टूडेंट थे और वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे और मेरे डैडी उनकी पूरी पूरी मदद करते थे और मेरी मम्मी के पास एक उनकी होम मतलब कुकरी की किताब थी, तो उस कुकरी बुक से देख देख के खाना बनाना सीखती थी और वो मुझे खाना बनाने के लिए प्रेरित करते थे। तो वो खाना बनाते बनाते इतना शौक बन गया और फिर मुझे तारीफें मिलने शुरू हो गई, तो जिसके कारण क्या हुआ कि मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लग गया। और मैं बहुत छोटी थी तभी से मैंने क्या मतलब बड़ी बड़ी मतलब राजमा चावल बनाने शुरू कर दिए, पकौड़े, घर के पकौड़े बनाने शुरू कर दिए और मेरी सखियाँ मतलब मेरी फ्रेंड्स क्या हैं घर पर खाना स्पेशल खाना डिमांड करके घर पर आना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब उन्हें अच्छा लगने लग गया मेरे हाथ का खाना और रिश्तेदारों को भी अच्छा लगने लग गया। और एज सच मैंने स्टडीज में एमबीए किया हुआ है तो, और तो थोड़ा व्यवसाय की तरफ मेरा माइंडसेट है।
0: इसका मतलब आप बहुत अच्छी अच्छी डिशें बना लेती हैं और आप इसी फील्ड में मतलब जाने का आपने सोचा?
1: 2021 में मेरे फादर इन लॉ के एक्सपायर होने के बाद हम लोग इंदौर शिफ्ट हुए, तो हमारा यहाँ पे व्यवसाय है, उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस क्षेत्र में नया कुछ करने का सोचा और इसलिए हमने कैफे ओपन करने के बारे में विचार विमर्श किया।
0: तो जब आपने कैफे शुरू किया तो शुरुआत में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
1: देखिए, व्यवसाय एक ऐसा क्षेत्र है कि आप किसी भी इसके किसी भी फील्ड में आप बिजनेस ओपन करें तो कठिनाई आती ही आती है। ऐसे ही कैफे के क्षेत्र में भी बहुत कठिनाई आई और एक महिला होने के नाते

0: कह लीजिए, चाहे आप एक व्यक्ति विशेष के रूप में कह लीजिए, कठिनाई तो आती ही है। जैसे कि शुरू में बहुत लोगों ने बोला कि आपको लॉस होगा, इंदौर में लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो नई नई डिशेस ट्राई नहीं करते हैं, वो पुराने पोहा जलेबी से ऊपर नहीं उठते हैं, आपको कुछ नया नहीं करना है यहाँ पे। मगर मुझे ऐसा लगा कि टाइम के साथ साथ लोगों का टेस्ट भी बदलता है, टाइम के साथ साथ लोग ऊपर मतलब अपने स्वाद के अनुसार नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं। तो हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लोगों के स्वाद को ध्यान में रखते हुए अपने कैफे में नए नए प्रयोग लेके आए, ताकि लोगों को हम सेटिस्फाई कर सकें।
1: बहुत अच्छी बात है अमृता जी। और जैसा कि एक महिला उद्यमी हैं आप, और महिला उद्यमी होने के नाते क्या आपको कोई विशेष कठिनाई या कोई अनुभव आप जो बताना चाहें?
0: देखिए, कैफे का अनुभव एक डिफरेंट अनुभव होता है। कोई भी लोग कैफे में क्यों आना पसंद करेगा? वही कॉफी आप घर में बैठ के भी पी सकते हैं और कैफे में भी आके पी सकते हैं। कैफे में आपको जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं, आपको स्पेशल फील करवाते हैं, आप एक एक्सपीरियंस के लिए कैफे में आते हैं, तो वो एक्सपीरियंस हमारे कैफे में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो इंटीरियर है, हमारे जो हॉस्पिटैलिटी स्किल्स जो रहती हैं, जो हमको आपको कोजी वाइब्स मिलती हैं, जो आपको वेलकमिंग जो वहाँ पे महसूस होता है, वो हमारे कैफे में वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। जैसे हमारे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, बुक्स भी हैं, हम आपको वहाँ पे बिल्कुल बोर नहीं होने देते हैं। हमारे कैफे का इंटीरियर बहुत अच्छा है, जो मैंने खुद किया है, खुद लोगों को ध्यान में रख के, बच्चों को, आज की जनरेशन को प्रेरित करके, कोटेशंस कुछ ऐसी लगाई हैं जो बच्चे को लोगों को मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। और हमारे में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हैं, जो लोग म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं वो वहाँ पे आते हैं, सिंगिंग करते हैं, बजाते हैं और अपना टाइम अच्छे से इंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ पे बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, इसका भी पूरा अरेंजमेंट रहता है। और जो खाना बनता है वो भी पूरे प्रॉपर हाइजीन और हेल्दी तरीके से बनता है, जैसे पिज्ज़ा बेस रहता है, ब्रेड्स वगैरह रहती है, वो भी बिल्कुल फ्रेश रहती हैं।
1: इसका मतलब आप लोगों के, कस्टमर का काफी ध्यान रखती हैं और उनके खासकर स्वास्थ्य का।
0: देखिए जी, कस्टमर इज अ किंग। कस्टमर के साथ साथ अगर आप ये सोचिए कि जब आप किसी कैफे में जाती हैं तो आप किस चीज़ों का वो उम्मीद रखती हैं, तो वही चीज़ हमने ध्यान में रखते हुए कि अगर मैं कल किसी कैफे में जाऊंगी तो मैं किन चीज़ों की उम्मीद रखूंगी, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने भी उन चीज़ों को अपने कैफे में इंक्लूड किया है।
1: बिल्कुल, आपकी जर्नी और आपका सफ़र सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है अमृता जी। तो हम जानना चाहेंगे कि इस सफ़र में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण रहा आपके लिए?
0: देखिए जी, परिवार का सहयोग ही सबसे महत्वपूर्ण था। और यकीन मानिए जी, मैंने तो मेरे माँ बाप से और मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से बहुत कुछ सीखा है। मेरे माँ बाप से मैंने कुकिंग स्किल्स का सीखा है, और मेरे फादर इन लॉ जो गांव से अकेले आके उन्होंने इंदौर शहर में अपना व्यवसाय शुरू किया और आज जिस मुकाम पे वो पहुंचे हैं, उनको पूरा इंदौर शहर जानता है। और मेरी मदर इन लॉ आज भी मतलब एजड हैं, मगर उनको अपना डेयरी फार्म चला रही हैं। तो उनसे मैंने ये व्यवसाय स्किल्स का सीखा भी। उम्र कोई मायने नहीं रखती है, इस कोई भी काम आप किसी भी उम्र में शुरू कर सकती हैं। तो ये चीज़ें, ये सब का मतलब क्या है, मेरे हस्बैंड खुद इंजीनियर हैं, उन्होंने भी अलग अलग तरीकों से मेरे माइंड में ये चीज़ें डाली है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब मोटिवेशन, एक परिवार का पूरा मेरे को सहयोग मिला है जिससे मैं आगे बढ़ पाई हूँ।
1: बिल्कुल अमृता जी, आपकी बातें सुनकर हमारी सखियां भी सुन रही हैं और आपसे प्रेरणा ले रही हैं। हमारी सखियां भी इस व्यवसाय को करना चाहती हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगी?
0: देखिए, सखियों के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि महिलाएं अगर व्यवसाय में हैं या महिलाएं व्यवसाय में नहीं हैं, तो अपने आप को कमतर ना आंकिए। और महिलाओं के लिए एक कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि विरासत में हमें मेहनत मिली है, कहानी हम खुद लिखेंगे। तो महिलाएं इतनी मेहनती हैं, वो अपने आप को कमतर ना आंकें, और अगर वो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो खुद पे भरोसा रखें, अपनी हिम्मत पे भरोसा रखें और शुरू में छोटे से शुरुआत करें, छोटे से शुरुआत करें और फिर बस निकल पड़ें, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। किसी से प्रेरणा ले सकती हैं और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, और जो आपका शौक है, जो कभी आपका शौक रह सकता है, रह चुका है, वो आप उसको व्यवसाय में भी तब्दील कर सकती हैं। अगर आप अच्छी डांसर हैं तो आप डांस क्लास शुरू कर सकती हैं, आप अपनी सिंगिंग क्लास

0: शुरू कर सकती हैं, तो आपके खुद के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को तराशिए। उसको तराशने के लिए आपको खुद से प्यार करना होगा, आप खुद से प्यार करिए, अपने गुणों को तराशिए और अपने व्यवसाय पे ध्यान दीजिए।
1: अमृता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो सखियों, इनसे मिलकर, इनसे बातें कर हमने जाना जो एक सीख देता है, हुनर छोटा नहीं होता। हाँ, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए।

सखियों, इस गर्मी में रूखे बेजान बालों का आप ध्यान कैसे रखें? आप यही सोच रही है ना? बिल्कुल सखियों, गर्मियों की तेज धूप, पसीना और धूल हमारे बालों की नमी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और बाल रूखे, उलझे हुए और बेजान से लगने लगते हैं, है ना? लेकिन थोड़ी सी सही देखभाल अपनाकर आप अपने बालों को फिर से मुलायम और स्वस्थ बना सकती हैं। रूप लावण्य में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ घरेलू आसान से उपाय। सखियों, सबसे जरूरी बात इन दिनों शरीर को हाइड्रेशन की ज्यादा जरूरत होती है, ये तो आप जानती हैं। वैसे ही बालों को भी नमी चाहिए, इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी पिएं और कोशिश करें बालों को बहुत ज्यादा ड्राई ना होने दें। इसके साथ ही सखियों, एक आसान घरेलू उपाय हम आपको बताते हैं, सखियों दही का इस्तेमाल। सखियों, दही के साथ शहद मिलाकर बालों में लगाएं और ठंडे गुनगुने पानी से बालों को धोएं। जो प्राकृतिक कंडीशनर होते हैं इससे बाल मुलायम चमकदार बनते हैं। और अब दूसरा उपाय है सखियों, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बालों और स्कैल्प पर लगाएं, ठंडक मिलती है और रूखापन भी कम होता है। एक छोटी सी आदत भी बदलना है सखियों, बाल धोते समय हमेशा सामान्य या ठंडे पानी से बाल धोएं, नमी बनी रहेगी। इसी तरह सखियों, तेज धूप के चलते बालों को कॉटन दुपट्टे से ढकना भी अच्छा उपाय है, धूप से तो बचाते हैं साथ ही धूल से भी। सखियों, थोड़ी सी सावधानी बालों में फिर से नमी चमक बरकरार रखती है। स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए और सुनते रहिए ये प्यारा सा गीत।

सखियों अब बढ़ते हैं रसोई की ओर, हमारे क्रम फूड जोन में। सखियों तेज धूप, बढ़ती गर्मी, बस लगता है कि ऐसे में मनचाहे पेय मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है, जिसको पीने मात्र से ही गला तर और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। सखियों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिंट नींबू पंच। फूड जोन में सामग्री नोट करें सखियों, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच शहद, पुदीने की पत्तियां 4-5, 1/2 चम्मच काला नमक, चाट मसाला वो भी 1/2 चम्मच। अब ठंडाई के लिए 1 कप कुटी बर्फ और अंत में 1 गिलास सादा पानी। आप सखियों इसको बनाने के लिए सबसे पहले नींबू के रस के साथ उसमें पुदीने की पत्तियां, काला नमक, चाट मसाला और शहद को एक साथ मिलाकर मिक्सर में पीस लें। आप ग्लास में बर्फ के टुकड़े डालें, तैयार मिश्रण को पानी में डालकर खोलें। इसके बाद ग्लास में नींबू की स्लाइस और पुदीने की पत्तियों से सजाकर सर्व करें। इसको पीने से पेट की गर्मी भी कम होती है सखियों, साथ ही पाचन के लिए भी फायदेमंद होगा इस गर्मी में। तो पीजिए सखियों मिंट नींबू पंच, जो बिल्कुल सुगर फ्री है। और अब सुनवाते हैं आपको ये मीठा सा प्यारा सा गीत।

सखियों, अब बात करते हैं काम की। सखियों, जैसा कि गर्मियों का मौसम है, तेज धूप और लू भी लेकर आता है, ऐसे में थोड़ी सी सावधानी जरूरी है, क्योंकि लू लगने से कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द, थकान, बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो काम की बातों में लू से बचने के उपाय हैं सखियों, दोपहर के समय जितना हो कम निकलें। यदि काम की वजह से आप जा रहे हैं तो सिर पर दुपट्टे, टोपी या छतरी से अपने आप को ढकें। माना कि छुट्टियां हैं सखियों, घूमने जा रहे हैं, पानी की बॉटल साथ रखें, दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। साथ ही नींबू, छाछ, नारियल पानी, आम पन्ना जैसे तरल पेय पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। सखियों, इन दिनों ज्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन की जगह आप अंकुरित मूंग दाल, मोठ चना का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। साथ ही सखियों, मौसमी फल खाएं। उन फलों को चुनें सखियों जिनकी तासीर में ठंडक हो, और सखियों जब ज्यादा गर्मी यदि आपको महसूस हो तो तुरंत ठंडा पानी यानी फ्रिज का पीने के बजाय मटके का ठंडा पानी लें और कुछ देर आराम करें। खुद भी रहें सुरक्षित और अपने परिवार का भी ध्यान रखें सखियों इस तपती गर्मी में। ज्यादा बेचैनी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सखियों, अब वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें। तो सखियों, हम बता दें कि कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने, और अब दे अनुमति नीलम चौरे को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
4: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। सुनवाते हैं प्रीतम बोदाना और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लोक संगीत में आप सुन रहे हैं प्रीतम बोदाना और साथियों के गायने माड़ी लोकगीत। आइए इन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं अगला गीत।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे प्रीतम और साथियों के गाए लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। इसमें सुनवाते हैं उमेश भट्ट की गाई कुछ गजलें। पहले सुनते हैं मोहसिन अलवी की लिखी ये गजल।

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे, जिसमें आपने सुना उमेश भट्ट की गाई कुछ गज़लें। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: पानी की हर बूंद है अनमोल,
2: बहने ना दें इसे बेमोल।
1: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
2: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

0: नसंसनी न ही अहंकार केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार का गाया हुआ है। बोल मजरू सुल्तानपुरी के आर डी बर्मन का संगीत है। फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, लीजिए इस फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर को। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत का संगीत दिया है। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा कि सच्चा ज्ञान देश, समाज और पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलता है। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक भी पोस्ट किया जिसका मतलब है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध और स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन अज्ञान के कारण वह मलिन दिखती है और ज्ञान से फिर अपने असली स्वरूप में आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 साल पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची हैं। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन वे महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन करेंगी और आर्किडेरियम और नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगी। वहीं दूसरे दिन नाथुला दर्रे की यात्रा के साथ सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दौरे के आखिरी दिन वे सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी, जिसके साथ सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में भोपाल निवासी 2 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा। कैलाश चंद्र पंत को शिक्षा और साहित्य और डॉक्टर नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों विभूतियों को बधाई देते हुए कहा कि इनके कार्यों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम 5 बजे माँ क्षिप्रा की 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। इस परिक्रमा की शुरुआत कल गंगा दशहरे के मौके पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव ने रामघाट पर पूजन कर की थी। ये परिक्रमा 23 साल पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ही मां क्षिप्रा के संरक्षण के लिए शुरू की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
2: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए

0: धड़कते हुए देखा है।
1: 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत आयुष मंत्रालय पूरे देश में 100 दिनों की काउंटडाउन सीरीज चला रहा है, जिसके तहत 25वें कार्यक्रम की मेजबानी खजुराहो कर रहा है। इस सिलसिले में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप जाधव आज खजुराहो पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सांसद वीडी शर्मा और विधायक अरविंद पटेरिया ने उनका स्वागत किया। अब रुख करते हैं मौसम का। इस बार नौतपा आते ही प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छतरपुर के खजुराहो में पारा 47.2 डिग्री और नौगांव में 46.8 डिग्री पर दर्ज किया गया। प्रदेश के करीब 45 जिले हीटवेव की चपेट में हैं और मौसम विज्ञान विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी किया है। अच्छी खबर यह है कि 28 मई से प्री मानसून की दस्तक हो सकती है और 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश सरकार ने ईद उल जुहा यानी बकरीद का सरकारी अवकाश 27 मई की जगह 28 मई कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब 27 मई को सभी सरकारी दफ्तर और बैंक खुले रहेंगे। झाबुआ के ग्राम रंभापुर के हाट बाजार में संभाग स्तरीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा बिक रहे खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच की गई। छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने शिमला में आयोजित नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड सहित 5 मेडल हासिल किए हैं। खंडवा के मानधाता के आरक्षक रवि सोलंकी ने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूब रहे महाराष्ट्र निवासी युवक की जान बचाई और आगरमालवा जिला अस्पताल में तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी देर में दोपहर समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज

0: में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
0: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
2: Will become even more important to the world.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 37वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण

0: पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम

0: फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाई टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 2:30 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ही फिल्मी नगमा, जिसे हमने लिया है मेरे हुजूर फिल्म से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का। इस गीत को सुनना चाहा है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह से ये पत्र आया ओम प्रकाश, किरण, आकाश, विकास, नंदिनी, शिवांश और समस्त नेमा परिवार का। तो आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद का मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ है, शकील बदायनी की शब्द रचना संगीत नौशाद का। मेरे महबूब फिल्म के इस गाने को सुना चाहा है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता सिद्धांत प्रिंस एकांश, विश्वकर्मा नगर नागपुर से पत्राया शैलेश वैशाली श्वेता सुमित और ध्वनि गवाणकर का। इसी गीत को सुना चाहा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत साथी फिल्म से है, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा, नौशाद का संगीत है। सुनना चाहा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साविर राही, मेहरा जहां। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का।

कनेरा मोहल्ला पटियाला से ये पत्र आया है बत्ता परिवार का। मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता का। इसी गीत की फरमाइश भेजी पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया ने। इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना, राहुल देवबर्मन का संगीत, स्वर किशोर कुमार के, और फिल्म है कुदरत।

ये गीत आरजू फिल्म से लिया है, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। इसे सुना चाहा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुनिला कमरुल्ला ठेका।

किदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया असमा, सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तावा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई ने, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत वक्त फिल्म से है, जिसे गाया आशा भोसले ने। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया रवि ने। सुना चाह है ग्राम धोरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, डेविड रुस्तम, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से पतराया दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का। आदर्श नगर मलोट पंजाब से इस गीत को सुना चाह है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा ने।

0: आशा भोसले की आवाज़ में गाए वक्त फिल्म के इस गाने के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम छाया पाठक को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा

0: की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा कि सच्चा ज्ञान देश, समाज और पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची हैं। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन वे महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन करेंगी और आर्किडेरियम और नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में भोपाल के निवासी 2 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। कैलाश चंद्र पंत को शिक्षा और साहित्य और डॉक्टर नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम 5 बजे माँ क्षिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। और इस बार नौतपा आते ही प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा। शाम 5:33 और 6:30 आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे रात 8:15 पर और रात 10:00। छः बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुन सकते हैं किसानों के लिए लाभकारी कस्टम हायरिंग, इस विषय पर डॉक्टर अनुराग पटेल से ली गई भेंटवार्ता। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। उर्दू कार्यक्रम कहकशा में रात्रि 9:30 सुनिएगा कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम महफिले समा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 आज हम आपको सुनाएंगे पंडित उमाकांत रमाकांत गुंदेचा का ध्रुपद गायन। ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3:05 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ समय के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच पर जारी है। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं प्रीतम बोडाना और साथी। इनसे सुनते हैं निमाड़ी लोकगीत।

डीटीएच पर अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं उमेश भट्ट। सुनते हैं इनकी गाई ये गज़ल।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे उमेश भट्ट की गाई कुछ गजलें। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत तुम बिन फिल्म से लिया है, जिसे गाया चित्रा ने। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा, संगीत निखिल विनय का।

धड़कन फिल्म का ये गीत है जिसे लिखा समीर ने, नदीम श्रवण का संगीत और आवाज़ कुमार सानू की।

कामचोर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। अगला गीत जीवन मृत्यु फिल्म से है, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया है, साहिल लुधियानवी के बोलों को संगीत से सजाया खयाम ने। फिल्म का नाम चंबल की कसम।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए चंबल की कसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी आप सुन रहे हैं डीटीएच पर। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी है कि 4

जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में हो रहा है। यह पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है। दुनिया के 75 से अधिक देश इसमें भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा कि सच्चा ज्ञान देश, समाज और पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची। यहां पर राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन वे महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन करेंगी और आर्किडेरियम और नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज

0: पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं और ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेक में वेस्ली सो को हराया और गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शब्द सागर।
2: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम शब्द सागर में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज एक जगह है जहां पर हमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का एक अद्भुत समागम देखने को मिलता है। एक ऐसे ही व्यक्तित्व को आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है और संयोग से आपका नाम भी प्रयाग ही है। प्रयाग शुक्ल जी आज अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ हमारे साथ मौजूद हैं और उनके व्यक्तित्व में भी कला का, आलोचना का, अनुवाद का और भी विधाओं का अद्भुत संगम हमें देखने को मिलता है। तो आज हम इन विधाओं के अंतर्गत जो उनका लेखन कार्य है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, इनके अंतर संबंधों को जानने का प्रयास करेंगे। शुक्ल जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियोज में आपका।
3: धन्यवाद आपका बहुत।
2: सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि भोपाल से आपका एक लंबा नाता रहा है, तो आकाशवाणी भोपाल में आप मौजूद हैं और आकाशवाणी का भी ये 90वां प्रसारण वर्ष चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
3: सबसे पहले तो आकाशवाणी को बधाई देना चाहूँगा कि देश की एक ऐसी संस्था है जिसके पास इतना बहुमूल्य भंडार है आर्काइवल, और अब से 90 वर्ष पूरे किए हैं, इसकी खुशी तो हम सबको बहुत अधिक है।
2: शुक्ल जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि हम कई रचनाकारों को देखते हैं कि वो एक ही विधा में अपने जीवन काल में लगे रहते हैं, चुक जाते हैं या उसमें कार्य करते करते थक जाते हैं। आपने कई विधाओं की सम्यक साधना की है, तो ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि ये संभव कैसे हो पाता है?
3: देखिए, ये संभव तो कुछ इच्छा से होता है मेरे ख्याल में, और कुछ परिस्थितियों से भी होता है, कुछ प्रसंगों से भी होता है, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के कारण भी होता है
2: जी,
3: कि कोई आपका साथी है उन दिनों का, या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इसके लिए प्रेरित करता है कि आप सभी विधाओं में दिलचस्पी लो। तो मेरे साथ तो एक घटना ये घटी थी कि मैं 23 बरस का था जब कल्पना जैसी पत्रिका में पहुंचा था, और कल्पना आप जानते हो हिंदी की ऐसी पत्रिका मानी जाती है कि सरस्वती, कल्पना, ये दो पत्रिकाएं हैं जिनका स्थान हिंदी के साहित्य में, पत्रकारिता में, साहित्यिक पत्रकारिता में बराबर याद किया जाएगा। तो संयोगवश में वहाँ पहुँचा, वहाँ 18 बरस का था, तो मेरी दो चीज़ें छप चुकी थी, एक कहानी और एक कविता। तो पहले तो जब मैं पहुँचा कलकत्ता से, कलकत्ता में ही बड़ा हुआ आप जानते हो,
2: जन्म भी आपका वहीं,
3: हाँ जन्म भी वहीं का है, तो वहाँ से पहली बार मैं बाहर निकला था, कुछ परिस्थितियाँ भी ऐसी थी पारिवारिक कि लगा कि नहीं मुझे कुछ कहीं कुछ करना चाहिए, और लिखना पढ़ना तो शुरू हो गया था। तो बद्री विशाल जी, उनको कभी भूलता नहीं, बद्री विशाल पित्ती, मतलब एक धनाढ्य परिवार का एक युवा
2: जी
3: जिसने कल्पना शुरू की थी, और जो बहुत सारे लोगों को संगीत की दुनिया में, पंडित जसराज, नृत्य की दुनिया में कई लोगों को, और साहित्य की दुनिया में, तो सबके साथ उनका एक संबंध बन गया था युवा दिनों से ही, कल्पना के कारण भी, उनकी अपनी रुचियों के कारण भी। तो कल्पना में पहुँचा तो मैंने पाया कि वहाँ हर अंक में हम देखा भी करते थे कल्पना के अंक
2: जी,
3: बल्कि हम लोग उन दिनों, तो याद है मैं और मेरे मित्र अशोक सिकसरिया, हम लोग कई एक दो किलोमीटर चल करके नेशनल लाइब्रेरी जाते थे कि शायद कल्पना का अंक आ गया होगा, उसका आकर्षण ऐसा था उन दिनों। तो उसमें प्रतिष्ठित चित्रकारों की पेंटिंग्स छपती थी, रेखांकन आते थे विनोद बिहारी मुखर्जी से लेकर के राम कुमार और भी कई लोग, तो देखा उसको निकट से, कोई फिर उसमें काम करने लगा तो कई चीज़ों से गुजरना ही पड़ता था कि आप सेलेक्ट कर रहे हो वो कि क्या

0: जाएगा, और ये आप बद्री विशाल जी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके साथ कोई सलाह कर रहे हैं या आपके सामने वो खोल कर बैठे हैं, तो एक गहरा आकर्षण पैदा हुआ था
1: जी।
0: और फिर ये था कि कल्पना में, चूँकि उस ज़माने में आप सोचिए फिल्म पर भी सामग्री जाती थी, अच्छी सामग्री, और उसके पहले प्रतीक जो हम लोग देख चुके थे अज्ञे का
1: जी,
0: उसमें भी ये था कि नृत्य पर, कला पर, इन सब चीज़ों में पर सामग्री रहती थी। तो ये संयोग बड़े सुंदर मेरे जीवन में बनते चले गए कि हम लोगों ने बिल्कुल युवा दिनों में प्रतीक देखा, कल्पना देखी, दो पत्रिकाएं खास तौर पर, और उनमें चीज़ें पढ़ते थे, संगीत पर भी कुछ आ रहा है, तो बहुत मन में ये धारणा बहुत गहरे बैठ गई थी कि सभी कलाओं में दिलचस्पी होनी चाहिए। और सच पूछिए तो उस दिलचस्पी के कारण ही ये हुआ कि फिर कल्पना जैसी पत्रिका में रहते हुए भी मैंने हैदराबाद छोड़ दिया
1: जी,
0: इसलिए कि मेरे एक मित्र महेंद्र भल्ला, आप जानते हो, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, कवि भी, वो चिट्ठियाँ लिखते थे, हमारी काफ़ी मैत्री थी, कि हमने आज इब्राहिम अलका जी का नाटक देखा, हम राम कुमार जी को मिले, हमने यामिनी कृष्णमूर्ति का नृत्य देखा, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ। तो सचमुच बिना कुछ सोचे समझे
1: जी
0: मैं दिल्ली पर चला गया, तो कहानी फिर यहाँ से दूसरी से और शुरू हो जाती। अब सबसे परिचय था वहाँ, तो श्रीकांत वर्मा, राम कुमार जी, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोक्ती जी विशेष रूप से, इन लोगों को के साथ पहुँचते एक संबंध बना और मालूम हुआ कि दिन मान निकलने वाला है। तो मैं सोच कर ये आया था कि फ्रीलांसिंग करूँगा और लिखूँगा पढ़ूँगा इन्हीं सब चीज़ों पर, बस शुरुआत हो गई ये कहानी है।
1: तो क्या ये कुछ इस तरीके से हुआ कि पहले एक विधा में आपने दखल दिया और उसके बाद आपको दूसरी विधा ने आकर्षित किया, तो दूसरी विधा में भी आपने दखल देना शुरू किया और दोनों में काम साथ साथ चलता रहा और इसी तरह आगे बढ़ता गया?
0: नहीं, फिर ये हुआ जब मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली, उस समय की दिल्ली
1: जी जी,
0: कि वो फिर खाली लिखने तक सीमित नहीं थी चीज़ें, वैसे से फिल्म पर लिखना तो बाद में शुरू किया, किताब भी एक जीवन को गढ़ती फिल्में, और बहुत गहरा आकर्षण है फिल्मों के लिए, अच्छी फिल्मों के लिए, विश्व सिनेमा की। तो ये हुआ था कि लिखूँ चाहे लिखूँ, पर देखते ही हम सब थे, जैसे मैंने यामिनी जी के उस समय की कोई उनका कोई ऐसा डांस रिसाइटल नहीं होगा शायद जो मैंने ना देखा हो। फिर बाद में एक आध बार कभी लिखने का मौका आया तो वो भी किया। अच्छा हाँ, इसे ये चीज़ भी याद आई, देखिए कि खाली देखना या लिखना या दिलचस्पी लेना भी आपके कितने काम आता है। जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ा 99 के लगभग, तो NSD में पहुंचा, नेशनल का ड्रामा में, राम गोपाल बजाज में ले गए वहाँ। अब ये मैं कैसे कर पाया, क्योंकि रंगमंच पर इतना तो नहीं लिखा था, दो चार चीज़ें ही लिखी थी, पर उनको ही पता था कि इनकी दिलचस्पी कितनी गहरी है, ये इस काम को कर सकेंगे। तो मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका रंग प्रसंग निकाली, 12 साल रहा उनके साथ, पूरा देश देखा, उनकी दुनिया से संबंध बना, कला की दुनिया से मेरा संबंध शुरू से था, क्योंकि तो कला पर सबसे पहले लिखना शुरू किया था। जब मैं फ्रीलांसर था तब भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के सब संपादक थे, तो उन्होंने ही मुझे कला का कॉलम सौंपा था, दो एक चीज़ें मेरी उन्होंने लिखवाई थी, फिर उनके आधार पर कि शायद ये काम कर सकेंगे, उसने मेरा जीवन ही बदल दिया। 10 साल मैं निर्माण में रहा, कला का कॉलम लिखा, 2-3 साल फ्रीलांसर के तौर पर, फिर अज्ञे जी मुझे ले आए थे निर्माण में। उन्हीं दिनों 1967-66 में फ्रीलांसिंग करता था, 69 में बाकायदे उन्होंने ज्वाइन कराया, फिर वहाँ मैं 10 साल कला का कॉलम लिखता रहा। इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं, अनंत यादें हैं
1: जी। जैसा आपने अभी कहा कि मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, लेकिन पढ़ता सब कुछ था, देखता सब कुछ था, क्या जो आज के साहित्यकार हैं, नवोदित और युवा साहित्यकार हैं, क्या उनको भी आप ये शिक्षा स्वरूप कहना चाहेंगे कि आप हर विधा पढ़िए, भले ही आपका लिखने का जो मन है वो एक विधा में?
0: ये तो मैं सबसे मिलते ही कहता हूँ, कभी कभी लिखता भी हूँ, एक प्रस्ताव की तरह कि करना कितनी सुंदर बात है। अभी तो हाल की घटना देखिए भोपाल की, आपको बताऊं
1: जी।

0: सुदीप सोनी हमारे युवा मित्र,
1: बिल्कुल,
0: इन्होंने अभी एक सिनेकारी करके ये एक कार्यक्रम करते हैं हर साल, तो उसमें मैं भी था इस बरस, तो वो दृश्य देखकर ही मैं इतना प्रसन्न हो गया। उस दिन बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ा कि उसमें संगीतकार हैं और थिएटर के लोग हैं, फिल्मकार तो थे ही, युवा फिल्मकार भी कई थे, तो काफ़ी प्रसन्न हुआ मैं, क्योंकि वो दृश्य ही प्रसन्न करने वाला था, क्योंकि कलाओं की एक आपसदारी, उनका एक दूसरे से उनका साझा तो बहुत गहरा है, और वहीं से सच पूछिए तो आपको चीज़ें मिलती हैं जो सोचने की, कुछ चीज़ों को नई तरह से देखने की, और वो जीवन के अनुभव को भी बहुत गहरा तभी वही करती हैं
1: जी।
0: उसके बिना मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ कर सकती है, क्योंकि देखिए ये बात तो ये आकर्षण क्यों हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक तरह की सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा हुई, तुम इसी दुनिया में रहो,
1: बिल्कुल,
0: ये बहुत कुछ तुमको देगी, उसे दिया है मुझे, मैं तो अपने को ये भी यही मानता हूँ कि मेरा जीवन जैसा बना वो बिना कलाओं के नहीं हो सकता था, मतलब वो आनंद उठा ही नहीं सकता था मैं किसी और तरह से, ये तो अपने अनुभव से जानता हूँ
1: जी।
0: कि उस प्रसंग से फिर ये धीरे धीरे अपने आप ही शायद होता है कि आप उन बड़े रचनाकारों से मिलते हो या उनके बारे में पढ़ते हो या उनको निकट से देखते हो, तो ये चीज़ें समृद्ध करती हैं।
1: बिल्कुल, आगे जानना चाहेंगे शुक्ल जी आपसे कि आप एक कवि भी हैं, आलोचक भी हैं, और ज़रूरी नहीं कि जो एक कवि होता है वो एक अच्छा आलोचक भी हो, या इसका उल्टा कि एक आलोचक हो वो अच्छा कवि भी हो, लेकिन जहाँ इन दोनों का या दो विधाओं का समन्वय होता है वहाँ फिर किस प्रकार के तत्व काम करते हैं?
0: वहाँ एक मेरे ख्याल में सहज एक उत्सुकता भी काम करती है कि आप चीज़ों को एक नई उत्सुक निगाह से देखते हो। जैसे मेरी किताब है कविता की भाषा और भाषा का समाज
1: जी,
0: तो उसमें हमारे कई हमसे अग्रज कवियों के हमसे पहले के संस्मरण भी हैं, लेख भी हैं, तो उसको आलोचना कहिए आप, उसको एक चाहिए कहिए कि एक जानने की इच्छा थी, परखने की, लिख करके
1: जी
0: को होती है आपकी इच्छा। जैसे केदारनाथ अग्रवाल जी, अब हम लोग बचपन में, बचपन तो नहीं, किशोरावस्था में, युवावस्था में उनकी एक रचना पर हमको याद भी हो गई थी काफ़ी हद तक, अब कुछ पंक्तियाँ याद हैं, माँ जी ने बजाओ बंसी मेरा मन डोलता कि मेरा तन डोलता, ऐसे ही है, जल का जहाज जैसे पल पल डोलता, तो उन पर लिखा एक लेख
1: जी,
0: अब उसमें एक आनंद आने लगता है। जैसे फिर उस किताब में या उस किताब के लेखों में मैंने ये क्यों जांचना चाहा कि ये किस तरह का संबंध कविता का अपने समाज से होता है।
1: आपके अनुवादक पक्ष से अगर हम कुछ सवाल करना चाहें आपसे, क्या अनुवादक होने के लिए पहली शर्त ये होती है कि कई भाषाओं की जानकारी आपको हो?
0: कई भाषाओं की चाहे न भी हो, एक ही भाषा की हो तो भी काफ़ी है
1: जी।
0: अब मुझे तो जिन दो दो भाषाओं से अनुवाद किए हैं, बांग्ला से और अंग्रेजी से
1: जी,
0: तो बांग्ला का प्रसंग तो ये है कि कलकत्ता में बड़ा हुआ, जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ बांग्ला भाषी छात्र ही अधिक थे, तो एक सहज ही उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा था मुझे
1: जी।
0: पढ़ने के लिए तो करना पड़ा, थोड़ा बहुत उसमें प्रयत्न भी किया कि मैं ठीक से पढ़ सकूँ, संभव हो तो लिख भी सकूँ, बांग्ला लिपि में कुछ लिख सकूँ, लेकिन फिर किताबें पढ़ना, उस भाषा में उतरता चला गया, तो जिसका एक बहुत बड़ा लाभ मुझे हुआ, और बंकिम बाबू के निबंधों का अनुवाद किया, गीतांजलि का अनुवाद किया
1: जी, वो तो बहुत बड़ा काम आपका हुआ,
0: जीवनानंदास की कविताओं का अनुवाद किया, शंकु घोष की कविताओं का अनुवाद किया, और चूँकि भोपाल में बैठा हूँ इसलिए सहज ही देखिए ये बात याद आ रही है कि वो भारत भवन आए थे शंकु घोष जी भारत भवन के निमंत्रण पर, और 15 कविताओं का अनुवाद तो यहीं बैठ कर किया था उनके साथ, और उनके उनसे मिलना है, यहाँ प्रसंग आ गया है उनका, तो कहना चाहता हूँ कि उनसे मिलना मेरे जीवन का एक बहुत बड़ी प्राप्ति थी, क्योंकि वो कभी भी ऐसे थे, व्यक्ति भी ऐसे थे, उनका अध्ययन भी ऐसा था, जिसमें होता है ना कि किसी की प्रेजेंस ही आपको बताती है, कभी कभी किसी की उपस्थिति ही इतना कुछ आपको देती है, उसका सोचने का ढंग, बोलने का ढंग, जीवन जीने का ढंग, कि आप उसी से समृद्ध होते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये बात समझ में आई मेरे कि अगर अनुवाद बहुत किए हैं मैंने,

0: करने में बहुत आनंद भी आया। उसका एक बड़ा कारण समझ में आया कि अनुवाद करके ही आप अपनी भाषा को जान सकते हो
1: जी,
0: क्योंकि जब आप लिखते हो, कोई भी लेखक, तुम्हारे लिए एक ड्राफ्ट बनाएगा, दो ड्राफ्ट बनाएगा, तो ये होता है कि पहले ड्राफ्ट में वो ज़्यादा सोचता नहीं, जो शब्द उसके पास सहज ही होते हैं वो उसी के प्रवाह में वो लिखता है। पर अनुवाद, अनुवाद में तो फिर आप ये सोचते हो कि इसमें हम क्या करें, कि राम कमरे में आया, कि राम ने कमरे में प्रवेश किया, संदर्भ क्या है
1: जी,
0: और व्यक्ति वो कौन है। ये तो एक ही उदाहरण हुआ, फिर बड़े ऐसे बीसियों उदाहरण है जहाँ आप डिक्शनरी भी देखते हो, उस संदर्भ पर कई बार सोचते हो, उस संदर्भ के हिसाब से अपनी भाषा के शब्द, पर्यायवाची शब्द भी आप ढूंढते हो
1: जी,
0: कि मैं इस समय क्या करूँ, लिखूँ तो क्या अच्छा रहेगा,
1: और आप समृद्ध होते जाते हो
0: उसी से, होते हैं और उसी से बहुत आनंद भी आता है, क्योंकि अपनी भाषा को जानने का आनंद भी एक बड़ा आनंद है ना।
1: आपकी कविता भी है ना नए शब्द कि जैसे जैसे हम शब्द जानने का प्रयास करते हैं
0: जी।
1: प्रयाग जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि अनुवाद को भाषाओं का ही नहीं संस्कृतियों का भी सेतु कहा जाता है, थोड़ा सा इसे हमारे श्रोताओं के लिए व्याख्यायित करें।
0: नहीं, वो तो निश्चय ही है। देखिए, हम लोगों ने भी जो जाना अपने जीवन में भारतीय साहित्य के बारे में, विश्व साहित्य के बारे में, वो कैसे जाना, अगर अनुवाद न होते तो हम विभिन्न देशों की संस्कृतियों के बारे में, उनके खान पान के बारे में, सहज ही जो हम जान लेते हैं किताब पढ़कर, कोई फिल्म देखकर, उसमें का अनुवाद, अनुवाद तो है ही। और अनुवाद में देखिए, अनुवाद के साथ ये बात भी याद आई कि खाली किताबों का अनुवाद ही नहीं, मैं कोई फिल्म देखता हूँ तो उसमें सबटाइटल्स रहते हैं
1: जी,
0: तो आप कई तरह से भाषाओं के साथ आपका एक रिश्ता बनता है ना।
1: बिल्कुल,
0: और अनुवाद में तो बहुत ज़्यादा बनता है,
1: बिल्कुल
0: ये तो होता ही है।
1: आगे आपसे जानने का प्रयास करेंगे, थोड़े से सवाल करना चाहेंगे नई पीढ़ी को लेकर। कई बार हमें ये देखने को आ रहा है कि नई पीढ़ी थोड़ा है, उसका एक वर्ग है जो वो पठनीयता से दूर हो रहा है, या जो थोड़ा बहुत वो लिख भी रहे हैं वो उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का होना चाहिए। इस संकट को आप कैसे
0: देखिए, मैं इस पर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम लोग अक्सर एक एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं
1: जी,
0: कि अरे नई पीढ़ी इतना पढ़ नहीं रही, नई पीढ़ी इतनी अवेयर नहीं है। ये नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मैं इसके सचमुच ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि फिर आपको ऐसे व्यक्तियों से भेंट होती
1: जी।
0: इसमें मेरा मानना है, अब तो जेन
1: वगैरह
0: ऐसे हम संबोधित करते हैं, एक से एक लड़के लड़कियाँ मिलते हैं जो पहले इस तरह के नहीं थे, खूब पढ़ने वाले, अच्छा सोचने वाले, अच्छी बातें करने वाले, कलाओं से गहरा संबंध रखने वाले। अब वो आपके, वो भी आपके रुचियों के कारण होता है कि आप उनसे कैसा संबंध बनाते हो। मैं तो इस समय खाली युवा लोगों से ही अधिक मिलता हूँ
1: जी, बिल्कुल,
0: और उसको ढूंढ कर मिलता हूँ, खोज कर मिलता हूँ, और पता चलते ही उनका काम देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है, और मैं समझता हूँ ये मानना बहुत सुंदर बात है, कि मेरा ज़माना था वो तो था, कल्पना का ज़माना था, दिनमान का ज़माना था, 60s का ज़माना था, 70s का, जब पूरे देश में बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन ये भी तो मेरा ज़माना है,
1: बिल्कुल,
0: कि मैं युवा लोगों से मिल रहा हूँ और उन्हीं से आजकल अधिक मिल रहा हूँ, तो मेरा ज़माना तो है। अभी मैंने सुदीप सोनी और उस दिन मिले बहुत सारे युवा लोगों का जिक्र किया, अपने निजी अनुभव से जानता हूँ, इस समय एक से एक ब्राइट ब्राइट लड़के लड़कियाँ हैं
1: जी,
0: और मुझे बड़ी खुशी होती है उस बात की, और उनको जानता हूँ, पर संबंध है मेरे लगभग हर विधा के लोगों से, युवा पीढ़ी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। और अब वो खाली एक शहर में नहीं है कि भोपाल है, दिल्ली,
1: हर एक शहर में जी,
0: हर शहर में है। और मैंने अभी तो ऐसा मौका नहीं है, मैं नाम गिनाता भी हूँ ताकि जो लोग नहीं उनके बारे में जानते अगर तो जाने, अपनी बातचीत उनको लाता हूँ।
1: एक समस्या लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलती है कि जो पीढ़ी है नई पीढ़ी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वाद का शिकार हो जाती है, तो इसकी चिंता को आप कैसे देखते हैं और उसका समाधान आप क्या सुझाना चाहेंगे?
0: देखिए, समाधान तो व्यक्ति खुद सुझा उसका करता है
1: जी,
0: आपके कहने से नहीं होता। ऐसे मेरा मानना है कि उसमें कोई बुराई नहीं है। अब बहुत लोगों को आप पाओगे कि वो इस गहराई से जुड़ते हैं किसी कला माध्यम से कि पूरे आजीवन नहीं छूटती उनसे। बहुत लोगों का संबंध टूट जाता है, थोड़ा हो जाता है, फिर लोग याद भी करते हैं, अरे हम अपने ज़माने में कॉलेज स्कूल में नाटक खेला करते थे, अब वो दिन नहीं।

0: ही रहे, ये भी होता है। और कुछ लोगों से लंबा उनके साथ का संबंध रहता है। इन चीज़ों को लेकर सच पूछे तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि समाज में ऐसे लोग मौजूद रहें वही काफ़ी होता है, संख्या से भी नहीं होता। मान लीजिए बहुत सारे लोग, जो लोग गहराई से जुड़ते हैं वो निश्चय ही अपने साथ 10 लोगों को प्रभावित करते हैं
1: जी,
0: संभव ही नहीं कि ना करें।
1: बिल्कुल।
0: अब हम ही लोग जो मिला था अपनी पीढ़ी से, किन लोगों से मिला था, जो भाषा का मान लीजिए कोई अलग व्यवहार जो करते थे, जिनके नाटकों में हमने कुछ नया होते देखा
1: है।
0: अब हमारे बाबा कारण जी थे, हमारी पीढ़ी के जो लोग उनकी याद करता हूँ, तो ऐसे कई नाम मैं ले सकता हूँ हर साहित्य की दुनिया के भी, अपनी से पहले की पीढ़ी की, और उन्हीं से मिला उसकी बात आज भी करता हूँ। असल में उन चीज़ों में जाते ही हम उलझ से जाते हैं एवरेज निकालने में, और मैं मानने लगा वो नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार इससे घटना याद आ गई, सुना देता हूँ, बड़ी सुंदर है वो। तो हमारे मित्र देवेंद्र राज अंकुर, जो आप जानते हो कि कहानी का रंगमंच वाले,
1: बिल्कुल,
0: और एक बड़े रंगकर्मी, तो एक दिन किसी पत्रकार ने उनसे कहीं पर पूछा कि आपको नहीं लगता कि नाटक के दर्शक कम हो रहे हैं, तो उन्होंने छूटते ही कहा कि ये सवाल आप कहाँ के लिए कर रहे हो, तो मराठी के लिए कर रहे हो, बम्बई के लिए कर रहे हो, कि कलकत्ता के लिए कर रहे हो, तो कितनी सुंदर बात है उन्होंने कही।
1: बिल्कुल,
0: कि आप एवरेज निकाल कर फिर आप फंस जाते हो, आपके मुझसे अरे आप कहाँ देखने वाले हैं, आपके क्षेत्र में नहीं, इसका मतलब तो नहीं कि नहीं है। तो दुनिया हम लोगों की सचमुच इस कारण ही बड़ी हुई कि हमने उसको माना ही नहीं, चारों तरफ निगाहें रहीं, और फिर मौके भी ऐसे मिले। अब रंग प्रसंग निकाला तो मैंने देश भर की यात्रा की थी, और बजाज भाई से कहा था कि मुझे भेजिए अलग अलग शहरों में, तभी तो मैं जानूंगा वहाँ के कौन लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं। अभी तो उनको मैं नाम से जानता हूँ, तभी तो मेरी भेंट हुई, तभी तो मैं गया, इम्फाल गया, रतन थियाम जी से जो अंत में फिर दोस्ती में बदल गई, और हमारे वामन केंद्रे जी महाराष्ट्र के, कावलम लनान पढ़कर केरल के, ये कैसे हुआ? ये इसलिए होता है कि आप ये नहीं सब मानते कि अरे लोग कम है, नई पीढ़ी ऐसी है, पुरानी पीढ़ी ऐसी है, आप देखो
1: कुल मिलाकर इसमें ना उलझे।
0: हाँ, मैं इस पर बिल्कुल मत उलझिए, आप देखिए, आप खुद पूछिए। पत्रकार तो आजकल पत्रकारों से खास तौर पर कहता हूँ कि भाई ऐसा क्यों करते रहते हो, और हम लोगों ने हमारे ज़माने में चूंकि हमने ऐसा नहीं किया तो हमको बहुत लाभ मिला। हम सोचते थे, हम जोड़ते थे इससे उससे, अपने आप ही जुड़ते थे लोग। अच्छा असम के कवि कौन है? मैं मालिक गुवाहाटी जाता था, 7 बार गया हूँ, तो मैं क्या करता था? अच्छा वहाँ नीलम कुमार है, वहाँ तुलसी है, वहाँ ये है, फिर उनसे मिलता भी था। दुनिया मेरी बड़ी हुई ना, काफ़ी बड़ी हुई।
1: बिल्कुल,
0: मैं पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों के लेखकों के नाम गिना सकता हूँ, विभिन्न पीढ़ियों के। वो कैसे हुआ? वो फिर आपकी इच्छा से होता है। अब इच्छा ही ना हो, आप मानकर बैठ जाओ कि कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा।
1: प्रयाग जी, जानना चाहेंगे आपसे, हमने देखा कि आपको जो सानिध्य मिला है, बड़े बड़े शिखर पुरुषों का मिला है, चाहे अज्ञेय जी हों, नागर जी हों, और निराला जी जैसे लोग हों, तो इनके,
0: निराला से भी एक बार तो भेंट है।
1: जी जी जी, जी आपने जिक्र किया था एक बार, तो इनके सानिध्य से कोई एक ऐसी अनूठी बात जो आपको जानने को मिली हो और आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें।
0: नहीं, देखिए बहुत सारी बातें जानने को मिली हैं, और आप जानते हो स्वामीनाथन जी के साथ तो मेरा संबंध कितना गहरा था।
1: बिल्कुल,
0: उनकी जीवनी लिखी है स्वामीनाथन, एक जीवनी, और अभी एक बड़ी किताब बनाई है धूमिल गैलरी के सहयोग से, द एरा ऑफ जगदीश स्वामीनाथन
1: जी,
0: वो अंग्रेजी में है और बड़ी किताब है, मतलब वो तो सचमुच वजन के हिसाब से भी बड़ी है। उस किताब का वजन ही है 3 किलो 900 ग्राम।
1: स्वामी बहुत सामग्री है उसमें,
0: सामग्री तो है ही उसमें। स्वामी के साथ जो मेरा समय बीता, क्या क्या नहीं मिला, अभी एक का साझा कर लेता हूँ
1: जी। बिल्कुल,
0: तो स्वामी से मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया था, हम उनको स्वामी कहते थे, तो मैंने उनसे एक सवाल ये किया था कि कला और प्रकृति का संबंध आप क्या मानते हो, बहुत गहरा सवाल है। उसका जो उन्होंने उत्तर दिया, उसने मुझे कला को परखने और उसके महत्व को समझने में बहुत मदद पहुंचाई।
1: अच्छा,
0: उन्होंने कहा कि एक रूपक गढ़ा उन्होंने, कि प्रकृति कला के आईने के सामने वाली ये खड़ी है, मतलब वो स्त्री है और उसमें उसके सामने कौन है, उसके सामने

0: किया
1: कला
0: है,
1: बिल्कुल।
0: तो उसको अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा। कितनी गहरी बात
1: बिल्कुल
0: उन्होंने कही,
1: बिल्कुल।
0: कितने सरल तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बन रहा है चित्र में, मूर्ति शिल्प में, वो प्रकृति से प्रेरित होते हुए भी ठीक वैसा नहीं है।
1: वैसा नहीं है, बिल्कुल।
0: तो उसकी मौलिकता, उसका महत्व, कि अगर ये सृष्टि किसी की रचना है तो फिर जो कलाकार की रचना है उससे भिन्न है।
1: बिल्कुल।
0: और दूसरा सवाल उनसे किया था इतना ही गहरा कि मनुष्य और कला का संबंध आप क्या मानते हो, उसका भी इतना सुंदर जवाब उन्होंने दिया था। संबोधन शब्द पर जो आप टिका है, उन्होंने कहा मैं पेड़ पहाड़ चिड़िया बनाता हूँ, पर पेड़ पहाड़ चिड़िया मेरा काम देखने नहीं आएंगे, आएगा मनुष्य ही।
1: क्या बात है,
0: अब मनुष्य, अब देखिए, फिर
1: बिल्कुल
0: उन्होंने ये उसने
1: बिल्कुल।
0: जोड़ा कि मैं मनुष्य को संबोधित हूँ, वही देखने, ना केवल देखने नहीं आएगा, मैं संबोधित भी उसी को हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि और कौन देखेगा। तो मनुष्य और एक जानी हुई बात को की जो गहराई हो सकती है, उससे उन्होंने मेरा परिचय करा दिया ये
1: जी
0: कह
1: बिल्कुल
0: करके।
1: बिल्कुल। ये जानना है आपसे कि हमारे युवाओं के लिए, अभी हमने बहुत बातें की अपने युवाओं पे, और कई युवा जो हैं ये जानना चाहते हैं, बहुत बड़ा आपका अनुभव रहा है जीवन का, कला का, संस्कृति का, तो जैसे युवा अपनी भाषा में पूछते हैं कि व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
0: लाइफ इज विथ ऑल दिस विथ हार्ट्स, क्योंकि देखिए ये तो जिया भी है, जाना भी है और समझा भी है। दुनिया कितनी, दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा, मतलब मनुष्य उसमें रहने वाले, वो क्या करते हैं? जागते हैं सुबह, नाश्ता करते हैं और अपने काम पर जाते हैं, फिर खाते पीते हैं, कुछ पहनते हैं अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से। इसके आगे क्या है? अगर इस दुराव से बचना है, और दुराव का तो कोई आनंद होता नहीं है,
1: बिल्कुल
0: तो वो सीधी सरल बात है कि फिर वो कहाँ से मिलेगा आपको? वो मिलेगा केवल कलाओं से।
1: जी,
0: और इसकी बड़ी अच्छी समझ तो लोक में भी रही है, नहीं
1: बिल्कुल।
0: तो लोक कलाएं कैसे बनी? एक फिल्म को छोड़कर हर विधा की एक परंपरा है लोक में, और आधुनिक काल में जो बनी वो तो बनी ही, वो तो मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है,
1: जी
0: वो तो भीम बैठका के गुफा चित्रों से शुरू हो जाती है। तो ये बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है, वो बात समझ में आ गई, गहराई से मन में बैठ गई, वैसा जीवन जिया, वैसा जी रहा हूँ, इससे बड़ा आनंद मेरे लिए क्या हो सकता है।
1: कार्यक्रम के अंत में कोई एक रचना जो आपकी प्रतिनिधि रचना हो, जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें।
0: प्रतिनिधि तो नहीं, पर जो छोटी सी है, क्योंकि
1: जी
0: और जो याद भी रहती है वो आपको सुना देता हूँ।
1: जी
0: तुम घटाना मत अपना प्रेम, तब भी नहीं जब लोग करने लगे उसका हिसाब, ठगे हुए पाओ अपने को अकेला एक दिन, तब भी नहीं मत घटाना अपना प्रेम, नहीं तो बंद कर देगी बोलना तुमसे चिड़िया, या मुंह फेर लेगा आसमान, नहीं तुम घटाना मत अपना प्रेम।
1: क्या बात है,
0: धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता से आपने इस बातचीत का समापन किया, और आज के परिदृश्य में ये कविता बहुत ज़्यादा प्रासंगिक मालूम होती है। प्रयाग शुक्ल जी, आप आकाशवाणी स्टूडियोज़ आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी और इतनी अच्छी बातचीत हमारे श्रोताओं के साथ की, एक तरीके से मार्गदर्शन हमारे युवाओं को, हमारे श्रोताओं को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद, क्योंकि ये इस पर भी निर्भर करता है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है, कौन कर रहा है और किस तरह कर रहा है। तो आपका बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्द सागर, आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: नमस्कार,

0: मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं पंचतंत्र का भाग 13।

0: श्रोतागण को मेरा प्रणाम। पिछली कड़ी में आपने पंचतंत्र का पांचवां प्रकरण अपरीक्षित कारक सुनना प्रारंभ किया, जिसमें चार युवक धन की लालसा में हिमालय की ओर गए। एक को तांबे की खान मिली, दूसरे को चांदी और तीसरे को सोने की खान। चौथे ने सोचा आगे अवश्य ही रत्नों की खान मिलेगी। उस लालच में वो आगे बढ़ गया और तीक्ष्ण धार वाले चक्र को सिर पर धारण कर रक्त रंजित हो गया। स्वर्ण प्राप्त करने वाला मित्र उसे खोजता हुआ वहां पहुंचा और उसकी ये दशा देखकर उसको मूर्खता के लिए कोसा। उसने चक्रधर को मूर्ख युवकों की कथा सुनाई।
1: मित्र चक्रधर सुनो।
2: कहो मित्र।
1: किसी नगर में चार युवक रहते थे। उनकी आपस में बड़ी मित्रता थी।
2: अच्छा।
1: बाल्यकाल में वे विद्या अध्ययन के लिए कान्य कुब्ज देश चले गए। एकाग्र चित्त होकर 12 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद चारों मित्र उद्भट विद्वान हो गए। एक दिन चारों ने परामर्श किया।
2: क्या?
3: मित्रों, आज हमें गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते हुए 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं।
4: हाँ, हम सभी विद्याओं में निपुण हो चुके हैं। गुरु की आज्ञा लेकर अब हमें चलना चाहिए।
5: आप सच ही कह रहे हैं, परंतु हमें अभी घर नहीं जाना चाहिए। अभी तो हम अन्य देशों में पर्यटन करके सभी प्रकार का आनंद लें। इन 12 वर्षों में हमने विद्या ग्रहण के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं किया।

0: ठीक है, यदि ऐसा ही आप सबका विचार है तो मैं भी सहमत हूँ, परंतु चलने से पहले हमें गुरुदेव की आज्ञा लेनी चाहिए।
1: अवश्य अवश्य अवश्य।

0: गुरुदेव से आज्ञा लेकर चारों पूर्व दिशा की ओर चल पड़े।
1: अच्छा,
0: कुछ दूर जाने के पश्चात मार्ग को दो तरफ जाते हुए देखा। अब किस मार्ग पर चलना चाहिए ये निर्णय करने के लिए वे एक स्थान पर बैठ गए। अब एक युवक ने ग्रंथ निकाला और देखना आरंभ किया।
1: अच्छा,
2: किस मार्ग पर चला जाए? यहां तो दो रास्ते हैं।
3: वो देखो मित्र, किसी वणिक की शव यात्रा जा रही है।
4: ये देखो,
3: क्या
4: ग्रंथ में लिखा है, महाजन जिस मार्ग से जाए अन्य व्यक्तियों को भी उसी मार्ग से चलना चाहिए।
3: अच्छा,
0: चारों मित्र शव यात्रा में शामिल होकर उसी मार्ग से चल दिए। अब देखो चक्रधर, महाजन का अर्थ महान लोगों से था, न कि महाजन यानी वणिक। पर उन युवकों को समझ आए तब ना। उधर श्मशान पहुंचकर उन लोगों ने एक गधे को देखा। तुरंत ग्रंथ निकाला गया।
1: अच्छा,
5: मित्रों तनिक ध्यान दें।
6: इसमें लिखा है, उत्सव के समय दुख में दुर्भिक्ष पड़ने पर, शत्रुओं से घिर जाने पर, राजसभा तथा शमशान में जो मिले वह स्वजन है।
3: मित्रों, अर्थात ये गर्धव हमारा स्वजन है, तो इसे तो हमें गले लगाना चाहिए। आओ मित्रों, गले लगाओ इसे। बड़ा अच्छा लग रहा है।
2: भद्रगण, हम अपने स्वजन को लेकर यहाँ व्यस्त हैं, परंतु दक्षिण दिशा से तीव्र गति से आने वाला वह कौन है, जरा देखो तो।
4: मित्र, ये तो ऊंट है।
3: अच्छा,
4: ये तो अत्यंत तेज गति से चलता है।
3: मित्रों, चिंता ना करो, चिंता ना करो। हमने ग्रंथ खोल लिया है।
4: अच्छा,
3: अब देखो, इसमें लिखा है, धर्म की गति तीव्र होती है। हो ना हो, ये अवश्य ही धर्म है।
4: धर्म है।
5: क्या ये धर्म है?
3: हाँ।
5: तब तो हमें अपने स्वजनों को धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए।
2: बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है। आइए मित्रों, इस गर्दभ को ऊंट के गले में बांध देते हैं।
3: चलो मित्रों,
2: चलो चलो चलो।

0: ये सूचना तब तक किसी ने गधे के मालिक को दे दी थी। लाठी लेकर उसको आता देख चारों युवक भाग खड़े हुए।
1: अरे भागो, अरे देखो वो लाठी ले गया, भागो, मालिक आ गया, मालिक आ गया, भागो, भागो, भागो, भागो, जान बचा ली, भागो,
0: भागते भागते वे एक नदी के तट पर पहुंचे।
2: अच्छा, फिर क्या हुआ?
3: थोड़ा यहाँ नदी के तट पे विश्राम कर लेते हैं।
4: विश्राम करते हैं।
1: अरे वाह, कितनी स्वच्छ नदी है। चलो इसमें हम स्नान कर रहे हैं।
4: चलो,
3: परंतु मित्र ठहरो, इस नदी की गहराई का तो हमें अनुमान ही नहीं है। कहीं कुछ हो गया तो
4: ठीक है, बिना जाने स्नान करना

0: ठीक नहीं है।
1: परंतु मित्र, आपने कदाचित देखा ही नहीं, वो देखिए, एक पलाश का पत्र बह रहा है। डूबने पर पत्ता हमें पार उतार देगा, ऐसा ग्रंथ में लिखा है।
2: अच्छा?
1: हाँ, अब मैं तो चला स्नान करने।

0: बचाओ बचाओ।
1: अरे अरे मित्र, ये तो डूब रहा है।
2: अरे
1: अरे वो महाराज का पत्र तो पता नहीं कहाँ डूब गया।
2: अरे
1: ओ, ये तो डूब रहा है, बचाओ भाई, मित्र से बचाओ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता।
2: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी आया।
1: कोई तो बचाओ उसे।
2: अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ। अरे कुछ तो प्रयत्न करो भाई। अरे अरे ये तो तुम्हारी चोटी हाथ में आ गई, अब क्या करूं? अब
3: चिंता ना करो, चिंता ना करो, मैंने ग्रंथ खोल लिया है।
1: पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो।
3: इसमें लिखा है, सर्वनाश होने की स्थिति में चतुर्जन विनष्ट होने वाली वस्तु का आधा भाग छोड़ देते हैं।
1: अच्छा।
3: और आधे से ही संतुष्टि कर लेते हैं, क्योंकि सर्वनाश दुसह होता है।
2: ऐसा लिखा है?
3: हाँ हाँ, यही लिखा है।
2: तो मैं इसका मस्तक काट लेता हूँ, आधे शरीर का मुंह छोड़ देता हूँ।
0: नहीं, नहीं, नहीं।

0: कुछ दूर जाकर शेष तीनों मित्र एक गांव में पहुंचे। ग्रामवासियों ने उन्हें अलग अलग घरों में निमंत्रित किया। पहले ने भोजन में घी चीनी से बनी सेवई को दीर्घ सूत्र विनाशकारी कहकर छोड़ दिया। दूसरे ने रोटी को अधिक विस्तृत वस्तु चिरस्थाई नहीं होती ये कहकर, और तीसरे ने वृत्ताकार बड़े को सदोष और आपत्ति कारक कहकर छोड़ दिया। तीनों ही भूखे रह गए, लोगों के उपहास के पात्र भी बने। हे चक्रधर, तुम लालच में आकर मूर्खता कर बैठे, इस कारण तुम्हारी ऐसी दशा हो गई।
1: नहीं भाई स्वर्ण सिद्ध, तुम्हारा कहना निरर्थक है, क्योंकि भाग्य की प्रतिकूलता से बुद्धिमान व्यक्ति भी कष्ट उठाते हैं, और भाग्य के साथ देने से एक मूर्ख व्यक्ति भी आनंद उठाता है। भाग्य द्वारा सुरक्षित वस्तु बिना किसी सुरक्षा के भी बची रहती है। हिंसक पशुओं के मध्य वन में अनाथ छोड़ा हुआ व्यक्ति भी जीवित रह जाता है, और प्रयत्न पूर्वक घर में सुरक्षित व्यक्ति भी जीवित नहीं रह पाता। स्वर्ण सिद्ध,
0: सुनो चक्रधर, सच्चे मित्रों की बात को अनसुनी करने वाला पछताता है। अर्थात अगर व्यक्ति स्वयं बुद्धिहीन है और मित्र का कहना भी नहीं मानता, तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करता है। अतएव मैं कहता हूं, जिसकी स्वयं बुद्धि नहीं होती, उसे मित्रों की सलाह पर विचार अवश्य करना चाहिए। वैसे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सभी लोग लोभ के वशीभूत होकर ऐसा करते हैं। मित्र, अब मुझे जाने की अनुमति दे दो, जिससे मैं घर जा सकूं।
1: भद्र, विपत्ति काल में सहयोग करने के लिए ही धन एवं मित्र का संचय किया जाता है, और तुम मुझे इस परिस्थिति में छोड़कर चले जाओगे। मित्र मित्र को छोड़कर निष्ठुरता पूर्वक जाने वाला नरक का भागी होता है, नरक का भागी।
0: हाँ चक्रधर, तुम ठीक कहते हो, यदि इस स्थान पर रहना संभव होता तो मैं अवश्य रह जाता, परंतु ये स्थान दूसरे के रहने योग्य नहीं है, और इस चक्र से छुड़ाने का सामर्थ्य भी किसी में नहीं है, और तुम्हारी अवस्था भी नहीं देखी जाती। कहीं मैं ही विपत्ति में न पड़ जाऊं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं बाबा, मैं तो

0: चलता हूँ, मैं तो चलता
1: हूँ। नहीं, नहीं, मैं सरसिद्ध, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ सरसिद्ध, मैं इस विपत्ति में अकेला नहीं रह सकता, मुझे छोड़कर मत जाओ सरसिद्ध।

और फिर ये कहकर स्वर्ण सिद्ध चला गया। चक्रधर किसी दूसरे लोभी की प्रतीक्षा में बैठा रह गया। सुधी श्रोताओं, यहीं पर पंचतंत्र का प्रकरण अपरीक्षित कारक समाप्त होता है। साथ साथ विष्णु शर्मा की प्रतिज्ञा रूपी पंचतंत्र भी पूर्ण हुआ। राजा अमरशक्ति के तीनों पुत्र अब मूर्ख नहीं थे, तीनों ही राजनीति के प्रकांड विद्वान बन चुके थे। आज 6 मास पूरे हुए। महाराज अमरशक्ति के लिए तो ये 6 मास 6 युगों की तरह बीते थे। सारी रात्रि आंखों में ही काटी थी उन्होंने। सूर्योदय होते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। मन में कई प्रश्न आ जा रहे थे।

0: हे कुल देवता, मैंने पंडित विष्णु शर्मा की बातों का विश्वास किया था। मेरे विश्वास की लाज रखना प्रभु, मेरे इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कौन होगा? हे ईश्वर, आज समय कटता क्यों नहीं?
1: महाराज, धैर्य का फल मीठा होता है, आप तनिक भी संदेह ना करें। पंडित विष्णु शर्मा आते ही होंगे, वो वचन के बहुत पक्के हैं।
2: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पंडित विष्णु शर्मा तीनों युवराज के साथ आए हैं और दर्शन की आज्ञा चाहते हैं।
0: अरे वाह, उन्हें अविलंब दरबार में ससम्मान लाएं।
3: महाराज की जय हो। सुप्रभात महाराज।
4: प्रणाम पिताश्री।
0: आयुष्मान भवा। स्वागत है आचार्यवर, आपके लिए ही हम चिंतित हो रहे थे।
3: नहीं महाराज, चिंता चिता समान होती है। ये एक ऐसा दीमक है जो अंदर ही अंदर खाया जाता है, और अब आपके ये तीनों पुत्र आपकी सारी चिंताएं ले लेंगे।
0: महामंत्री सुमति, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं।
4: नहीं पिता महाराज, कानों सुनी बातों पर विश्वास करना उचित नहीं। राजा को कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उसके पूरे तथ्यों पर विचार कर लेना आवश्यक है। चाहे तो आप हम तीनों की परीक्षा ले लें।
0: पुत्र, हम आपकी क्या परीक्षा लेंगे? ये आपके खाने खेलने के दिन है और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
5: खाने खेलने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है महाराज। हम तीनों भाई चाहते हैं आप अब किसी भी प्रकार से अपने को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं देंगे।
1: पुत्र बहुशक्ति, आप सब में बड़े हैं, आप हमें बताएं एक सच्चे मित्र के क्या लक्षण होते हैं।
5: सर्वप्रथम महामंत्री सुमति को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, एक सच्चा मित्र कभी भी झूठी प्रशंसा नहीं करता, हर सुख दुख में आपके साथ होता है, आपको सही राह दिखाता है।
0: अद्भुत।

0: मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
1: महाराज, अधिक प्रसन्नता दर्शाना भी राजा के लिए उचित नहीं है। ये वो पल होते हैं जिनकी प्रतीक्षा शत्रुगण करते हैं। राजा को सर्वदा अपने क्रोध और प्रसन्नता के साथ दुख को भी सीमित रूप से ही दर्शाना चाहिए। मेरे अधिक बोलने के अपराध को क्षमा करें पिता महाराज।
0: नहीं नहीं पुत्र, आप सबकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कानों में अमृत घोल दिया हो।
2: पिताश्री, गुरुदेव बहुत दूर से पैदल आए हैं, वह थक गए होंगे, उनके विश्राम का प्रबंध करना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं यह कार्य करूं, क्योंकि कहा जाता है कि अतिथि देवता का रूप होते हैं। अपने भोजन से आधा भाग अतिथि को देना पुण्य होता है। उनके पैर धोने से कन्या के लिए योग्य वर मिलता है। अतिथि नारायण का रूप है।
0: आपका कथन सर्वथा उचित है वत्स। हे आचार्यवर, मैं किस प्रकार आपका सम्मान करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। परंतु मैं भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूला हूं कि आपको 100 गांवों का आधिपत्य दूंगा। इसके अतिरिक्त मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं गुरुदेव?
3: नहीं महाराज, नहीं। मैं आपसे पूर्व में ही कह चुका हूं कि मुझे धन, भूमि इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन के इस संध्या काल में अब मेरी कोई कामना शेष नहीं है। महाराज, आपके पुत्रों का जो दायित्व मैंने लिया था मैंने पूर्ण किया। अब अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप मुझे देने वाले धन से अपने राज्य में एक शिक्षा संस्थान बनवाएं, जिसमें ऐसी शिक्षा दी जाए जो छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान से अधिक व्यावहारिक ज्ञान दे सके। आप चाहें तो मैं इस कार्य में आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं।
0: आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। महामंत्री सुमति, आज से ही आप इसकी तैयारी शुरू करवा दें और पूरे राज्य में घोषणा करवा दें कि आज मेरे पुत्रों के आने की खुशी में उत्सव मनाया जाए।
4: जो आ गया महाराज।

हमारी ये पंचतंत्र की यात्रा भी यहीं समाप्त होती है। आप सबका साथ बड़ा आनंददायी रहा, आशा है आप सबने भी आनंद लिया होगा। हमारी ओर से आप सबको सादर नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र का 13वां भाग। ये आकाशवाणी भोपाल है।

0: नमस्कार, मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सांध्यकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। 5 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है।

0: AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सांध्यकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है। 5 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश अमृत काल में आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार की विभिन्न पहलों का जिक्र किया है। क्वाड देशों ने आज नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गठबंधन के एजेंडे की प्रगति की समीक्षा की और हिंद प्रशांत से जुड़े क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 4 जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में हो रहा है। ये योगा की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है। दुनिया के 75 से अधिक देश इसमें भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। और IPL क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ मैं आपकी रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता आप सभी साथियों का कार्यक्रम युवाणी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इस तपती गर्मी में आप अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे और खूब ठंडे पेय पदार्थों का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे पर्यटन स्थल की सफाई और युवा दायित्व पर। इसी के साथ चर्चा होगी फिटनेस के महत्व पर। पर दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटे से किस्से से करते हैं। पिछले वीकेंड की ही बात है, कॉलेज के कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों के बीच उस मशहूर झरने पर जाएंगे। हफ्तों की प्लानिंग हुई, ट्रिप की प्लेलिस्ट बनी और ढेरों शानदार तस्वीरों के आइडियाज सोचे गए। जब वे वहाँ पहुँचे तो नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत था। हरी भरी वादियाँ और गिरते पानी की आवाज़। दोस्तों ने उत्साह में अपना कैमरा सेट किया, एक बेहतरीन फ्रेम बनाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन जब अपना वो वीडियो प्ले करके देखा तो जानते हैं बैकग्राउंड में क्या नज़र आया? पानी की साफ़ लहरों के बीच तैरता हुआ एक चिप्स का खाली पैकेट और ठीक उनके पीछे पत्थरों पर फंसी हुई प्लास्टिक की कुछ खाली बोतलें। उस एक पल में उस खूबसूरत जगह का सारा सुकून और उन दोस्तों का सारा उत्साह एकदम फीका पड़ गया। साथियों, यह सिर्फ उन दोस्तों की कहानी नहीं है, यह आज हम में से लगभग हर उस युवा की कहानी है जो अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी से कुछ पल चुरा कर प्रकृति के बीच सुकून ढूंढने जाते हैं। लेकिन वहाँ क्या मिलता है? हमारा ही छोड़ा हुआ कचरा। चलिए, इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वक्त है आज के इस कार्यक्रम के पहले गीत का।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत फिल्म ये जवानी है दीवानी से। स्वर थे मोहित चौहान के, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत निर्देशन था प्रीतम का। दोस्तों गीत से ठीक पहले हमने एक किस्से को साझा किया था, एक खूबसूरत झरने और वहाँ फैले हुए कचरे की दास्तां। दोस्तों हमारी ज़िंदगी असाइनमेंट्स, ऑफिस की डेडलाइंस, करियर की टेंशन्स और दिन भर मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन में कितनी व्यस्त हो गई है। इस भाग दौड़ में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। ऐसे में जब हम अपना बैग पैक करते हैं और किसी सफ़र पर निकलते हैं तो वो सिर्फ जगह बदलना नहीं होता, वो हमारे मन का रीसेट बटन होता है। हम पहाड़ों पर जाते हैं ताकि वो ठंडी हवा हमारे दिमाग की उलझनों को शांत कर सके। हम नदियों और झीलों के किनारे बैठते हैं, चाहे वो हमारी शहर की शांत झीलें हों, हरी भरी वादियाँ हों, सुकून भरा परिसर हो। वहाँ जाकर जो शांति मिलती है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और जब हम पुराने किलों और ऐतिहासिक जगहों पर जाते हैं तो वो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं होती, वो हमारी जड़ें हैं। वो हमें बताती हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमारा इतिहास कितना समृद्ध रहा है। दोस्तों पर्यटन सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, यह हमारे लिए एक थेरेपी है, या हमें प्रकृति से, अपनी संस्कृति से और सबसे बड़ी बात खुद से जोड़ती है। जब आप एक नई जगह पर अजनबी लोगों से मिलते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं, वहाँ की हवा में सांस लेते हैं तो आप एक बेहतर और सुलझे हुए इंसान बनकर लौटते हैं। लेकिन दोस्तों इस

इसी खूबसूरत सफर के दौरान कई बार हम सब से अनजाने में ही सही एक छोटी सी चूक हो जाती है। हम दोस्तों के साथ होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है और उसी उत्साह में कई बार हमारे हाथ से कोई खाली पैकेट या पानी की बॉटल वहीं छूट जाती है। हम इसे कोई भी कभी भी जानबूझकर अपनी प्रकृति या अपनी धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हम सब अपनी इन जगहों से बहुत प्यार करते हैं, बस उस खुशी के पल में हमारा ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि वो छोटी सी चीज़ वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। ज़रा सोचिए, वो वादियाँ, जो नदियाँ, जो ऐतिहासिक दीवारें बिना कुछ मांगे हमें इतना सुकून देती हैं, क्या वो बदले में हमसे थोड़ी सी देखभाल की उम्मीद नहीं करती? जब उसी खूबसूरत नज़ारे के बीच हमें कोई प्लास्टिक या कचरा नज़र आता है तो हम सबका मन थोड़ा उदास हो जाता है ना, क्योंकि वो जगह हमारी अपनी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, पर हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा क्योंकि गीत के बाद हम जानेंगे कि कैसे हम युवा पर्यटन स्थल को साफ रखने में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे थे राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में गीत जग घूमया फिल्म सुल्तान से। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत निर्देशन था विशाल शेखर का। दोस्तों हम युवा बहुत समझदार हैं, हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो दुनिया का कोई भी बदलाव ला सकती है। हम जो चीज़ अपना लेते हैं वो ट्रेंड बन जाती है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक नया और बेहद खूबसूरत ट्रेंड शुरू करें, जिम्मेदार पर्यटन यानी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का ट्रेंड। और इसके लिए हमें बहुत कुछ अलग या मुश्किल नहीं करना है, बस सफ़र के दौरान कुछ छोटी छोटी बातों को अपनाना है साथ मिलकर। पहला कदम, एक छोटा सा इको फ्रेंडली बैग। दोस्तों हम जब भी सफ़र पर निकलें तो अपने बैग में कपड़े या कागज़ का एक खाली बैग ज़रूर रखें। रास्ते में जो भी खाली रैपर या बोतल हो उसे हम वहाँ ना छोड़कर उस बैग में रख लें और डस्टबिन दिखने पर उसे वहाँ डाल दें। कितना आसान है ना। दूसरा कदम, लीव नो ट्रेस। यह प्रकृति का बहुत ही प्यारा नियम है। हम जहाँ भी जाएं वहाँ सिर्फ अपने पैरों के निशान और अपनी यादें, अच्छी प्यारी यादें छोड़कर आएं। हम सब ये कोशिश करें कि वो जगह हमारे आने से पहले जितनी खूबसूरत थी हमारे जाने के बाद भी वैसी ही रहे। तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सहयोग। दोस्तों कई बार हमारे आसपास कोई और पर्यटक अनजाने में कचरा छोड़ रहा होता है, ऐसे में एक सहयोगी के रूप में एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उनसे कहना है कि आइए इसे हम सब मिलकर साफ रखते हैं, आखिर ये जगह हमारी ही तो है। यकीन मानिए प्यार और अपनेपन से की गई यह छोटी सी पहल सामने वाले का दिल जीत लेगी। दोस्तों हमारी धरोहरें और हमारी प्रकृति हमारा परिवार है, आइए हम सब मिलकर ये वादा करें कि अपने इस परिवार की खूबसूरती को हम यूं ही सहेज कर रखेंगे, एक टीम की तरह, एक जिम्मेदार युवा की तरह। अभी तक हमने बात की हमारे आसपास के वातावरण, हमारी खूबसूरत धरोहर और प्रकृति को सहेजने की। हमने जाना कि कैसे हम सब मिलकर बाहर की दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन साथियों इन खूबसूरत वादियों का मज़ा हम तभी ले पाएंगे जब हमारा अपना शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा। तो आइए अब बात करते हैं हम सबकी ज़िंदगी के एक बहुत ही अहम विषय की, हमारी सेहत, हमारी फिटनेस की। ज़रा सोचिए, क्या आप सुबह उठते ही खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं? क्या आप दो मंजिल सीढ़ियों बिना सांस फूले चढ़ सकते हैं? क्या दिन भर काम या पढ़ाई करने के बाद भी आपके अंदर इतनी ऊर्जा बचती है कि आप शाम को अपने परिवार या दोस्तों के साथ हंस बोल सकें? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप फिट हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन उसकी वजह से स्क्रीन टाइम भी इतना अधिक बढ़ गया है कि वह हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, और साथ ही लगातार बैठे रहने और शारीरिक मेहनत कम होने का सीधा असर हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर भी पड़ रहा है। दोस्तों आज का युवा बहुत जल्दी तनाव, एंजाइटी और थकान का शिकार हो रहा है। हम बड़े बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन कई बार उन सपनों के लिए मेहनत करते करते अपने शरीर और अपने दिमाग को थका देते हैं। यहीं पर फिटनेस हमारा सबसे बड़ा हथियार है, इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए सुनते हैं आज का अगला गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत फिल्म संजू से। गीतकार थे शेखर अस्तित्व और संगीत निर्देशन था विक्रम का। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर और दिमाग का कितना गहरा कनेक्शन है? जब हम कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं, चाहे वो टहलना हो, दौड़ना हो या कोई खेल खेलना हो, तो हमारा दिमाग एंडोमॉर्फिन्स नाम की रसायन छोड़ता है और हम इन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। अगर आप किसी बात से बहुत परेशान हैं, पढ़ाई का बहुत प्रेशर है या दिन भर के काम से आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो आप बस 30 मिनट के लिए बाहर खुली हवा में तेज़ी से चलिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका सारा तनाव जैसे पसीने के साथ बह गया हो। आपका दिमाग पहले से कई ज़्यादा शांत और स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि फिटनेस सिर्फ हमारे शरीर की बीमारियों को ही नहीं बचाता, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी एक बहुत बड़ा सहारा देता है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक शांत और एकाग्र मन बसता है। जब शरीर में

चुस्ती होती है तो हमारे विचार भी सकारात्मक होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि समय कहाँ से निकालें। हम सब इतने व्यस्त हैं कि लगता है फिटनेस के लिए अलग से समय निकालना तो असंभव है। साथियों, यहीं पर हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। फिटनेस को एक टास्क या बोझ की तरह मत देखें, इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा बना लीजिए। हमें रोज़ 2 घंटे जिम में पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी कहता है कि दिन भर में बस 30 से 40 मिनट की सामान्य शारीरिक गतिविधि हमें स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी है। तो हम अपनी सामान्य दिनचर्या में इसे कैसे शामिल कर सकते हैं, आइए बहुत ही आसान और व्यवहारिक तरीकों पर बात करते हैं। दोस्तों, जब भी मौका मिले लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। यह एक बहुत ही बेहतरीन कार्डियो व्यायाम है जिसके लिए आपको कोई अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो कुर्सी पर बैठने की बजाय टहलते हुए बात करिए। पढ़ाई या काम के बीच में हर 1 घंटे के बाद उठें, शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच करें और पानी पीकर वापस बैठें। आप अपने पसंदीदा खेल को भी चुन सकते हैं क्योंकि फिटनेस मज़ेदार होनी चाहिए, सज़ा नहीं। आप अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर क्रिकेट, बैडमिंटन या फुटबॉल खेल सकते हैं। और अगर आपको स्विमिंग पसंद है या साइकिल चलाना अच्छा लगता है तो उसे भी अपने रूटीन में शामिल करें। प्रकृति के बीच 30 मिनट टहलकर ज़रूर आइए, यह आपके शरीर को ही नहीं आपके मन को भी प्रफुल्लित करेगा। अंत में हम फिटनेस के उन 2 पहलुओं पर बात करेंगे दोस्तों, जिनके बिना कोई भी फिटनेस रूटीन अधूरा है, हमारा आहार और हमारी नींद। आजकल जंक फूड और बाहर का खाना हमारी लाइफस्टाइल का एक बड़ा हिस्सा बन गया है ना। हम इसे पूरी तरह से छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम एक संतुलन तो बना ही सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आपके दिन का ज़्यादातर खाना घर का बना हुआ हो, सादा और पौष्टिक हो, ताज़े फल, सब्जियां, दालें और भरपूर मात्रा में पानी। बस यही असली फिटनेस का राज है। पानी हमारे शरीर के लिए एक जादुई तत्व है। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीने की आदत डालिए, आप खुद अपने शरीर और त्वचा में गजब का बदलाव देखेंगे। और सबसे आखिर में लेकिन सबसे ज़रूरी बात, पर्याप्त नींद। हम युवा अक्सर देर रात तक फ़ोन चलाते हैं या काम करते हैं और अपनी नींद से समझौता कर लेते हैं। दोस्तों, जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है। अगर आप 7 से 8 घंटे की अच्छी और गहरी नींद नहीं ले रहे हैं तो आप चाहे कितनी भी अच्छी डाइट ले लें और कितना भी व्यायाम कर लें, आपका शरीर हमेशा थका हुआ ही रहेगा। रात को सोने से कम आधे घंटे पहले अपनी स्क्रीन का प्रयोग रोक दें। दोस्तों, हम युवा इस देश का भविष्य है, हमें बहुत कुछ करना है, बहुत ऊँचाइयों को छूना है और यह तभी संभव है जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होंगे। तो चलिए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

200 वक्त हो चला है आज की रोजगार सूचना का। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजुएल द्वारा ग्रुप बी और सी के 12,256 रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। आवेदन 21 मई से प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून है। हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विदा लेती हूँ आपके रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन।
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
8: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
9: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
7: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
8: आकाशवाणी है ना,
10: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
8: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
7: शाम सुहानी हो,
8: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
7: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
8: सफर में
7: आपके साथ
8: आकाशवाणी।
11: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कलंक फिल्म का बहुत ही प्यारा सा नगमा। श्रेया घोषाल और वैशाली की आवाज़ में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और संगीत प्रीतम का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म प्रेम रतन धन पायो से। आवाज़ें हैं मोहम्मद इरफान की, दर्शन रॉयल और पलक मुछाल की। संगीत से सजाया है मीश रेशमिया ने और बोल हैं इरशाद कामिल के।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब हम आपको सुनवा रहे हैं विशाल शेखर के संगीत से सजा हुआ गीत बोल हैं इरशाद कामिल की। आवाज़ें नूरानी सिस्टर्स और विशाल ददलानी की हैं और फिल्म का नाम है सुल्तान। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शिवाय फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन में हमारी बहनों को 40 से ज्यादा ई साइकिलें वितरित की गई हैं। ये साइकिल इन बहनों के जीवन में बहुत मदद करेंगी, खासकर ई साइकिल जब आज पेट्रोल और डीजल की कठिनाई का दौर है तब ई साइकिल का अपना ही महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश अमृत काल में आगे बढ़ रहा है और उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार की पहलों का जिक्र किया है। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाली जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1,87,000 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये उपलब्धि लाखों ग्रामीण कारीगरों की कड़ी मेहनत के कारण संभव हुई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 4 जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। यह योगा की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है। दुनिया के 75 से अधिक देश इसमें भाग लेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: दंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम

0: शबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
3: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
3: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
2: जी।
3: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
3: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
2: जी
3: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
2: इस समय शहरों, गाँवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
3: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
2: जी
3: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
2: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
3: जी
2: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
3: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये

0: पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी,
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
1: जी,
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
0: जी,
1: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
1: जी,
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओह यस।
2: ऑल राइट, सो टेल मी, व्हाट डू यू सी इन अ जू?
3: टाइगर, लायन,
2: यस,
3: मंकी, बर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड,
2: वेरी नाइस,
3: कैमल, जिराफ एंड सो ऑन।
2: ओह वाओ। So, here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: Yes, we are going to the zoo.

0: And this was Kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
5: बिल्कुल ठीक है।
4: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: जय जेरापुर, जय भारत।
7: जय जेरापुर, जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह।
8: हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
9: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
8: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
9: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
10: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
4: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
10: जी।
4: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
10: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
4: बिल्कुल,
10: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
4: जी मंत्री जी।
10: जी महाराज।
8: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।

0: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
1: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह
2: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
2: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
2: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
2: जी,
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
2: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
3: जी,
2: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
4: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
5: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
6: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
4: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
1: बिल्कुल।
4: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
7: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
4: लेकिन जरा होशियारी से।
7: जो हुकुम सरकार।

0: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
1: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
2: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
3: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
2: देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
3: ये नामुमकिन है।
2: वाय,
3: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
2: तो नहीं मानोगे। देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
3: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
2: एक्चुअली यू आर अ फूल।
0: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
1: काला पानी की सजा?
0: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
1: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
3: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
1: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म का नाम शिकारी, आवाज लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, बोल फारूक कैसर की और संगीत GS कोहली का।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म मेरे महबूब का ये प्यारा सा गीत। शकील बदायूनी का लिखा एक गीत था और धुन बनाई थी नौशाद ने।

आपकी रेडियो सेट पर आ रहा है कारवां फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह ने इसे लिखा है और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सबसे पहले जिस गीत को हम सुनवाने जा रहे थे और नहीं सुनवा पाए, उसी गीत को हम फिर से लेकर आए हैं। फिल्म का नाम है शिकारी। लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ है, फारूक कैसर का लिखा हुआ ये गीत है और जीएस कोहली ने इसे संगीत से सजाया है। आइए सुने इस गीत को।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने

के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जनसांख्यिकी बदलाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय

0: अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जनसांख्यिकी बदलाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 6 महीनों के भीतर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जहां सीमा पार से आने वाले खतरे महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वहीं देश के भीतर ऐसे खतरों में मदद करने वाले आंतरिक तत्वों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समुद्री निगरानी को मजबूत करने और गतिविधियों की एक साझा तस्वीर तैयार करने की पहल पर सहमति जताई। डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा तथा फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है।
1: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविय ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविय ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। डॉक्टर मांडविय ने कहा कि योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी और अब इसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। IPL क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को सीधे फाइनल में प्रवेश मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता से दूसरा क्वालिफायर खेलना होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फिल्म संगीत का आनंद दीजिएगा 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम, जिसमें आप सुनेंगे कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम महफिल-ए-समा। रात्रि 10:00 हम प्रसारित करेंगे विशेष कार्यक्रम, प्रस्तुति क्षेत्रीय समाचार एकांश की होगी। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेगा पंडित उमाकांत गुंदेचा पंडित रमाकांत गुंदेचा का युगल ध्रुपद गायन, राग होगा यमन। 12:00 है हमारे कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:00 पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा होगा 8:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रागेश्वरी सोनी के गाए चंद गीत और भजन, समय रहेगा 9:15। 9:30 पर सुनेगा प्रदेश की सुर्खियों में कार्यक्रम क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति। 10:00 होगी जिले की चिट्ठी, बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला संसार 10:05 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेगा पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार वादन, राग होगा देवगिरी बिलावल, समय 10:30। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11:00 सुनेगा फोन इन कार्यक्रम, फोन करें कि सुने। दिन में 12:00 और 2:30 पर पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक सिसकियां का पहला भाग। दिन में 1:00 होगा महिला कार्यक्रम, 1:30 पर सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम और 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 5:33 पर, 6:30 पर और 8:15 पर। 6:00 होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम 9:30 पर हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। उपेक्षित, घनश्याम सिंह तोमर का लिखा यह नाटक आप सुनेगा कल 10:00, प्रस्तुत करता होंगे जितेंद्र स्वरूप राजन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनेगा पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग रागेश्री, समय रहेगा 10:30। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय रहेगा किसानों के लिए लाभकारी कस्टम हायरिंग। जानकारी देंगे डॉक्टर अनुराग पटेल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे, 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में मां शिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। त्रिशा शर्मा मौत के मामले में सीबीआई का एक्शन, पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में FIR दर्ज। और पन्ना में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धसकने से 5 मजदूरों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण का एक लेख सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस लेख में उपराष्ट्रपति ने सरकार की उन योजनाओं का जिक्र किया जिनसे महिलाओं, युवाओं और किसानों को सीधा फायदा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि देश अभी अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है और यह लेख इसी सफर को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद, तिरुवल्लुवर और सुब्रमण्यम भारती से प्रेरणा लेने की बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची, जहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन उन्होंने महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन किया। कल वे नाथुला दर्रे की यात्रा करेंगी और सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इसके साथ ही सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का समापन किया। उन्होंने रामघाट पर मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित कर परिक्रमा का विधिवत समापन किया।
1: जल संरक्षण को लेकर हमारे सरकार लगातार काम कर रही है और ये तीसरा साल, इस साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो हमने काम चालू किया, लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा के लागत के 2 लाख से ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम, जिसमें कुएं, बावड़ी, नदी, नहर, तालाब, पोखर, झरने, नदी के उद्गम, हर स्थान पर जल संरक्षण को लेकर के सरकार काम कर रही। सभी राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है।
0: ये परिक्रमा कल गंगा दशहरा के अवसर पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव द्वारा पूजन के साथ शुरू हुई थी। ये परिक्रमा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 23 वर्ष पहले मां शिप्रा के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की थी। पन्ना जिले के अजयगढ़ ब्लॉक के बिहरपुरवा गांव में मनरेगा के तहत बन रहे सिंचाई कुएं की मिट्टी धसक गई। इसमें दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। कलेक्टर उषा परमार और SP निवेदिता नायडू ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। सांसद VD शर्मा और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में BSF की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि बल ने सीमा की रक्षा के साथ साथ सीमावर्ती लोगों का हौसला भी बुलंद रखा। श्री शाह ने BSF, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलाकर 4-स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया ताकि सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाया जा सके।
3: BSF के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा उसकी भी बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहते। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था BSF ने, वो न केवल डटकर रहे सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी BSF ने बहुत बड़ा योगदान किया।
0: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शराब दुकानों पर सख्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को आबकारी नियमों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश भर में अवैध अहाते, देर रात तक शराब बिक्री और ओवर रेटिंग जैसी शिकायतों पर विशेष अभियान चलेगा, जिसके तहत पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें रात को गश्त करेंगी और नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। इसके साथ ही हर दुकान पर शराब के दाम दिखाना और QR कोड लगाना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने भोपाल पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। एजेंसी ने मृतका के पति समर सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरवाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। कल रात टीम ने दोनों आरोपियों से ढाई घंटे तक पूछताछ की और घटनास्थल का मुआयना भी किया। जबलपुर के बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच आज से शुरू हो गई है। इस हादसे में 13 पर्यटकों की जान गई थी और 28 लोगों को बचाया गया था। रिटायर्ड जज जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जब क्रूज को पहले ही नष्ट कर दिया गया है तो उसकी तकनीक जाँच अब कैसे होगी। यह भी सामने आया कि क्रूज में एनजीटी के नियमों के खिलाफ कमजोर इंजन लगा था और संचालकों के पास पर्यावरणीय अनुमति भी नहीं थी। आयोग ने सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। देवास जिले के टोंक खुर्द में 14 मई को पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था। इस हादसे की न्यायिक जांच के लिए भी सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुभाष काकड़े की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया है। आयोग विस्फोट के कारण लापरवाही और जिम्मेदारी तय करेगा। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और राहत बचाव की प्रभावशीलता की भी जाँच होगी। एक महीने के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। प्रदेश सरकार ने नागरिकों के लिए एमपी लॉकर ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज एक जगह डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा देती है। इस ऐप पर विवाह प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस, संपत्ति कर रसीद समेत 22 से ज़्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि एआई की मदद से यह एप्लीकेशन खुद ब खुद दस्तावेजों को पहचान लेता है और किसी भी लाइसेंस की मियाद खत्म होने से पहले ही अलर्ट भी भेजता है। भोपाल में दाऊदी बोहरा समाज ने आज बकरीद का त्यौहार पूरे जोश और अकीदत के साथ मनाया। सुबह से ही अलीगंज हैदरी मस्जिद समेत शहर की तमाम बोहरा मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सफ़ेद पारंपरिक लिबास में सजे समाज के लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। अब बात करते हैं मौसम की। नौतपा के दूसरे दिन प्रदेश में गर्मी का कहर जारी रहा। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। खजुराहो और नौगांव में पारा लगातार 45 डिग्री के पार बना हुआ है। भोपाल, ग्वालियर समेत 45 जिले हीट वेव की चपेट में हैं। अच्छी खबर यह है कि 28 मई को प्री मानसून की दस्तक के संकेत मिले हैं और 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अब एक विशेष सूचना। आज 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो गए हैं। इन 12 वर्षों का लेखा जोखा और देश की बदलती तस्वीर पर वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह और सुरेश शर्मा से खास बातचीत सुनिए आज रात 10 बजे सिर्फ आकाशवाणी भोपाल पर। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गंगा दशहरा के अवसर पर नर्मदापुरम जिले के विवेकानंद घाट पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने श्रमदान किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंडला में आज पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अशोकनगर शहरी परियोजना के सेक्टर 3 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर ईसीसीई दिवस का सफल आयोजन किया गया। खंडवा जिले में यातायात पुलिस के द्वारा परिवहन बसों की विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 138 वाहनों की जाँच की गई और धार में 1 जून को रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे। 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में मां क्षिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई का एक्शन। पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में एफआईआर दर्ज। और पन्ना में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धसकने से 5 मजदूरों की मौत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनवे बारे हमारे सभी भैयन खो और सभी बहनन खो आपकी अपनी पूनम बहन की प्रेम भरी ने भरी राम राम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जने खूब नौने हुओ और देखो कहा है कि कल से नौतपा शुरू हो गए हैं, माने अब तो जो कही जा सकत है कि गर्मी अपने चरम पे पहुंच गई है। सो हम तो जो ही कहबो चाहत हैं कि दिन भर पर्याप्त पानी पीवें, शरीर को ठंडो रखवें, दोपहर के समय लंबे समय तक धूप में ना निकलवें, घर ही में रहवें, हल्के वजन के और रंग के सूती कपड़ा पहनवें, पानी और ठंडे पेय पदार्थन को लगातार सेवन करते रहें और संगे संगे गला सूख पे तो मटका को पानी पीवे, फ्रिज को पानी पीवे से सोई बचने हैं। सो जो तो हती अपनी बातचीत अपन और भी करें, लेकिन सबसे पहले अपन सुन लेते हैं जो कहरवा हरचरण सिंह नरवरिया और संगी साथियों को गाओ भाव।

0: ग्राम सभा में अब बेरा हो चली है बुंदी इस समाचारन की।
1: बुंदेली समाचार।
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली में समाचार। सबसे पहले बात करत है पीएम मोदी के 12 साल पूरे होवे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 साल पूरे हो गए। 26 मई 2014 में उन्हें देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लई हती। ई मौका पे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कही है कि बीते 12 सालन में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित करे हैं। ई मौका पे पीएम मोदी ने संस्कृत को श्लोक भी शेयर करो है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे सुभाषितम के तहत संदेश साझा करत भय कही है कि सच

0: ज्ञान देश समाज और पूरी मानवता के कल्याण को रास्ता खोलत है। उनने संस्कृत श्लोक की पोस्ट भी करी है, जिसको मतलब है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध और स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन अज्ञान के कारण वो मलिन दिखन लगत है, ज्ञान से फिर से अपने असली रूप में आ जात है। और अब बात करत है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सिक्किम यात्रा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरा पर सिक्किम पहुंची। इधर राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनको स्वागत करो। कल वे नाथुला दर्रा की यात्रा के संगे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत सोई करेंगी। और अब बात करते हैं पीएम मोदी पर लिखी भई शिवराज सिंह चौहान की किताब की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी किताब अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव को आज दिल्ली में विमोचन भव पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने जो किताब को लोकार्पित करो है। इस मौका पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री सोई मौजूद रहे। अब बात कर लेते हैं MP में बकरीद की छुट्टी की। प्रदेश सरकार ने ईद उल जुहा मने बकरीद की छुट्टी को सरकारी अवकाश 27 मई की जगह 28 मई कर दो है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जो आदेश जारी करो है, ई के बाद अब 27 मई को सभी सरकारी दफ्तर और बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। और अब बात करते हैं जनगणना की। प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण को काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और 25 मई तक 2,39,00,000 से ज्यादा मकान की गणना पूरी हो चुकी है। 1 मई से शुरू हो जो काम 30 मई तक पूरा कर लो जाए है। नोडल अधिकारी शिल्पा गुप्ता ने बताई है कि ई बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। प्रगणक घर घर जाके HLO ऐप के जरिए जानकारी दर्ज कर रहे हैं। और अब बात करते हैं आयुष मंत्री प्रताप जाधव की खजुराहो यात्रा की। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत आयुष मंत्रालय पूरे देश में 100 दिनन की काउंटडाउन सीरीज चला रहा है। ई के तहत 25वें कार्यक्रम की मेजबानी खजुराहो कर रहा है। ई के सिलसिला में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप जाधव आज खजुराहो पहुंचे, जिते एयरपोर्ट पर सांसद विष्णुदत्त शर्मा और विधायक अरविंद पटेरिया ने उनको स्वागत करो। और अब बात करते हैं दाऊदी बोहरा समाज की मनाई गई बकरीद की। भोपाल में दाऊदी बोहरा समाज ने आज बकरीद को पर्व पूरे धार्मिक उत्साह और सादगी के संगे मनाओ। भोर से ही अलीगंज हैदरी मस्जिद के पास तमाम बोहरा मस्जिदन में नमाजियन ने नमाज अदा करी। संगे संगे खूबई भीड़ उमड़ पड़ी, जिते पारंपरिक सफेद लिबास में सजे लोगन ने विशेष नमाज अदा करके देश में अमन खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। और अब बात कर लेते हैं पन्ना हादसा की। पन्ना जिला के अजयगढ़ ब्लॉक के बिहरपुरबा गांव में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जिते मनरेगा योजना के तहत बन रहे एक सार्वजनिक सिंचाई कुआ की मिट्टी धसकवे से 5 मजदूरन की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर और SP तुरंत मौके पर पहुंचे, उन्हें बचाव कार्य को जायजा लो। इसके संबंध में SDM मधुवंत राव ध्रुवे ने बताई है कि घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। उन्हें बताई है कि सभी मृतक मजदूरन के परिवारन की संभल योजना के तहत 4,00,000 रुपया की राशि प्रदान करी जाए है। ई बी क्षेत्रीय सांसद VD शर्मा और पन्ना विधायक ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह ने हादसा पर दुख व्यक्त करत भय कही है कि मृतकन के पीड़ित परिवारन को हर संभव मदद करी जाए है। और चलत चलत बात कर लेते हैं मौसम की। ई बार नौतपा शुरू होते ही प्रदेश में गर्मी ने सबरे के सबरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छतरपुर के खजुराहो में पारा 47.2 डिग्री तक पहुंच गया है और अभी तक को सबसे ज्यादा तापमान है। उतर ही नौगांव में 46.8 डिग्री तापमान दर्ज करा गया है। प्रदेश के 45 जिलों में हीट वेव की चपेट में है और मौसम विभाग ने निवाड़ी टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी कर दो है। और अच्छी खबर जो है कि 28 मई से प्री मानसून की दस्तक हो सकत है और 14 जिलों में गरज चमक के संगे बसकारों के आसार सोई हैं। ई के संगे बुंदेली समाचार समाप्त है।
1: बुंदेली समाचार।
0: भैया बहनाहरों बातें अपन और भी करें, लेकिन पहले सुन लेते हैं जो कहरवा चित्रा देवी तिवारी को गाओ भाव।

किसान भैया बहना हरों, अपन अपने खेत में रासायनिक कीट प्रबंधन की बजाय जैविक कीट प्रबंधन अपना सकत हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल खेती की बहुविधि है। जी में हानिकारक कीटन को नष्ट करने के लाने रासायनिक दवाओं की बजाय प्राकृतिक जीवों जैसे उनके परभक्षियों, शिकारियों, परजीवियों और जैविक कीटनाशकन को उपयोग करो जात है, जो फसल और पर्यावरण को सुरक्षित रखने को एक बेहतरीन तरीका है। इमें कई तकनीकें आत हैं। पहला बात कर लेते हैं प्राकृतिक परजीवी मित्र कीटन के संबंध में। जो खेतन में कीटों और पक्षियों को आकर्षित करवो जैविक प्रबंधन को मुख्य आधार है। मैंने लेडी बर्ड, बीटल और ऊकी इल्लियाँ एफिड जैसे चूसे वाले कीटन को खा के नष्ट कर देते हैं। परजीवी जैसे के ट्राइकोगामा जैसे सूक्ष्म परजीवी ततैया को उपयोग बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। जे कीट हानिकारक इलियन के अंडन को खा लेते हैं, जिसे हानिकारक कीटन को जीवन चक्र उतें के उतें समाप्त हो जाते हैं। कीटनाशक मैंने नीम आधारित उत्पादों में नीम को तेल, जीवाणु आधारित कीटनाशक जैसे बैसिलस

0: या बीटी इल्लियों और सुंडियों के नियंत्रण के लाने प्रभावी होते हैं। फेरोमोन ट्रैप भी कारगर साबित होते हैं। इनमें विशेष ट्रैप्स नर की टनखों आकर्षित करत हैं। ई के लाने जैविक कीट प्रबंधन के कई सारे लाभ भी होते हैं, जिनमें रसायनों का उपयोग न हो वैसे मिट्टी जल और ई के उत्पाद जहरीले नहीं होते हैं। मने पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा मिलत है और घर पे बने जैविक कीटनाशकन के प्रयोग करवे से खेती की लागत सोई कम हो जाते हैं। भूमि में प्राकृतिक मित्र जीवन की संख्या बढ़त है और जैविक कार्बन सोई बढ़त है। जो तो होती जानकारी, और आज हम आपके लाने एक और बहुत ही बढ़िया जानकारी लेके आए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर मने एक ऐसी सरकारी और निजी पहल है जिसके तहत छोटे छोटे सीमांत किसानों को खेती के लाने महंगे कृषि उपकरण और मशीनें किराए पर उपलब्ध कराई जाती हैं। योजना किसानों के लाने बहुत ही लाभकारी साबित हो रही है। कैसे के इसे बिना भारी निवेश के आधुनिक तकनीक को लाभ उठाओ जा सकता है और हमारे किसान बहन भैया इको लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके संबंध में अपन और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुन लेते हैं जो भेंट वार्ता किसानों के लिए लाभकारी कस्टम हायरिंग विशेषज्ञ है डॉक्टर अनुराग पटेल, और इनसे बातचीत करिए है अमृता जैन बहन ने।
1: भाइयों बहनों, आज हम चर्चा का ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हमारे सभी कृषक भाई बहनों के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है, क्योंकि भाइयों बहनों आज हम देख रहे हैं आधुनिकता के युग में खेती के लिए नए नए यंत्र आ चुके हैं। अब ये बात तो सामान्य सी है कि हर कृषक सारे यंत्र नहीं खरीद सकता, तो ऐसे में यदि उन्हें उन यंत्रों की ज़रूरत है और उनका यदि उन्हें उपयोग करना है तो वे उसे एक तरीके से किराए पर भी ले सकते हैं। तो ये क्या विधि है, इसे हम कैसे करें, ऐसे ही विषय से संबंधित आज चर्चा कर रहे हैं किसानों के लिए लाभकारी कस्टम हायरिंग। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अनुराग पटेल जी, जो सहायक प्रोफेसर हैं संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशन यूनिवर्सिटी में भोपाल से हमारे बीच आए हैं। सर स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: थैंक यू।
1: सर हमने टॉपिक लिया है कस्टम हायरिंग, तो हमारे भाई बहनों को बताइए कस्टम हायरिंग क्या है।
2: कस्टम हायरिंग वो व्यवस्था है जिससे किसान कृषि यंत्रों या मशीनों को किराए पर लेकर खेती के लिए करते हैं। इससे छोटे और सीमांत किसानों को महंगे उपकरण खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
1: जी, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि महंगे उपकरण नहीं खरीदना है और आप उसे किराए से लेके अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर ये बताइए कि इसके जो सेंटर बन रहे हैं जगह जगह, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: मुख्य उद्देश्य ये है कि जो छोटे किसान हैं या मध्यम वर्ग के किसान हैं, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों की लागत को कम करना तथा समय पर कृषि कार्यक्रम संपन्न करना, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कृषि कार्य को हम जो है प्रॉपर कर सके।
1: बिल्कुल सर। सर अब बात ये बताइए कि जो कस्टम हायरिंग सेंटर हैं, ये किन कृषकों के लिए अधिक लाभकारी हैं और कौन कौन से कृषि यंत्र यहाँ उपलब्ध होते हैं?
2: मैम ये जनरली छोटे किसानों के लिए हैं, जो सीमांत किसानों या आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए होता है, काफी लाभकारी होता है। जो किसान जिनके पास सुविधा नहीं होती और व्यवस्था नहीं होती कि वो ज्यादा महंगा यंत्र परचेज कर सके या खरीद सके, उनके लिए ये ज्यादा लाभकारी होती है कस्टम हायरिंग, जिससे मिलके किसान और मशीन को परचेज करते हैं।
1: बिल्कुल सर। तो कौन कौन से ऐसे कृषि यंत्र हैं जो इन सेंटरों पे उपलब्ध हो जाते हैं?
2: मैम जनरली जो है जो बेसिक मशीन से होते हैं या जो डेवलप ज्यादा डेवलप मशीन होते हैं, वो जैसे कि ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, रीपर, थ्रेसर, पावर वीडर, हैप्पी सीडर या मल्चर आदि यंत्र जो है उपलब्ध हो जाते हैं ये सेंटर पे।
1: सर अब ये बताइए कि कस्टम हायरिंग से कृषकों को क्या क्या लाभ मिलता है और वो कैसे इससे लाभ उठा सकते हैं?
2: मैडम कस्टम हायरिंग सेंटर से जनरली खेती की लागत को कम किया जा सकता है। जो कस्टम हायरिंग सेंटर होता है उसके माध्यम से जो किसान होते हैं उनको हर मशीन नहीं उपलब्ध कर पाते, क्योंकि काफी महंगा होता है, वो परचेज नहीं कर पाते या ऑपरेट नहीं कर पाते। बाहर से अगर कोई इम्प्लीमेंट मंगाते हैं या मशीन मंगाते हैं उसका जो है कास्ट बहुत ज्यादा होता है, तो इसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर से वो मिनिमम प्राइस में मशीन ले सकते हैं जिससे उनको लागत कम लगती है और उनको कोई कार्य करने के लिए समय की बचत होती है, श्रम की आवश्यकता कम लगती है, जो लेबर होता है मैन पावर होता है उसको कंज्यूम कर सकते हैं, आधुनिक तकनीक मतलब बढ़ावा दे सकते हैं, आधुनिक तकनीक को ज़्यादा यूज कर सकते हैं जिससे जो है हमारा प्रोडक्शन आउटकम ज़्यादा हो सके या फायदा उनको ज़्यादा मिले।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ हम लोग आज वर्षों से इतिहास में भी जानते हैं कि खेती होती ही रही है, तो आज भारत में कस्टम हायरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी?
2: मैडम पहले जो है क्या था कि हम लोग जनरली जो फार्मर होते थे वो काफी लोग मिलके या एकजुट होके कोई यंत्र को परचेज करते थे, क्योंकि यंत्र बहुत महंगा होता था। तो अभी ये सुविधा गवर्नमेंट के थ्रू से स्टार्ट हो गई, गवर्नमेंट इस पे ज्यादा फोकस कर रहा है और जो ICR है वो इसके लिए काफी ट्रेनिंग दे रहा है किसानों को, जो ग्रामीण लोग हैं वो ट्रेंड हों और इसको करें, ये सन 2014 से 15 के बीच में गवर्नमेंट ने एक ये लाया कि कस्टम

0: हायरिंग हम स्टार्ट करेंगे, और जो ग्रामीण एरिया है या जो छोटे किसान है जो मशीन नहीं यूज कर सकते, वो एक कोई सेंटर बनाएंगे अपना छोटा सा, और उसमें ये सब टूल्स उनको सब्सिडी पे दिया जाएगा। जो सब्सिडी नियर अबाउट 40% से 80% के बीच में रहता था, रहता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, उतना सब्सिडी दे के और वो मशीन परचेज करके किसानों को दिया जाता है, और उसको किसान मेंटेन करता है, और उसी के थ्रू किसान जो है यंत्रों को यूज करता है। वहीं से वो अब मिनिमम चार्ज पे यंत्र को ले आता है किराए पे और ऑपरेट करके चला के और फिर वहां पे उसको वापस कर देता
1: मतलब
0: है।
1: एक समय सीमा की मर्यादा में वो यंत्रों को अपने पास किराए से रखता है
0: यस मैम,
1: और फिर एक समय बाद उसको वो वापस
0: हाँ
1: वहां पे
0: मिनिमम
1: देते हैं।
0: टाइम पे उनको रिटर्न
1: बिल्कुल
0: करना
1: बिल्कुल
0: होता
1: सर, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे
0: है।
1: कृषकों के लिए, खास करके क्योंकि कई ऐसे आधुनिक यंत्र हैं जिनका उपयोग कृषक करना चाहता है
0: यस
1: लेकिन कुछ ऐसी आर्थिक समस्याओं की वजह से वे इसका उपयोग नहीं कर सकते, तो ये बहुत अच्छी पहल है।
0: यस यस
1: सर ये बताइए, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कौन कर सकता है?
0: कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना जनरली जो फार्मर होते हैं वो अपना व्यक्तिगत किसान सभी लोग मिल के वो कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कर सकते हैं, या वो किसान कुछ समूह बना लें, किसान समूह जिसको बोलते हैं, किसान समूह के थ्रू स्थापना कर सकते हैं, या सरकारी समितियां होती हैं जो FPO होता है, FPO या निजी संस्थान जिसकी इसकी स्थापना कर सकती हैं।
1: अब सर चूंकि स्थापना करना तो कृषक चाहता है, एक समूह बनाकर भी यदि कहता है,
0: यस
1: तो कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए सरकार उन्हें कौन कौन सी सहायता देता है?
0: कस्टम हायरिंग सेंटर के थ्रू जो है सरकार उनको सब्सिडी देता है, जो अभी हमने बताया कि 40 से नियर अबाउट 80% तक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर देती हैं। मेन मेन जो इक्विपमेंट ज़्यादा यूज होते हैं और जो एक्स्ट्रा मैनेजमेंट के मशीनरी होती हैं जिससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, उन मशीनों पर ज़्यादा सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो 40 से 80% सब्सिडी उसमें देती है। अगर आप बैंक ऋण लेते हैं तो बैंक ऋण में भी मशीन के थ्रू सब्सिडी देती है। प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन भी गवर्नमेंट जो है प्रदान करती है ICR और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, जो भी इनके टेस्टिंग सेंटर हैं, रिसर्च सेंटर है, उसके माध्यम से ये आपको प्रोवाइड करते हैं, किसानों को प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर।
1: कृषक सामान्य तरीके से खेती करता है,
0: यस मैम,
1: ट्रैक्टर से या बैलों से खेती करता है,
0: यस
1: लेकिन यदि मैं बात करूं कि कस्टम हायरिंग का यदि वो उपयोग करता है तो कृषि उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
0: मैम, कस्टम हायरिंग के थ्रू जो है हम क्या है कि काफ़ी काम को ऐसा है कि कम ड्यूरेशन में कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग से समय कृषि कार्य होने से उत्पादन उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, कम समय में किसी काम को कर सकते हैं, लेबर की नीड जो है कम हो जाती है हमें, और क्विकली मतलब हम अगर हमें सोइंग का टाइम है तो हम प्रॉपर तुरंत सोइंग कर सकते हैं, तो जब हम टाइम से सोइंग करते हैं, टाइम से सब कुछ करते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होता
1: एक और बात आय की बात है, क्योंकि आय
0: है।
1: सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जैसा कि अभी आपने कहा कि कस्टमर सेंटर की स्थापना समूह बनाकर कर सकते हैं, तो क्या इन सेंटरों से रोजगार बढ़ेगा?
0: यस मैम, अगर हम कोई सेंटर डेवलप करते हैं, अपना कस्टम हायरिंग सेंटर डेवलप करते हैं, तो उसके लिए हमें संचालन की आवश्यकता होती है, जो यंत्र को चलाता है उसके लिए ट्रेंड होना चाहिए, तो ट्रेंड होने के लिए क्या करते हैं, हम उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं ICR से या किसी भी अच्छे संस्था से जहाँ से इक्विपमेंट को प्रॉपर ऑपरेट किया जा सके, वहाँ से हम उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं। ट्रेनिंग दिलाने के बाद जो कस्टम हायरिंग सेंटर होता है वहाँ पर वो रिक्रूट करते हैं, या जो किसान जिस संस्था को ऑपरेट करता है वो रिक्रूट करके उनको रखता है, तो वो संचालन में उनका यूज करते हैं, फिर यंत्रों का मरम्मत करने में या प्रबंधन करने में, या ग्रामीण युवाओं को रोजगार एक तरह से मिलता है कि आप उसकी मरम्मत का देखभाल करिए और वो टाइम टाइम सब कुछ मेंटेन करिए, उसके लिए जो है एक प्रकार का
1: मतलब
0: अच्छा
1: एक तरीके से
0: रोजगार।
1: अच्छा रोजगार मिलता है।
0: यस
1: बिल्कुल
0: मैम,
1: बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रोजगार की जहाँ बात आती है और यदि वो बढ़ता है तो ये सबसे ज्यादा खुशी देने वाली
0: यस
1: बात
0: यस
1: होती है।
0: मैम,
1: सर अब ये बताइए कि यदि कृषक यंत्रों को किराए से लेता है तो इसका किराया किस आधार पर तय किया जाता है?
0: किराया का मैडम क्या है कि कस्टम हायरिंग सेंटर का किराया घंटे के हिसाब से तय करते हैं और हम
1: अच्छा
0: प्रति एकड़ के हिसाब से तय करते हैं। अगर एरिया के हिसाब से तय करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम जो चार्जेज होता है वो लेते हैं, नहीं तो क्षेत्र के अकॉर्डिंग चार्जेज करते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, या किसी कार्य को प्रॉपर किसी कार्य को कि ये फील्ड हमें प्रिपेयर करना है, उस कार्य के अकॉर्डिंग भी हम किराया रेंट तय करते हैं कि इतना हमारा चार्ज होगा, इतना मिनिमम चार्ज हमें मिलना
1: हाँ,
0: चाहिए।
1: मतलब ये कि कृषक को ये ना लगे कि बहुत ज्यादा हमें, अगर जरूरत
0: हाँ
1: कम है तो हम ज्यादा उसका किराया
0: यस
1: तो
0: मैम,
1: नहीं दे
0: क्योंकि
1: रहे।
0: कस्टम हायरिंग सेंटर इसीलिए डेवलप किया गया है कि वो किसानों के थ्रू ही रहता है, तो उसमें मिनिमम चार्ज ही
1: बिल्कुल
0: देना
1: बिल्कुल सर,
0: पड़ेगा।
1: बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात है। बताइए कस्टम हायरिंग सेंटर की प्रमुख समस्याएं आती हैं वो कौन कौन सी हैं?
0: मैम, प्रमुख समस्याएं तो मशीन का रख रखाव है, रख रखाव में ये होता है कि हमें सेट बनाना है, कुछ प्रॉपर सब कुछ मेंटेन करना है, या उसमें धूप ना लगे, ये सब चीज़ें तो प्रमुख समस्या रखरखाव है, समय पर उपलब्धता। अगर हमें नीड है किसी यंत्र की, उस टाइम हमें मिल जाए वो यंत्र, अगर हमें प्लाविंग करना है, सोइंग करना है, तो उस टाइम हमें वो यंत्र उपलब्ध हो, तो समय पर उपलब्धता। ईंधन लागत, जैसे किसी यंत्र का ऐसा है कि यंत्र हल्का है तो उसे छोटा ट्रैक्टर ऑपरेट कर सकता है, यंत्र भारी है तो उसे बड़ा ट्रैक्टर ऑपरेट कर सकता है। अगर हमारे पास सुविधाएँ रहती है तो ईंधन की जो एक लागत की बचत होती है, और जो

0: शिक्षित ऑपरेटरों की कमी रहती है, जो कि जो प्रशिक्षित रहें सभी यंत्र को चला सकें, तो उसके लिए जो है हमें प्रशिक्षित यंत्र या प्रशिक्षित ऑपरेटर प्रॉपर मिल सकें।
1: सर, आज हम कहते हैं कि कृषि यंत्रीकरण होना चाहिए, तो क्या मैं ये कहूँ कि कृषि हायरिंग से कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा?
0: यस मैम, किसानों को जो है इससे, किसान बिना मशीन खरीदे और मतलब एक तरह से कंट्रीब्यूट करके बिना मशीन खरीदे आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकता है इसके थ्रू, क्योंकि जो मध्यम किसान होता है, छोटा किसान होता है, उसके पास इतने आय के स्रोत नहीं होते कि वो बड़े बड़े मशीनें या बड़े बड़े ट्रैक्टर परचेज कर सकें, तो इस माध्यम से कस्टम हायरिंग के थ्रू वो सभी मशीनें उसको उपलब्ध हो जाती हैं।
1: सर, अब जैसे कि ये मशीनों का यूज़ हो रहा है, तो किसी एक कृषक ने किया, फिर दूसरे ने किया, तीसरे ने, तो इन बातों का पता कैसे होता है? क्या कोई रिकॉर्ड प्रबंधन होता है जिसके माध्यम से कस्टम हायरिंग के बारे में जाना जाता है?
0: यस मैम, इसका रिकॉर्ड मतलब रखा जाता है जिससे हम उसका आय व्यय का गणना कर सकें, मशीन कितना उपयोग हो रहा है, कितना रख रखाव हो रहा है, कितने टाइम बाद उसका हमें सर्विसिंग कराना है और मशीन के कितने दिन बाद क्या कंपोनेंट हमें चेंज करना है, उसके लिए जो है हम एक रिकॉर्ड डायरी तैयार करते हैं और उसी से जो है हम उसको प्रॉपर मेंटेन करते हैं।
1: सर, अब जैसे कि हम पूरी चर्चा के दौरान ये कह रहे हैं कि यंत्रों को हम किराए से देंगे, लेकिन जब कृषक इसको किराए से लेगा, अपना काम करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी आय बढ़ेगी, तो हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में स्वयं उस यंत्र को खरीदे। तो मैं ये कहूँ कि कस्टम हायरिंग का भविष्य क्या होगा, इस बारे में बताइए।
0: मैम, कस्टम हायरिंग क्या है कि बहुत अभी लेटेस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी इसे डिमांड बेस पर बनाया गया है, तो ये आधुनिक कृषि, डिजिटल बुकिंग या स्मार्ट मशीनों के कारण कस्टम हायरिंग का भविष्य बहुत अत्यंत जो है उज्जवल माना जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है डिजिटलाइजेशन आ रहा है, तो सभी कुछ रोबोटिक्स और AI बेस्ड या प्रिसीजन फार्मिंग या इस तरह से सभी जो है डेवलप टेक्नोलॉजी जो आती हैं उसी वही परचेज करता है, क्योंकि किसान जो परचेज करता है इक्विपमेंट या जो कस्टम हायरिंग सेंटर में रखते हैं उसके एरिया के अकॉर्डिंग जो नीडफुल इक्विपमेंट होता है उसी को परचेज करते हैं, कि जिससे जो है हमारी यहाँ की समस्याएं सॉल्व हो सके।
1: सर, और ये प्रश्न पूछना भी मेरे लिए इसलिए जरूरी था कि मान लीजिए अगर कृषक समूह बनाकर कोई हायरिंग सेंटर बनाता है तो उसका भविष्य अच्छा होगा, उससे उसको हमेशा लाभ ही मिलने वाला है।
0: प्रॉपर लाभ मिलता है।
1: बिल्कुल। तो सर, आपने आज चूंकि कस्टम हायरिंग के बारे में हमारे कृषक भाई बहनों को बहुत सारी बातें बता दी, मुझे लगता है लगभग सारी ही बातें बताई हैं, इसके अलावा आप हमारे कृषक भाई बहनों से और क्या कहना चाहेंगे?
0: बस यही कहना चाहेंगे कि कस्टम हायरिंग सेंटर ये किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए, खासतौर से मध्यम और छोटे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए, चाहे FPO के माध्यम से बनाए, चाहे किसान मतलब एक तरफ एकजुट होकर बनाए, किसी भी माध्यम से कस्टम हायरिंग सेंटर को डेवलप करें और डेवलप करने के साथ साथ उसको प्रॉपर देख रेख करें, जिससे जो है वहाँ के जितने भी फार्मर हैं उसको लाभ मिल सके और वो प्रॉपर जो है अपना कार्य जो हो है वो कर सकें, खेती का कार्य जो भी है कर सकें, कम लागत के साथ, समय के साथ और कम ईंधन के साथ, और मतलब अच्छे तरीके से अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं या प्रोडक्शन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है आज कस्टम हायरिंग विषय पर, और आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: थैंक यू मैम।
2: सो भैया बहनों, अब अपन ने सुनी जो भेंट वार्ता किसानों के लिए लाभकारी कस्टम हायरिंग, विशेषज्ञ हते डॉक्टर अनुराग पटेल और इनसे बातचीत करी हती अमृता जैन बहन ने। भैया बहना हरों, अपन और खेती किसानी के संगे पशुपालन सोई करत हैं और पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार भी करे जा रहे हैं। इको मुख्य उद्देश्य है उत्पादन की लागत को कम कर व पशुओं की सेहत को सुधार व दूध या मांस को उत्पादन कई गुना इसे बढ़ सोई जात है। तकनीक और वैज्ञानिक तरीकन के उपयोग से हर क्षेत्र में जो व्यवसाय आधुनिक और लाभदायक बन चुका है। इमें स्मार्ट सेंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मने मल्टीपल सेंसर को इस्तेमाल करो जाते हैं। पशुओं के शरीर को तापमान, हृदय गति और गतिविधियों को ट्रैक करवे के लाना भी स्मार्ट डिवाइस जैसे के साम्स ट्रैक म्यूनिस्ट बोलस को पेट के अंदर उपयोग करो जाते हैं। स्वास्थ्य की निगरानी के लाने मने कौनों बीमारी पशु को सता रही है इको प्रजनन चक्र को समय से पहले भी पतो लगाओ जा सकत है। मवेशियों में कृत्रिम गर्भाधान के लाने मैत्री कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दो जाते हैं और स्थानीय युवाओं की मदद से जे गांव-गांव जाके कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। नस्ल के सुधार में मने सेक्स सॉर्टेड सीमन के उपयोग से किसान केवल बच्चिया पैदा करवे को चयन कर सकत हैं और संगे संगे आवारा पशुओं की समस्या सोई कम हो जाते हैं और उन्नत नस्ल तैयार होते हैं। डिजिटल पहचान ई टैगिंग के माध्यम से पशु के कान में एक बार कोड या माइक्रोचिप लगाई जाते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार के ई गोपाला मोबाइल प्लेटफॉर्म जैसे टूल के जरिए पशु की पूरी मेडिकल हिस्ट्री मने दूध का रिकॉर्ड, टीकाकरण की जानकारी एक क्लिक में पता चल जाते हैं।

और सटीक चारा निर्माण के लाने बिग डेटा उन्नत सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक पशु की उम्र और दूध की क्षमता के हिसाब से संतुलित आहार तैयार करो जा सकत है। सूखे चारे की बर्बादी को रोकने के लाने साइलेज बनाव और कम जगह और पानी में हरो चारा उगावे के लाने हाइड्रोपोनिक तकनीक भी अपनाई जा रही है। सो जो तो हती बातचीत और अब अपन सुन लेते हैं जो चौकड़िया गीता पांडे की आवाज में।

भैया बहना हरों, चलो आप और इनको कछु सलाह सुई दे देते हैं। हल्की सिंचाई करके मिट्टी में नमी बनाए रखवे, गर्मी एवं नमी की कमी से बचाव करवे, खेत में खरपतवार मुक्त बना भी खिलाने, कीटों सफ़ेद मक्की माहू फली छेदक की नियमित निगरानी करवे, पीले स्ट्रिकी ट्रैप लगावें, प्रकोप होवे पे नीम को तेल इको छिड़काव करें, पीच रामोजिक से संक्रमित पौधन को तुरंत निकाल कर नष्ट कर देवे, आम में पुष्पन की अवस्था में नियमित सिंचाई करवे और मल्चिंग अपनाएं ताकि नमी बनी रहे और फल को झड़व कम हो जावे। अब कछु पशुपालन सलाह दे देते हैं। पशुओं के लाने पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करावें, छायादार हवादार स्थान पर रखवें, हरो चारा सूखो चारा खनिज मिश्रण संतुलित मात्रा में देवें, अधिक गर्मी में चारा न देवें, पशु शेड की नियमित निगरानी करवें, उचित जल निकासी की व्यवस्था करवें और हीट स्ट्रेस के लक्षण पर सुई नजर रखवें। तो जो तो हती सलाह। और अब अपन चलत चलत सुन लेते हैं जो एक और लोकगीत रही सिंह यादव और पार्टी को गाओ भाव।

सो भैया बहना हरो, रही सिंह यादव और संगी साथियों की गाय भई जलेद के संगे आज को ग्राम सभा कार्यक्रम हम इतनी समाप्त करते हैं। अगर आप भी कोनो विषय पर जानकारी चाहते हो तो आप भी हमें चिट्ठियां लिख के बता सकते हो। सो स्वीकार करो पूनम बहन की राम राम।

0: आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जा रहा था। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं टीना झा। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में क्वाड की भूमिका पर और आने वाले समय में क्वाड की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत, वाइस प्रेसिडेंट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। प्रोफेसर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद टीना।
2: दुनिया

हमें एक बड़े जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, जहां इंडो पैसिफिक सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और साथ ही स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन का केंद्र बन चुका है। ऐसे में नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस बैठक में कई बड़े और प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स की घोषणा की है, चाहे बात हो मैरिटाइम सर्वेलेंस की, क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन्स की, एनर्जी सिक्योरिटी की, सिक्योर टेलीकॉम नेटवर्क्स की या फिर एआई आधारित एग्रीकल्चर इनोवेशन की। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले सुनते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री डॉ एस

0: अहम बात कही।
1: We've just concluded a very substantive and productive meeting of the Quad foreign ministers. Understandably, much of the discussions and indeed the bilateral exchanges were devoted to the current state of the world. Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities.
0: प्रोफेसर, चर्चा की शुरुआत मैरिटाइम सिक्योरिटी से करते हैं। कुछ अहम अनाउंसमेंट्स इस सेक्टर से संबंधित हुए हैं, जिनमें इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन इनिशिएटिव काफी अहम माना जा रहा है। हमारे श्रोताओं को अगर आप समझा सकें कि ये कितना ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव होगा समुद्री सुरक्षा के लिहाज से।
2: देखिए, जो हिंद प्रशांत की जब हम बात करते हैं तो ये एक मैरिटाइम ज्योग्राफी है, ये एक समुद्री क्षेत्र है जिसमें एक साझा परिचालन तस्वीर, कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर की जब हम बात करते हैं, वो उसकी एक जरूरत मुझे लगता है चारों देशों को पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं हिंद प्रशांत में, इतने बड़े भू राजनीतिक बदलाव आए, जियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स आए, और उसके बाद मैरिटाइम स्पेस में भी इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी बदल रही है, देशों की सोच बदल रही है, और उसके साथ उनकी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बदल रही है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कहीं पर सबसे पहले अगर हम किसी चीज की बात, देश, ये जो चार देश हैं ये अपनी साझेदारी इनकी जो बढ़ाने की जब बात करते हैं प्रशांत में, तो सबसे पहले कि ये देश जानना चाहेंगे क्या इनके पास एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर है कि नहीं है, क्या ये चारों देश एक ही तरीके से एक ही असेसमेंट रखते हैं जो हिंद प्रशांत मैरिटाइम स्पेस में हो रहा है। तो उसके लिए सर्वेलेंस की जरूरत है, उसके लिए निगरानी की जरूरत है, और मुझे लगता है ये जो एक इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस फ्रेमवर्क इनिशिएटिव को आज आगे बढ़ाया गया, इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल ये होगा कि ये आपको एक, ये जो देश है इनको एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर देगा इस रीजन के बारे में, उसके जो यहाँ पर चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं उसको, उसके बारे में आगाह करेगा, और कहाँ पर इकट्ठे तौर पर इन चैलेंजेस को इकट्ठा रहकर टैकल किया जा सकता है उसके बारे में एक रोड मैप बनाने में और आसान हो जाएगा रास्ता। ये मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रोल होगा, और इसके साथ जब ऐसा होगा तो इससे न सिर्फ इन चार देशों को मदद मिलेगी बल्कि वो सारे देश जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मैरिटाइम सर्वेलेंस कर पाए या मैरिटाइम समुद्री निगरानी रख पाए या पूरे जो ये हिंद प्रशांत है इस पर एक अपनी पकड़ बना पाए, तो उसमें इनकी मदद करने में ये क्वाड जो फ्रेमवर्क है ये हेल्पफुल होगा। तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं होगा चार देशों के लिए बल्कि पूरे हिंद प्रशांत के लिए एक अच्छी पहल है, और इसको मुझे लगता है इससे जो बाकी देशों को भी फायदा होगा वो भी इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले।
0: प्रोफेसर, आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो क्या ये कहा जा सकता है कि कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर को विकसित करने से इंडो पैसिफिक में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग की क्षमता काफी बढ़ जाएगी?
2: जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग होगी, और उसके साथ साथ उस मॉनिटरिंग से आप कैसे आपकी जो एसेट्स हैं उनको आप कैसे ऑपरेशनल यूज के लिए ला सकते हैं। चारों जो देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके पास मैरिटाइम एसेट्स काफी हैं, लेकिन ये मैरिटाइम एसेट्स जो इनके हैं वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, कि भारत जो है वो इंडियन ओशन में डोमिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक में है, जापान साउथ ईस्ट चाइना सी एरिया में डोमिनेंट है। तो इनको इकट्ठा करके, इनकी कैपेबिलिटीज को इकट्ठा करके जब आप कोई तस्वीर बनाएंगे इस रीजन की, तो आपको एक तो पूरी टोटैलिटी में समझ में आएगा कि कहां पर क्या चल रहा है, और उसके साथ अगर आप किसी और देश की कैपेसिटी बिल्ड करने में मदद करना चाहते हैं, सर्वेलेंस उसकी कैपेसिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जो कैपेबिलिटीज उनको और ऑपरेशनल बनाना चाहते हैं, तो सबकी जो पहली स्टेज होती है वो सर्वेलेंस होती है। तो मुझे लगता है वो जो एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर की बात हम कर रहे हैं उससे इस जो पहल है इसको और गति मिलेगी और बाकी देशों को जोड़ने का भी अवसर मिलेगा।
0: प्रोफेसर, क्वाड ने इंडो पैसिफिक में सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की भी घोषणा की है। आज के दौर में जब रेयर अर्थ मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, इनको सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स माना जा रहा है, क्या यह इनिशिएटिव चीन पर दुनिया की निर्भरता को कम करने और एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन सिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम है?
2: जी बिल्कुल, मुझे लगता है क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो इस समय सबसे महत्वपूर्ण एक कैटेगरी है, जहां पर सभी देश जो हैं वो, जो पूरी दुनिया है वो इस समय एक तरह से क्राइसिस से गुजर रही है, जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी, उनकी प्रोसेसिंग, उनका यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है।

0: जिस तरह से जो डोमिनेंस कुछ देशों की है क्रिटिकल मिनरल्स पर, रेयर अर्थ मिनरल्स पर, वो किस तरह से उसको वेपनाइज कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या देशों के सामने है, खासकर उन देशों के सामने जिनके पास इंडिजिनस मिनरल्स नहीं है और जो बहुत डिपेंडेंट है बाहरी दुनिया के ऊपर। तो मुझे लगता है जो फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है आज क्रिटिकल मिनरल्स, जिसका की एम होगा कि कैसे करीब करीब 20 बिलियन US डॉलर्स को मोबिलाइज करे पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, जिससे कि सिक्योर और रिजिलियंट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स थ्रू आउट इंडो पैसिफिक, पूरे हिंद प्रशांत में बन पाए, इसकी जो एक कोशिश करेगा, ये मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है दुनिया को और उन देशों को जो क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज कर रहे हैं, कि आप की ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बढ़ रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, और क्रिटिकल मिनरल्स की जो डिपेंडेंस है अगर वो दूसरे देशों की तरफ से देखें तो वो उसको कम करने की कोशिश, डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरा इसमें अहम बात यह है कि जब आप हम आर्थिक तरक्की की आज बात करते हैं, उसमें जिस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी, जिस तरह का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स का रोल सेंट्रल है। तो आप अगर डेवलपमेंट की भी बात हम करें, अगर हम डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हमारी हैं उसकी भी बात करते हैं, तो उसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स का क्या रोल होगा और कैसे बाकी देश जो क्वाड के देश हैं, क्वाड मेंबर्स हैं, वो किस तरह से एक ऑल्टरनेटिव दुनिया को या हिंद प्रशांत के देशों को देने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस इनिशिएटिव में नजर आता है। और इसमें कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, कि कैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, जो उसकी स्टेबिलिटी है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि वही जब स्ट्रेंथन आप करेंगे तब आप हिंद प्रशांत की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, जो स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस है, उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। एक तीसरा अहम इनिशिएटिव जिसका जिक्र डॉक्टर जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी किया, वो है क्वाड इनिशिएटिव ऑन इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी। अब प्रोफेसर, मौजूदा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के संदर्भ में ये कितना अहम है, और खास करके हम देख रहे हैं कि ये लगातार एनर्जी क्राइसिस हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखा गया, और अभी के मौजूदा ग्लोबल सिनारियों को भी अगर देखें तो ऐसे में क्या एनर्जी रेजिलियंस अब सिर्फ एक इकोनॉमिक कंसर्न नहीं है, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के दृष्टिकोण से भी एक काफी केंद्रीय मुद्दा बन चुका है?
0: जिस तरह से आपने जिसका जिक्र किया कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद और अब जो मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, उसके बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि किसी भी देश के ऊपर अगर आप ज्यादा निर्भर करते हैं अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो वो आपको हानि पहुंचाने के लिए काफी होता है। और हमने ये बात अभी हम नोटिस कर रहे हैं कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कि हम हमेशा ही मानते थे, दुनिया ये मानती थी कि ये अनइम्पीडेड कॉमर्स के लिए इसेंशियल है और इसलिए हमेशा खुला रहेगा, उसमें जिस तरह का बदलाव आया है, उसमें जिस तरह से ब्लॉकेड हुआ और उसको रोकने की कोशिश की गई, वो मुझे लगता है एक तरह से अलार्म बेल है दुनिया के लिए कि अगर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है जो इनिशिएटिव है ये एक तरह से ये दिखाने की कोशिश है दुनिया को कि जो चार जो पिवोटल पावर्स हैं हिंद प्रशांत की, वो इस बात को लेकर सीरियस हैं कि कैसे जो प्रत्येक देश के ऊर्जा क्षेत्र के संसाधनों को, उनकी क्षमताओं को पहचाना जाए और उनका लाभ उठाया जाए, साथ ही उनसे संबंधित जो रणनीतिक पेट्रोलियम प्रणालियां हैं उनको मजबूत कैसे किया जाए। तो कहीं पर जब हम चार देशों की बात करते हैं तो ये अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, उनको इकट्ठा करके आगे बढ़ने की जो कोशिश इसमें है वो नजर आ रही है।
1: प्रोफेसर, फ्यूचर टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एआई एंगेज इनिशिएटिव के तहत एग्रीकल्चर इनोवेशन और फूड सिक्योरिटी पर सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। क्या ये कहा जा सकता है कि क्वाड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ अब डेवलपमेंटल पार्टनरशिप की ओर भी बढ़ रहा है?
0: जो हम देख रहे हैं अभी क्वाड में जो हो रहा है, उसमें मुझे लगता है एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि क्वाड न सिर्फ स्ट्रेटेजिक मुद्दों के ऊपर, सामरिक मुद्दों के ऊपर अपनी एक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि एक तरह से डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं उसको वापस किस तरह सेंटर में लाया जाए, कैसे इस डिस्कोर्स के सेंटर में लाया जाए, इसकी पहल काफी ज्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो इसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को किस तरह से डेवलपमेंटल प्रायोरिटी से जोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि इससे आपकी सामरिक जो क्षमताएं हैं वो उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश, पर उससे किस तरह से इकोनॉमिक रेजिलियंस और डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को साधा जाए, इसकी कोशिश हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो कोलैबोरेशन है, इसमें हमने ये कोशिश देखी है इन चार देशों की, कि एक ऑल्टरनेटिव मॉडल सेट करने की कोशिश है। कि हम कि क्वाड जो कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, अपने हितों को साधने की कोशिश नहीं, बल्कि जो क्वाड कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस हैं उनकी कैपेसिटी

0: कैपेसिटीज हैं, उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उसको कैसे रीजन के लिए लेवरेज किया जाए, मुझे लगता है उसमें ये जो धारणा है इस क्वाड के इनिशिएटिव्स में। और जब हम एआई एंगेज इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो उसमें भी क्या आप कैसे एआई को, इमर्जिंग टेक को एग्रीकल्चर सेक्टर में लेवरेज कर पाएंगे, इसके ऊपर जिस तरह की रिसर्च होनी चाहिए, जिस तरह के फंड्स आने चाहिए, जिस तरह से इसको आप, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को हमको सशक्त बनाना है, काफी सारी जो इकोनॉमीज हिंद प्रशांत में है वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड हैं, तो अगर हमको उन इकोनॉमीज को रिजिलियंट बनाना है, डेवलपमेंट को अपने सेंटर में रखना है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स की जरूरत बहुत ज्यादा है। और ये जो अल्टरनेटिव है कि क्वाड का मॉडल वो वाला मॉडल नहीं है कि जहां पर दूसरे देश आते हैं, पैसा देते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज और चले जाते हैं। क्वाड का मॉडल अल्टीमेटली एक ऐसा मॉडल है जो कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश है दुनिया भर में, हिंद प्रशांत में, खासकर उन देशों में जो जिनके पास अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज कम है या जिनको हेल्प की जरूरत है। तो मुझे लगता है उस मामले में ए आई एंगेज इनिशिएटिव बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। और ए आई और इमर्जिंग टेक से आप कैसे अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को साध सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा नमूना क्वाड देशों ने पेश किया।
1: प्रोफेसर, एक आखिरी सवाल क्वाड के भविष्य को लेकर अगर बात करें, और जिस तरह से हमने देखा कि आज फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद जिस तरह से मैरिटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, एनर्जी कनेक्टिविटी, इन सब क्षेत्रों में देखा गया कि कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव्स सबने मिलकर लॉन्च किया है, कई ऐसे नए क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है जिसमें सहमति बन सकती है आने वाले समय में, क्या ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा संकेत था क्वाड के द्वारा कि आने वाले समय में इस ग्रुपिंग की इंस्टीट्यूशनल डेप्थ और बढ़ सकती है?
0: बिल्कुल, मुझे लगता है जितना विस्तृत क्वाड का एजेंडा आज हम देख रहे हैं और जिस तरह से क्रिटिकल एरियाज में क्वाड इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ इशारा है, उसमें ग्रेटर एंगेजमेंट की तरफ इशारा है, उसमें इशारा है कि कैसे आप ज्यादा क्लोजली काम कर सकते हैं एक साथ, अगर आप आए, चार बड़े देश आए और उसके बाद वो न सिर्फ अपने लिए काम करें बल्कि दूसरे देशों को भी एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करें, मुझे लगता है उसकी तरफ इशारा है। तो एंगेजमेंट है, एक्सपीरियंस शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, और उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जरूरत होगी, उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बढ़ेगा आगे, मुझे लगता है। ये बात कही गई शुरू में जब ये समिट शुरू हुआ कि कैसे एक क्वाड आइडियाज से निकलकर ऑपरेशनल इश्यूज पर, प्रैक्टिकल इश्यूज की तरफ मूव कर रहा है, और मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है क्योंकि इससे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे ऑन द ग्राउंड, ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा क्वाड मेंबर्स में, और वो देश जो क्वाड की ओर उम्मीद भरी निगाहें लगाए बैठे हैं कि क्वाड अगर अच्छा करेगा इन सेक्टर्स में तो उनसे उनका भी फायदा।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है आज की बैठक से ये बड़ा संदेश दे दिया गया है उन सभी को कि ये चार देश अभी सिर्फ वर्तमान की चुनौतियों का ही जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि भविष्य की इकोनॉमिक रियलिटीज क्या होंगी और जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को भी शेप करने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्मों से ली गई कुछ खूबसूरत गजलें। कार्यक्रम के शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं बाजार फिल्म से ली गई एक गज़ल, जिसे आवाज़ दी है भूपेंद्र ने, शायर हैं बशर नवाज और तर्ज बनाई है खयाम ने।

आशा भोसले की आवाज़ में आइए सुनते हैं उमराव जान फिल्म से ली गई खूबसूरत गज़ल। कलाम है शहरयार का और धुन बनाई है खयाम ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगली गज़ल है इफ्तिकार इमाम सिद्दीकी की। संगीत है जगजीत सिंह का, आवाज़ चित्रा सिंह की और फिल्म का नाम है अर्थ।

जगजीत सिंह की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं सरफरोश फिल्म से ली गई बहुत ही प्यारी सी गज़ल, जिसे लिखा है निदा फाजली ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। आइए सुनते हैं सरफरोश फिल्म की ये गज़ल।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं ममता फिल्म से ली गई खूबसूरत गज़ल लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह के बोल हैं और संगीत रोशन का।

ममता फिल्म की इस खूबसूरत गजल के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में, इंतजार कीजिए।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

işi yer dika, pokran dika. Miss World dikhi, World Cup dikha. Chandrayaan dikha, Insat dikha. Nayi kahaniyon ne naya Bharat likha. कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानीज एवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के

0: पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की

विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का

0: विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akash Rani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said, now the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निज़ाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल के ओलंपिक गेम्स में योग आसन को शामिल करने पर जोर दिया है। अहमदाबाद अगले महीने पहले आलमी योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्रमोहन ने वियतनाम में मर्दों के फ्री स्टाइल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज बताया कि इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नौलेकर करेंगे। मर्दुमशुमारी के कमिश्नर के साथ साथ साबिक IAS अफसर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, साबिक IPS अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर माशियात डॉक्टर शमिका रवि को कमेटी के रुकन की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी गैर मुल्क की एक कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दीगर वजूहात गैर कुदरती आबादियाती तब्दीली का बाइस बन रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आबादियाती तब्दीली एक संजीदा मामला है जो न सिर्फ इकतदार

0: जमहूरिया का खैरमकदम किया। कल सदर जमहूरिया नाथुला पार जाएंगी और सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में भी शिरकत करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। नजरसानी शुदा MAPP रियासी सरकारों की दरख्वास्त पर की गई है। इसका इतलाक आज से होगा। इस सिलसिले में सार्फीन के उमूर खुराक और अवामी निजाम तकसीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में सार्फीन के उमूर के महकमे और भारत की कौमी जरिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड नेफेड और भारत की कौमी कोऑपरेटिव सार्फीन की फेडरेशन NCCF के हुक्काम के साथ एक मीटिंग की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि ये मीटिंग मियारी प्याज के जखीरों की मुआसिर खरीदारी की राह हमवार करने और किसानों को बेहतर आमदनी हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए की गई थी। शाहराहों और नकलो हमल के वजीर नितिन गडकरी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हासिल शुदा रिपोर्टों पर मबनी कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों के मेयार और देखरेख की पेशरफ्त का जायजा लिया, जिसमें पंजाब में 4,000 किलोमीटर से ज्यादा और दिल्ली और हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा शाहराहों का अहाता किया गया है। नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्टों के जमीनी कामकाज को तेज करने की जरूरत और काम को वक्त पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने तमाम प्रोजेक्टों वाले हिस्सों पर मानसून की पेशगी तैयारी के इकदाम करने के लिए भी हुक्काम को हिदायत दी। नौजवानों की उम्र और खेलों के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि 2036 तक खेलों की मेजबानी की भारत की दावेदारी को जहन में रखते हुए आइंदा ओलंपिक्स खेलों में योगा आसन को शामिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि आइंदा माह की 4 से 8 तारीख तक अहमदाबाद पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो मुल्क के सेहत के सिलसिले में इस रवायती तरीक़ेकार को खेलों के आलमी डिसिप्लिन के तौर पर कायम करने की जानिब एक अहम कदम होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि योगा आसन से मुल्क की सॉफ्ट पावर की अक्कासी होती है और यह दुनिया भर में जिस्मानी तंदुरुस्ती, जहनी सेहत और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के एक अहम वसीले के तौर पर उभर रहा है।
1: 4 जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप का आयोजन भारत में अहमदाबाद में हो रहा है। 75 से अधिक देश के 500 से अधिक एथलीट्स उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
0: उन्होंने कहा कि तकरीबन 75 मुल्कों ने योगा आसन चैंपियनशिप के लिए इंदिराज कराया है और दुनिया भर से 5,000 से ज्यादा शुरका के हिस्से में हिस्सा लेने का इम्कान है। तकरीब के दौरान वजीर मौसूफ ने पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप 2026 के लिए मास्कट, जर्सी और चैंपियनशिप फिल्म का भी आगाज किया। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आदमी ने हज अहम तरीन मनासिक के हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब के मैदान अरफात में जमा हुए। तमाम आजमीन हज सफ़ेद अहराम बांधे हुए थे, जिन्होंने खुतब हज की समात की और मस्जिद निबरा में एक साथ जुहर और असर की नमाज अदा की। अब तमाम हुज्जाज कराम मुजदलफा के लिए रवाना होंगे और एक साथ मगरिब और ईशा की नमाज अदा करेंगे। हुज्जाज कराम रमी जमरात के लिए कंकरियां भी इकट्ठा करेंगे। वो मुजदलफा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे। इसके बाद वो कल सुबह मीना वापस पहुंचेंगे, जहां कुर्बानी का फरीजा अंजाम देंगे और रमी जमरात करेंगे। इस साल 1,75,000 से ज्यादा भारतीय हुज्जाज कराम फरीज हज अदा कर रहे हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान गर्मी में तेजी आने की भी पेशगोई की है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के मुश्तरक बयान में जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके से मुतालिक बेबुनियाद हवालों को वाज तौर पर मुस्तरद कर दिया है।

आदाब, उर्दू प्रोग्राम कहकशा में मैं शीरीन खान आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, कहकशा सिर्फ सितारों के मजमुए का नाम नहीं, ये तो उन जज्बों की ताबिंदगी है जो एक इंसान को जमीन की पस्तियों से उठाकर रूहानियत की बुलंदियों तक ले जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी बजाते खुद एक सफर है, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनकी मंजिल मिट्टी का कोई शहर नहीं बल्कि अल्लाह का कुर्ब होती है। आज का हमारा ये प्रोग्राम महज आवाजों का संगम नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी बज्म है जहां हम उस मुबारक सफर की कैफियत का जिक्र करेंगे जो सब्र की भट्टी से गुजरकर यकीन कामिल की रोशनी तक पहुंचता है। ये तस्किरा है उस तड़प का जो एक मोमिन को हरम की गलियों तक ले जाती है, जहां हर कदम पर सब्र का इम्तिहान है और हर सांस में यकीन की खुशबू जो रूह की गहराइयों से शुरू होकर अल्लाह की रजा के उफुक तक जाता है। ये सफर हज हो या इश्क इलाही की कोई और पगडंडी, इसके लिए हमें दो ही चिराग दरकार होते हैं, एक सब्र की ढाल और दूसरा यकीन का चिराग। सब्र जो हमें पुरखार रास्तों में टूटने नहीं देता और यकीन जो अंधेरी राहों में नवीद मंजिल बनकर चमकता है। अल्लामा इकबाल ने इसी रूहानी बेदारी और बुलंद परवाजी को क्या खूब पेराए इजहार दिया है, नहीं है तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। समीन, इस प्रोग्राम की पहली पेशकश गुलुकारा रजिया बानो की आवाज में, कलाम है ताबिश कानपुरी का, समाप्त कीजिए।

0: ना समझे तो हंसेगी दुनिया, तुम हो दीवाने तो दीवाना कहेगी दुनिया।
1: दोस्तों अभी आप रजिया बानो की आवाज में कव्वाली समाअत फरमा रहे थे और कलाम था ताबिश कानपुरी का। हम बात कर रहे थे रूहानी सफर और सब्र के बारे में। रूहानी मसाफात का अवलीन जीना खुलूस नियत है और इस अज्म को पाए तकमील तक पहुंचाने वाली कुव्वत सब्र है। रूहानियत का मफहूम तर्क दुनिया नहीं बल्कि हुजूमे दुनिया में रहते हुए खालिक हकीकी से लो लगाए रखना है। इस ताल्लुक की बुनियाद सब्र पर खड़ी है। जिंदगी में जब हालात हमारी मर्जी के खिलाफ होते हैं तो वही लम्हा हमारे सब्र का इम्तिहान होता है। सब्र दरअसल वो खामोश तवानाई है जो इंसान की शख्सियत को बिखेरने से बचाती है। ये हमें सिखाता है कि हर तारीख रात के बाद एक रोशन सुबह मुकद्दर है। जब हम दामने सब्र थामते हैं तो गोया हम खालिखे कायनात की हिकमत पर इस यकीन का इजहार करते हैं कि तेरी रजा मेरी तमन्ना से फायक है। जब तक कल्ब में सब्र की कंदील रोशन न हो रास्ते की धूल मंजिल का गुबार बन जाती है। इस शेर में कैफियत सब्र को किस महारत से बयान किया है कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। समय हमारे इस प्रोग्राम की अगली पेशकश के जानिब रुख करते हैं जहां हम सुनेंगे महमूद निजामी और साथी की आवाज़ में ये कव्वाली। समाप्त कीजिए।

दोस्तों अभी आप मुनव्वर मासूम कव्वाल की आवाज में कव्वाली समाअत फरमा रहे थे और कलाम था हनीफ भोपाली का। दोस्तों किस कदर दिलकश है वो लम्हा जब सब्र और यकीन हम आगोश होकर इंसानी तकदीर बदल देते हैं। ये रूहानी सफर दरअसल अपनी जात की बाजियाबी का नाम है। जब हम कायनात के रंगों में सनाए के रंग तलाश करने लगते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। हमें एहसास होता है कि दुनिया की हर शय फानी है, सिर्फ अल्लाह का इश्क और उसका कुर्ब ही दायमी है। जिंदगी के शोर में अपने अंदर की आवाज सुनना और इस पर यकीन रखना ही वो असल कामयाबी है जिसे पाने के लिए सूफिया इकराम ने अपनी उम्रें गुजार दी। जब दिल नूरे इलाही से मुनव्वर हो तो बेसाख्ता जबान पर ये शेर आ जाते हैं। निगाहे शौक को वो कैफो सुरूर मिल गया, मेरे सब्र को आज तेरा नूर मिल गया। समीन इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गुलकार जानी बाबू की आवाज में और कलाम है पयाम सईदी का, समाप्त कीजिए।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए आप सुनिए विशेष कार्यक्रम। विषय है एनडीए सरकार के 12 साल। विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और मृगेंद्र सिंह, वार्ताकार अभिषेक कटियार और प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की।
1: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम का विषय है एनडीए सरकार के 12 साल। किसी भी लोकतांत्रिक देश की यात्रा में 12 साल का समय एक ऐसा पड़ाव होता है जहां पीछे मुड़कर नीतियों के परिणामों को और आगे देखकर भविष्य के पदचिन्हों को साफ साफ रेखांकित किया जा सकता है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व नीतिगत बदलाव, कड़े और ऐतिहासिक फैसले, आर्थिक सुधारों की नई बयार और वैश्विक पटल पर भारत की एक नई धमक को देखा है। इस यात्रा के कई आयाम हैं और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह और सुरेश शर्मा जी। सर, आप दोनों ही अतिथियों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
3: जी, बहुत धन्यवाद आपको।
1: तो आइए बिना किसी देरी के इस सार्थक चर्चा की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल मृगेंद्र जी आपसे है, UPI आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो इससे आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं?
2: देखिए, निश्चित रूप से अपना भारत देश बदल रहा है। अगर बात करें, आप बात कर रहे थे पिछले 12 सालों की, तो 12 सालों में देखिए बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। विशेषकर अपन बात कर रहे हैं कल UPI आप देखें गांव-गांव के पहुंच गया। विशेषकर युवाओं में इतना क्रेज, कोई भी युवा को देख लो, युवा अपने पास नगद पैसे लेके चलता ही नहीं, वो पूरा उस पर सिस्टम है, चाहे उसको रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदनी है या और कोई ख़रीदारी करनी। इवन आप छोटे, जो हमारे छोटे छोटे सब्जी विक्रेता हैं, उनके पास भी UPI रहता है और वो जो लोग खरीदने जाते हैं उसी से पेमेंट करते हैं। निश्चित रूप से इससे भ्रष्टाचार में काफ़ी रोक लगी है। साथ ही लोगों को जितना पैसा होता है उतना, अगर मान लीजिए आपका 10 रुपये 12 पैसे हुए तो उतने जाएगा, नहीं आप कहाँ कोई चिल्लर ढूंढने जाएंगे करने। तो निश्चित रूप से इससे एक नई क्रांति आई है और भारत को एक नई दिशा मिली है, नई चुनौतियाँ। और आज का जो हमारा बदलता हुआ भारत है या काफ़ी बदल चुका है पिछले 12 वर्षों में, उसकी ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी और

0: का आप परिणाम देखिए कि कितना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो गया।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा सर। दूसरा सवाल आपसे है सुरेश जी, जनधन, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की अगर बात करें तो इनके माध्यम से करोड़ों लोगों तक सरकारी मदद पहुंची है। क्या आपको लगता है कि इन योजनाओं ने विशेषकर गरीब तबके की ज़िंदगी सच में बेहतर की है?
2: देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने नई सरकार के रूप में कमान संभाली, नई सरकार की कमान संभाली, तब उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था कि पहले के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि एक रुपया भेजता हूँ तो वो 15 पैसे मिलता है। लेकिन जब जनधन खाते खोले जाने लगे तो उन सब खातों से ये उसी स्वरूप को बदलने की

0: के रूप में कमान संभाली, नई सरकार की कमान संभाली, तब उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था कि पहले के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि एक रुपया भेजता हूं तो वो 15 पैसे मिलता है, लेकिन जब जनधन खाते खोले जाने लगे तो उन सब खातों से ये उसी स्वरूप को बदलने की योजना थी और गरीब व्यक्ति को व्यवस्था के साथ जोड़ करके और जो सुविधाएं हैं बैंकिंग प्रणाली की वो देने की एक बड़ी योजना जनधन खातों के रूप में हुई
1: जी।
0: और ये कह सकते हैं कि 55 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खुले, जिसका आज हम देख रहे हैं कि किसी भी योजना का सीधा खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी प्रकार जो छोटे किसान हैं और जिन किसानों को एक बेस चाहिए, आधार चाहिए, उस आधार के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना इतनी लाभकारी हुई है कि उन्हें इमीडिएट लाभ देना होता है तो उसके माध्यम से सरकार पहले ही उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराती है। और आयुष्मान योजना ने तो जो बीमार और गरीब, तो जो गरीब बीमारी के नाम पर अपने घर बार को बेच करके, ज़मीन जायदाद को बेच करके इलाज कराता था, उसको 5 लाख की सुविधा दे करके ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि वो सामान्यतया लोगों के बीच में खड़े होने जैसी स्थिति में है। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो मुझे लगता है ये जो ज़मीन बेचकर इलाज कराने वाली प्रथा थी वो लगभग ख़त्म हो गई थी। इसी प्रकार से जैसे उज्ज्वला योजना है, तो उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। और जो हम जंगल कटते हुए सूखी लकड़ी की प्रतीक्षा करते थे और लाने की व्यवस्थाओं में लगे रहते थे, उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन के माध्यम से जो लाभ मिला है उसने महिलाओं की जीवन स्तर को बदला, बीमारी से उनको मुक्ति मिली, आंखों से धुआं का जो परेशानी थी उससे मुक्ति मिली। तो मुझे ये लगता है कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की गई हैं वो न केवल ज़मीन पर उतर रही हैं बल्कि भारत के नागरिकों को उसका सीधा लाभ भी मिल रहा है।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अनुच्छेद 370 हटाना और 3 तलाक कानून को लाना, इन्हें देश की एकता और सामाजिक न्याय से जोड़कर देखा जाता है और देश की एकता और सामाजिक न्याय की दिशा में काफ़ी ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। ज़मीन पर इनका असर आपको किस प्रकार से दिखता है?
2: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी। धारा 370 को हटाना एक इतिहास की धारा को जोड़ने वाला निर्णय साबित हुआ है, इतिहास की धारा को मोड़ने वाला निर्णय साबित हुआ है, क्योंकि ये निर्णय करने की हिम्मत किसी में नहीं थी
1: जी।
2: इससे जम्मू कश्मीर में खुशहाली की राह खुली है और देश की एकता व अखंडता का ताना बाना मजबूत हुआ है
1: जी।
2: आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति, इसके तहत आप देखिए जम्मू कश्मीर कभी आप जाते थे तो कहीं यहाँ घटनाएं हो रही, लेकिन जो आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस की नीति थी धारा 370 के बाद वो पूरी तरह से लागू हुई और आतंकवाद अब आप कहीं सुनने को नहीं मिलता
1: जी।
2: तो ये जो हुआ है निश्चित रूप से ऐतिहासिक, इसीलिए देखिए आज जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाने के बाद विकास की ओर दौड़ लगा रहा है और देश की मूल धारा में जुड़ गया है। नहीं, पहले जम्मू कश्मीर को एक अलग हिस्सा माना जाता था लेकिन अब वो नहीं रहा है
1: जी।
2: इसी तरह आप 3 तलाक की बात करें, 3 तलाक हमारी जो मुस्लिम बहनों के लिए निश्चित रूप से एक ऐसा हथियार है जो कि उनको जीने की राह सिखा रहा, नहीं तो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताती थी, किस आतंक को सहती रहती थी, बोल नहीं पाती थी, बोलने की हिम्मत की तो 3 बार तलाक तलाक बोल के उनको घर से हटा दिया जाता था, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। आज ऐसी हमारी माताओं बहनों के लिए ये जो 3 तलाक है निश्चित रूप से उनकी नई राह दिखे, वो नया भारत देख रही हैं, अपने विकास की राह देख रही हैं, उनकी ज़िंदगी सुरक्षित हुई है, उनके खाने पीने की सब व्यवस्थाएं हो रही, नहीं तो कोई भी आप बताइए 3 बार तलाक तलाक बोल के उनको भगा दिया जाता घर से, उनको ये नहीं देखते थे कि उनका बच्चा है, छोटा बच्चा है या गर्भवती है या उनको कोई किसी तरह की बीमारी है, तो उनको वो कोई देखने वाला नहीं था, ऐसा लगता था जैसे अमानवीकृत उनके साथ हो रहा है। लेकिन 3 तलाक ने उनको जो मानवता का मिला है, तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत धन्यवाद दे रही। आप कभी भी मुस्लिम बहनों के बीच में जाइए, वो कहती हैं 3 तलाक ने हमें नई ज़िंदगी दी है, कोई सोच ही नहीं सकता था कि हमें भी ऐसा भारत मिल सकता है, ऐसा देश मिल सकता है जहाँ हम अपना सिर उठा के जी सकें, अपने मनमर्जी से काम कर सकें और हमें क्या करना है वो भी कर सकें। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा निर्णय है हमारी मुस्लिम बहनों के लिए।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर। धारा 370 की अगर बात करें तो कश्मीर में इसके हटने के बाद से काफ़ी कुछ बदलाव भी हमने देखे हैं। कश्मीर के युवा विशेषकर से देश की सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अपनी सहभागिता कर रहे हैं। खेलों की हम बात करें तो खेल में भी कश्मीर के कई खिलाड़ी निकल कर आए हैं। सुरेश जी, अगला सवाल आपसे है, अगर हम CAA की बात करें पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने वाला एक मानवीय कदम बताया जाता है इस कानून को। इस कानून की भावना और

0: उसके संदेश को आप किस प्रकार से देखते हैं?
1: देखिए, सीएए कानून जो है जब 2019 में फिर से पारित किया, क्योंकि ये संविधान की भावनाओं के अनुरूप ये कानून बना था,
0: जी
1: और जहाँ तक मुझे जानकारी है तो जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल लोग थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जो विभाजन के रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश बन रहे हैं, उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान के रूप में थे वो, तो उनके नागरिकों को आने वाले समय में प्रताड़ना होगी ही। उसका जो कारण है बहुत व्याख्या में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आज हम आंकड़े देख रहे हैं कि आज़ादी के समय जो वहाँ के अल्पसंख्यकों के जो एक प्रतिशत था जनसंख्या का, वो निरंतर घटा है, इसी से ये लगा कि वहाँ प्रताड़ना होगी।
0: जी
1: तो उस समय आज़ादी के आंदोलन में जो शामिल थे बड़े नेता, उन्होंने इस बात को कहा था कि इनके लोग जब भी भारत आएंगे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2019 में सीएए कानून लाकर जो तीन देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान,
0: जी
1: उनके अल्पसंख्यक जो हिंदू, ईसाई और जो बौद्ध और सिख हैं मुख्य रूप से, इनको भारत की नागरिकता दिए जाने में प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा करके ये कानून बनाया। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन असलियत जो ही उनके सामने आई तो उन्होंने अपने विरोध को वापस लिया,
0: जी
1: और एक षड्यंत्र रूपी विरोध जो है सीएए का हुआ, जबकि उसका सामाजिक विरोध नहीं हुआ। और आज जब उसका क्रियान्वयन हो रहा है तो लोगों को समझ में आ रहा है। तो जो सामाजिक समरसता के लिए, और भारत एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है, इसलिए इन समुदाय, इस धर्म को मानने वाले समुदायों के साथ कहीं भी प्रताड़ना होगी तो वो स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ देखेंगे। और भारत में ऐसे कानून बना करके, हालांकि इस कानून में केवल तीन देशों का उल्लेख है, लेकिन अन्य देशों के जो सनातन मानने वाले या हिंदू समाज को, धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ रास्ता खुला खुला है। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रकार के कानून जो हैं वो सामाजिक समरसता के लिए, और अन्य राष्ट्रों में प्रताड़ित हो रहे वहाँ के अल्पसंख्यकों को, आप भारत के अल्पसंख्यकों की स्थिति देखिए कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना जैसी बातें सामने नहीं आ रही।
0: जी
1: अतिरेक में जरूर कहते हुए सब हमें सुन जाएंगे, लेकिन उनको स्वतंत्रता है और उन्हें सारे मौलिक अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं है। हमारे देश में सब प्रकार के मानवाधिकार उपयोग करने के लिए अल्पसंख्यकों को छूट है। तो इसलिए इस सीएए का बहुत महत्व था, और मोदी सरकार ने जो, जिसको कह सकते हैं ना कि अप्रत्याशित निर्णय लिए हैं, जैसे अभी हम 370 की बात कर रहे थे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के मैनिफेस्टो में पहले दिन से था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कश्मीर में जा करके निरुद्ध किए गए थे और वहीं जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये वो नियम हैं, वो कानून हैं, तीन तलाक जैसे कह सकते हैं, सीएए कह सकते हैं, 370 का हटाना कह सकते हैं, 35A का। तो ये एक ऐतिहासिक और बोल्ड निर्णय है, सरकार का इकबाल है, इसलिए ऐसा करने पर सरकार जो है शक्तिशाली दिखती है। और निश्चित रूप से भारत एक शक्तिशाली सरकार का नेतृत्व करते हुए मोदी जी हैं, और उसका वैश्विक धमक भी उसी प्रकार से दिखाई दे रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सीएए सामाजिक सुधारों के लिए किए जाने वाले अन्य प्रयासों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
0: बिल्कुल ठीक कहा सर। सामाजिक सुधारों के तहत किए जाने वाले प्रयासों के साथ साथ केंद्र सरकार ने बीते कुछ दिनों में आर्थिक समृद्धि की तरफ भी कदम बढ़ाए हैं। विशेषकर देश की करोड़ों महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, उनको भी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है। स्वसहायता समूहों के जरिए महिलाएं अब न सिर्फ कमा रही हैं बल्कि उद्यमी भी बन रही हैं। लखपति दीदी योजना इसमें एक मील का पत्थर साबित हुई है। मृगेन जी, आपसे सवाल है कि इसको किस प्रकार से आप देखते हैं?
2: देखिए, लखपति दीदी योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसे 15 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था।
0: जी,
2: इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिला सदस्यों को अस्थायी रूप से 1 लाख रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि हमारी बहनें पढ़ लिख के अगर घर में हैं, कहीं जा नहीं सकती, स्व सहायता समूह के माध्यम से अपना जीवन यापन की व्यवस्था कर सकें, परिवार की स्थिति कैसे बेहतर बना सकें और अपने लिए कैसे रोजगार कर सकें, इसके लिए योजना बनाई गई थी। इस पे सरकार लोन भी देती है, 1 लाख रुपए तक का लोन देती है और उसमें बहुत सारी छूट भी हैं, और ये समूह बनाकर महिलाओं को दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है, जो भी महिलाएं चाहें तो इसमें अपना लाभ ले सकती हैं इस योजना के समूह बनाकर, और इस योजना से

0: महिलाओं के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हो रहा है। आप अगर गांव तरफ कहीं चले जाइए, कभी होता नहीं था गांव में ऐसा कि महिलाएं, आप देखिए घर में बैठी हैं, कोई काम नहीं है। आप देखिए किसी भी गांव में आप चले जाइए, महिलाएं कुछ ना कुछ आपको काम करती हुई दिख जाएंगी, वो कभी बैठी नहीं रहेंगे, तो इससे उनको कमाई भी हो रही है। आप सोच सकते हैं कि SSG से जुड़ी महिलाएँ हर महीने 10 से लेकर 20 हज़ार रुपये महीने तक कमा रही, इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही, अपना परिवार को अच्छी तरह चला रही, बच्चे बच्चियों को पढ़ा रही। निश्चित रूप से यह योजना हमारी बहनों के लिए मील का पत्थर है।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा सर। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम किया है लखपति दीदी योजना ने। वन संपदा और पर्यावरण को लेकर भी काफ़ी कुछ काम किया है केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों में। प्रोजेक्ट चीता की अगर हम बात करें तो दशकों बाद भारत की धरती पर चीते वापस लाए गए। सुरेश जी, आपसे सवाल है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश को चुना गया है, इस परियोजना की सफलता और भारत के वन्यजीव संरक्षण के भविष्य को किस प्रकार से देखते हैं?
2: देखिए, वन्य जीवों को लेकर प्राय ये बात उठती रही है कि भारत में इनके विकास के प्रति कोई लंबी योजना नहीं है और दूरदृष्टि से काम नहीं किया जा रहा है। तो आप इसके बारे में जब हम सोचते हैं और आज के संदर्भ में देखते हैं तो न केवल प्राइवेट सेक्टर इसको अपने साथ जोड़ करके और कार्य कर रहा है, अभी तो सरकार भी अपनी तरफ से ये कर रही है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जिस मध्य प्रदेश में आज हम बोल रहे हैं, उसी मध्य प्रदेश के कूनो को इस चीता प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने चुना। और जिस तरह से हमने देखा कि जो प्रजनन है, वो प्रजनन ये बताता है कि यहाँ चीता अनुकूलता का वातावरण है। और पर्यावरण की दृष्टि से तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि पर्यावरणीय संतुलन बनाने के लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट की बहुत महती आवश्यकता थी। पिछले दिनों जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो जंगली भैंसे और इस टाइप की जो और जीव जंतु या पशु पक्षी ये जो ला करके छोड़े गए हैं, इनसे भी हमारे पर्यावरणीय संतुलन बनेगा। साथ में जो पर्यावरण की दृष्टि से यदि हम कहें तो जो हाइड्रोजन मिशन बनाए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर काम किया जा रहा है, या सोलर रूफ टॉप जो मामला है जिसके तहत PM सूर्य गृह योजना जो है, घर योजना है, उसके अंतर्गत सरकार की तरफ से उसको प्रोत्साहित करने के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जा रही है। तो पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार और बेहतर हम पर्यावरण को बना सकते हैं, क्योंकि जब आज हम देख रहे हैं तो जो ये भीषण गर्मी है, ये पर्यावरण असंतुलन के कारण सबसे ज़्यादा है। और वृक्षों का कम हो जाना, मध्य प्रदेश ऐसा है जहाँ घने जंगलों की स्थिति है, तो उसके बावजूद भी चूंकि गर्मी है तो ये समझने की चीज़ है कि जिस तरीके से अब चीता प्रोजेक्ट आया है या अन्य पशु और पक्षियों को जंगल में छोड़ने के लिए फिर उनके लिए पानी की व्यवस्था होगी, वृक्षों को नमी मिलती रहे, इसके लिए जो व्यवस्थाएं होंगी, तो ये पर्यावरणीय संतुलन के लिए आने वाले समय के लिए एक लंबा प्रोजेक्ट है और लंबा इसका वो रहेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार यदि किसी एक विषय को चुनते हैं तब भी, और यदि समग्र विषयों को देखते हैं तब भी, सभी क्षेत्रों में काम करती हुई दिखाई देती है। और ये एक ऐसा चीता प्रोजेक्ट जिसका आपने उल्लेख किया, ये ऐसा विषय है जिस विषय पर सरकार व्यक्तिगत रूप से क्या सोचेगी, लेकिन इसके बावजूद भी सोचा गया। इसका अभिप्राय ये है कि समग्र दृष्टिकोण से कैसे भारत के अंदर विकास हो सके, जिसे समग्र विकास कहा जा सकता है, वो सारी चीज़ें इस समय दिखाई दे रही हैं।
1: जी सर, बिल्कुल ठीक कहा। और उसी समग्र दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। वैश्विक छवि की अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश की जो वैश्विक छवि बनी है पिछले 12 वर्षों में, वो एक अलग ही रूप में अब दिखाई पड़ती है। मृगेन जी, आपसे सवाल है, G20 जैसे सफल आयोजन को हमने किया, G20 की सफल अध्यक्षता, वैक्सीन डिप्लोमेसी और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों से दुनिया में भारत की साख काफ़ी बढ़ी है, तो क्या भारत सच में एक निर्णायक वैश्विक शक्ति बन चुका है?
0: देखिए, अब ये कहने की बात नहीं कि भारत निर्णायक विश्व शक्ति बन चुका है, वो अब पूरी दुनिया मान चुकी है। अगर ये कहें कि पूरी दुनिया ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा मान लिया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उसके पीछे कारण, जो अब G20 की बात करें तो G20 में जो हुआ वो सबके सामने, इसके पहले कौन उसका नेतृत्व करता था, कौन सामने आते थे, कौन लोग होते थे, लेकिन भारत ने बताया कि नहीं है, और वो प्रधानमंत्री जी ने बता दिया विश्व का कोई भी देश हमें आँख नहीं दिखा सकता। हम जो चाहेंगे अपनी मर्जी से करेंगे और हम जो चाहते हैं वही होगा। अगर कोई चाहे कि हमें झुका लेगा या वो अपनी मर्जी मनवा लेगा, चाहे किसी भी G20 या किसी भी सम्मेलन में, वह अब संभव नहीं है या उनने साफ साफ संकेत दे दिया। दूसरा बात कर रहे हैं वैक्सीन की, वैक्सीन की बात हो रही आपको।

0: की वैक्सीन, सोचिए कि भारत ने कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों की जान बचाई। बताओ, जो वैक्सीन एक समय होता था बनाने के लिए बरसों लग जाते थे, फैक्ट्री लग रही, ये हो रही, अनुमति रही, लेकिन बताइए 30 से 60 दिन के अंदर सब कुछ तैयार हो गया। 6 महीने के अंदर तो ये स्थिति हो गई कि भारत विदेशों को वैक्सीन देने लगा था, जो वैक्सीन बाहर से आती थी वो सब इंडिया से जाने लगी। अब मैं कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इसके लिए बहुत सारी देशों को, गरीब देश थे जहाँ फैला हुआ था, उन्हें मुफ्त में दिया, उन्हें एक पैसा नहीं लिया। इससे जो भारत की एक अलग छाप बनी है, निश्चित रूप से इस छाप के कारण हमारे भारत को एक डिप्लोमेसी की बात हुई है कि भारत जो कहता है करता है। अब मदद के लिए भारत कभी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन अगर किसी ने आंख दिखाई तो उसे छोड़ता भी नहीं। इसीलिए आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर जो कुछ हुआ सबको मालूम है। ये बताइए, हमारी बहनों ने पाकिस्तान के जो बड़े विमान थे, बड़े बड़े वो थे, उनके जितने भी आतंकी अड्डे थे सबको समाप्त कर दिया। और देखिए कितना सटीक निशाना था कि एक भी आदमी की मौत नहीं हुई, केवल वो आतंकी अड्डे समाप्त हुए। अब सोचिए कि पाकिस्तान से हमारी बहनें लोहा ले सकती है, तो सोचिए वह भारत की आज हम कल्पना जिसने कहीं की थी, आज वो भारत हमारे सामने।
1: आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत देश में नए उद्योग और निवेश आए हैं, रोजगार और विनिर्माण के मामले में ज़मीनी स्तर पर किस प्रकार का सकारात्मक बदलाव नज़र आता है, सुरेश जी आपसे जानना चाहेंगे।
2: देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात में विजन शुरू हुआ था, और उन्होंने जिस तरह से गुजरात में उद्योग आमंत्रित करने के लिए योजना परियोजनाओं पर काम किया था, उसका जो है राष्ट्रीय विस्तार हुआ उन सारी योजनाओं का। और ये कहा जा सकता है कि मेक इन इंडिया के माध्यम से हमने आयात के स्थान पर अपने ही देश में निर्माण करते हुए और खरीदने की व्यवस्थाएं की, और उसका सीधा असर ये पड़ा कि जो टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं हुआ करती थी, उस टेक्नोलॉजी का भारत में प्रवेश हुआ जी। और एक ये बहुत सटीक तरीका, मैं एक आयोजन में गया था तो मुझे वहाँ ये बताया गया कि भारत में रोजगार की तरफ युवकों को भेजने का आशय ये था कि यदि उन्हें औद्योगिक परिवेश में भेजा जाएगा तो टेक्नोलॉजी इतनी कहाँ से लाई जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार संभाली तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे वैज्ञानिकों को निर्देश दिया था कि जिस टेक्नोलॉजी से हमारा औद्योगिक परिवेश बढ़ सकता है उस टेक्नोलॉजी को आप तेज़ी से विकसित करिए। और आज मुझे कहने में संकोच नहीं है, और मैं इसलिए भी ये बात कहने का अधिकारी हूँ कि आरआर कैट इंदौर के अंदर जब मैं एक कार्यक्रम में शामिल हुआ तो उसमें जो परमाणु ऊर्जा विभाग का है केंद्र सरकार का, उसमें जब मैं शामिल हुआ तो मुझे ये जानकारी देख करके बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे यहाँ न केवल उत्पादों को, न केवल प्रोडक्ट को अन्य क्षेत्रों में भेजने को लेकर के, या हमारे यहाँ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से फास्ट उत्पादन किया जा सकता हो, आप देखिए आत्मनिर्भरता की स्थिति आज हम यहाँ तक हैं कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तो हमारे हथियारों से हम ऑपरेशन सिंदूर की विजय प्राप्त करते हैं। और आज भारत ऐसा देश हो गया है जो हथियार विदेशों को निर्यात कर रहा है
1: जी।
2: इसका सीधे अभिप्राय यह है कि जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत की सरकार ने लागू किया था उसकी सफलता है ये, और हमारे उद्योगों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से लबरेज बना करके उनके माध्यम से जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों के कारण आज हम ये कह सकते हैं कि भारत न केवल निर्माण के क्षेत्र में, न केवल निर्यात के क्षेत्र में, न केवल कृषि के की आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, न केवल अन्य प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा। और इस आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा असर जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जिसकी वैश्विक शक्ति दिखाई दे रही है, उसमें परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर, कहीं ना कहीं अब हम वैश्विक आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और अगला सवाल भी मेरा आर्थिक सुधारों की तरफ से ही है। मृगेन जी आपसे है, नोटबंदी और GST के तहत जो सुधार किए गए और नोटबंदी शुरुआती दौर में लागू की गई, आर्थिक सुधार की दिशा में बड़े कदम माना जाता है इन्हें। एक पत्रकार के नज़रिए से देखें तो 12 साल बाद इन फैसलों ने अर्थव्यवस्था को कितना पारदर्शी और मजबूत बनाया है।
0: 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, और 9 नवंबर 2016 से लागू, मतलब 8 नवंबर को उन्होंने घोषणा की, 9 नवंबर से लागू। उसमें थे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, इससे जो काला धन था
1: जी
0: वो देश में समा

0: समाप्त हो गया था, क्योंकि आप देखते बड़े बड़े लोग होते थे जो नंबर दो के काम करने वाले, पता चला कि उनके घर में 500-500 करोड़, 200-200 करोड़, 100-100 करोड़ हैं रखे, कुर्सी के गद्दे के नीचे हैं, किसी तक की तकिया के नीचे पड़े हुए हैं। बहुत लोग अपने बड़े बड़े घर में ड्रम में नोट भरे रहते थे, वो पूरी तरह से समाप्त हो गए थे, और उससे भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ा अंकुश लगा था। चीज़ और भी हुआ था, महंगाई विशेषकर जो नंबर दो के पैसे लोग लगाते थे ज़मीन वगैरह के लिए, उससे महंगाई भी काफ़ी कम हुई थी, ज़मीनों के रेट काफ़ी गिरे थे। तो उसके बाद से जो एक भ्रष्टाचार के लगाम के साथ ही जो पैसों का ये था कि नकदीकरण, वो बहुत कम हुआ है, और धीरे धीरे जो आप पहले ही बात कर चुके डिजिटाइजेशन जो हुआ उसके बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ है। और देखिए उसके बाद जो आर्थिक सुधार, GST निश्चित रूप से देश के लिए एक बड़ा कदम था। शुरू में लगा कि इससे आय कम हो जाएगी, कई राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया, विशेषकर जो कांग्रेस शासित या भाजपा के अलावा NDA से अलग दल थे, सब ने विरोध किया, लेकिन अंत में जब उसके फायदा देखा लोगों ने, उसको माना, और उससे जो GST से ऑनलाइन जो टैक्स भरना शुरू हुआ, उससे बढ़ा भी जो टैक्स बढ़ा, चोरी कम हुई, और साथ ही जब चोरी कम होगी, देश के पास टैक्स ज़्यादा आएगा, तो आखिर टैक्स कहाँ जाएगा, जनता की लिए जाएगा, विकास कामों के लिए होगा, चाहे स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी हमारी, और जो आप करें अर्थसंरचना अच्छा होगा, परिवहन सेवाएं सुविधाएं, ये सब इसी के लिए। तो GST ने एक बड़ा ऐसी चीज़ किया जिससे, अच्छा दूसरा इससे फ़ायदा ये है, आप कोई भी चीज़ कहीं भी खरीद सकते हो। अभी तक ये था कि पता चला हर सरकार अपने कहीं 5% टैक्स है, कहीं 7% है, कहीं 15% है, जिससे टैक्स एक जो बात कर रही, एक देश एक टैक्स का, उससे काफ़ी फायदा हुआ है। अब पूरे देश में आप कहीं भी बैठे कोई भी सामान खरीद से सब आपको एक रेट पर मिलेगा, ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है देश के लिए, और इससे आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ है। कोई भी आदमी आज ये नहीं कह सकता कि मुझे 2 जून की रोटी नहीं मिली है, और ये सब आर्थिक सुधारों के कारण ही संभव हुआ है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर, और देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की अभी बात हुई, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी ही हो रही है पिछले कुछ वर्षों से, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कई सारे विदेश, दूसरे देशों के लोग, जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ के लोग भी हमारे देश में इलाज कराने आ रहे हैं। एक सस्ता और बहुत ही सुलभ इलाज यहाँ पर मिलता है। सुरेश जी, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से 3रे स्थान की तरफ बढ़ रहा है, इस आर्थिक यात्रा को आप किस प्रकार से देखते हैं?
2: मुझे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक जो मेरे साथ साक्षात्कार में कहा गया शब्द याद आता है जी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम है, जब आप संसार के सबसे माने हुए अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति है वो ये है कि यहाँ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो विरोध ज़्यादा होता है, समर्थन कम होता है
1: जी।
2: भारत की अर्थव्यवस्था तभी सुधर सकती है जब कोई ऐसा राजनेता आएगा जिसे वोटों की चिंता की बजाय देश की चिंता होगी, और मुझे ये गुण नरेंद्र मोदी जी में दिखाई दिए, जिन्होंने वोट पॉलिटिक्स की बजाय भारत की पॉलिटिक्स पर विशेष ध्यान दिया, और आर्थिक सुधारों के साथ और जो थोड़ा महंगाई का जोखिम उठाते हुए भी जिन्होंने अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर लाने जैसी ताकत दिखाई। और आप ये देखिए कि थोड़ी सी जब महंगाई होती है तो हमारे टैक्सेशन के माध्यम से सरकारों के पास पैसे की आमदनी बढ़ती है
1: जी।
2: आप अन्य व्यवस्थाओं को देख लीजिए, रेलवे स्टेशन को देख लीजिए, एयर व्यवस्थाओं को देख लीजिए, वाल्वो बसों को देख लीजिए, ये परिवहन की दृष्टि से, और फिर आप जो है जो ये आजकल एक्सप्रेसवे बने हैं, इनके माध्यम से जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो, फिर आप हमारे जो उत्पादन है उन उत्पादन के आड़ में हमारा निर्यात जो है वो बढ़ रहा है, आयात कम हो रहा है, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में एक बड़ा सहयोग दिया है
1: जी।
2: तो आज हम ये जो देख रहे हैं, फिर आप ये देखिए कि जहां हमारे लिए नुकसान हो सकता है, जिसको आर्थिक बोझ कह सकते हैं, उन बोझ को हमने टाला है, और गरीबी की रेखा के साथ जो संतुलन है, आपकी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, लेकिन गरीबी की रेखा के का प्रतिशत आपके 5वीं अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाता, इसलिए 80 लाख लोगों को लगातार 5 साल तक निशुल्क अनाज दे करके आने वाले समय में ये 80 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आमदनी और मुफ्त अन्न का जो सांख्यिकी समीकरण है वो आपको इनको गरीबी की रेखा से बाहर कर देगा। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में भारत का गरीबी रेखा का संतुलन और अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का संतुलन बराबर होगा। फिर आप ये देखिए कि जिस क्षेत्र में जिस वस्तु का उत्पादन हो करके, आप ये हर एक जिले में एक प्रोडक्ट, लोकल फॉर वोकल, मुझे ये लगता है कि एक बड़े समग्र

0: सोच के साथ, और इतनी समग्र सोच जिसका ये कह सकते हैं कि बाद में यदि प्रतिफल आ रहा है तो विजन 2047 जो विजन आया है वो इसी अर्थव्यवस्था के संतुलन वाले मामले के कारण आया है। क्योंकि जब हम 12 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में बूम देख सकते हैं, किसी भी परेशानी को झेलने की ताकत देख सकते हैं, जब टैरिफ का वार आया भारत नहीं ला, जब आपने हमारे सामने पेट्रोल का संकट आया तब हमारे सामने ये सारी चीज़ें आई, तो आप देख लीजिए कि भारत न केवल वैश्विक शक्तियों से लड़ने की स्थिति में है अपितु उनका सामना करके आगे निकलने की स्थिति में है। तो मुझे ये लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक संसार की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में है। जीडीपी को देखिए आप, बराबर आपको संकेत देता होगा, जहां दूसरे देशों की जीडीपी में गिरावट और हलचल दिखाई दे रही है, भारत उसमें स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये जो पेट्रोलियम मामलों में थोड़ा बहुत जो दिक्कत आ रही है आपूर्ति की, जिसके कारण मूल्य परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में शीघ्रता से मुझे लगता है हमारी अर्थव्यवस्था इसको सामान्य रूप से आगे गति दे देगी।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने विकसित भारत 2047 की बात की। अगले 10 वर्षों में हम अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और विकसित भारत 2047 का स्वप्न साकार करेंगे। एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद मृगेन जी और सुरेश जी, आपने बेहद संतुलित, बेबाक और बारीक विश्लेषण से हमारे श्रोताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA सरकार के कार्यकाल की पिछले 12 वर्षों की यात्रा के हर पहलू को समझने में मदद की। निश्चित ही श्रोताओं को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आज के इस विशेष संवाद में बस इतना ही। देश और समाज से जुड़े ऐसे ही गंभीर मुद्दों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम, विषय था NDA सरकार के 12 साल। विशेषज्ञ थे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और मृगेंद्र सिंह, वार्ताकार अभिषेक कटियार और प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पंडित उमाकांत और रमाकांत कुंदेचा का युगल ध्रुपद गायन। राग है यमन। तबले पर संगत की है, माफ कीजिएगा, पखावज पर है अखिलेश गुंदेचा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित उमाकांत पंडित रमाकांत गुंदेचा का युगल ध्रुपद गायन। राग था यमन। पखावज पर संगत कर रहे थे अखिलेश गुंदेचा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में

रेलवे एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण